कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी के साथ, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अनुराधा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपको देते हैं ढेर सारी जानकारियां, साथ ही साथ करते हैं आपका मनोरंजन प्यारे प्यारे गीतों के साथ। तो श्रोताओं, हर दिन की तरह आज के इस कार्यक्रम का आरंभ करेंगे शुभ विचार के साथ। श्रोताओं, हर दिन एक खाली पन्ने की तरह होता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस पर शिकायत लिखते हैं या सफलता की नई कहानी। बीती हुई गलतियों को याद करके दुखी मत होइए। अनुभव वही दीपक है जो भविष्य का रास्ता रोशन करता है। आज का दिन आशा और विश्वास के नाम कीजिए।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। और श्रोताओं, अब बात करेंगे आज के दिन की। जी हाँ, आज क्या कुछ घटित हुआ इस दिन में। आज 6 जुलाई है और 6 जुलाई का ये दिन इतिहास के पन्नों में विशेष महत्व रखता है। 6 जुलाई 1885 में लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। आज ही के दिन 6 जुलाई 1944 में महात्मा गांधी को पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। जुलाई 1905 में भारत की प्रख्यात समाज सुधारक लक्ष्मीबाई बाई केलकर का जन्म हुआ। आज ही के दिन 6 जुलाई 1901 में भारतीय राजनीतिज्ञ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ। और 6 जुलाई 1986 में आधुनिक भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, जिन्हें आदर से बाबूजी कहा जाता है, जगजीवन राम का निधन हुआ। श्रोताओं, कार्यक्रम में बातें और जानकारियां तो हम आपसे और भी साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देंगे विश्व जूनोसिस दिवस पर। श्रोताओं, मानव पशु संपर्क से फैलने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। उभरती संक्रामक बीमारियों में से 2/3 से अधिक की उत्पत्ति जानवरों से होती है। जूनोटिक बीमारियां या जूनोसिस के उदाहरणों में जीका वायरस, इबोला वायरस, एवियन फ्लू, सार्स, मर्स, वेस्ट नाइल वायरस, लाइम रोग और पित्त ज्वर शामिल हैं। ISID में हम मनुष्यों, पशुओं और पौधों में संक्रामक रोगों के अंत संबंध को पहचानते हैं और ये भी मानते हैं कि संक्रामक रोग राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सीमाओं को पार करते हैं और प्रभावी दीर्घकालिक समाधानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक आदान प्रदान और सहयोग इसके लिए आवश्यक है। ये संख्या विश्व भर में संक्रामक रोगों की समस्याओं के समाधान खोजने और साझेदारी विकसित करने के लिए समर्पित है और संक्रामक रोगों को के सर्वोत्तम नियंत्रण और प्रबंधन के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर काम कर रहे मानव स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य समुदायों की सहयोगात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करती है।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम सुबह सुहानी में। और कार्यक्रम में अब आपको जानकारी देंगे बाबू जगजीवन राम की। श्रोताओं, जगजीवन राम, जिन्हें लोकप्रिय रूप से बाबूजी के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 30 से अधिक वर्षों तक विभिन्न विभागों के साथ मंत्री के रूप में कार्य किया, जिससे वे भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बन गए। उन्होंने जनवरी से जुलाई 1979 तक भारत की उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दो अलग अलग कार्यकालों के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने हरित क्रांति और भारतीय कृषि के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेष रूप से 1974 के सूखे के दौरान, जब उन्हें गंभीर खाद्य संकट से निपटने का जिम्मा सौंपा गया था।

श्रोताओ, आज के दिन मनाई जा रही है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती भी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक भारतीय बैरिस्टर, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, हिंदुत्व कार्यकर्ता और राज्य एवं राष्ट्रीय सरकारों में मंत्री थी। कांग्रेस का विरोध करने के बावजूद नेहरू ने उन्हें नियुक्त किया था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध के लिए जाने जाने वाले मुखर्जी ने हिंदू महासभा से संबंध तोड़ने के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया। नेहरू से मतभेद होने के बाद लियाकत नेहरू समझौते का

विरोध करते हुए मुखर्जी ने नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद से उन्होंने 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना भी की। और कार्यक्रम में अब एक बार फिर आपका करेंगे मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम सुबह सुहानी में। और कार्यक्रम में अब आपको देते हैं जानकारी समाचारों की सुर्खियों पर। इंडोनेशिया दौरे पर जाएंगे मोदी, ब्रह्मोस डील की उम्मीद। तेल गैस पर लगा इमरजेंसी बैन हटा, ट्रंप ने फिर की रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की पेशकश। और फुटबॉल विश्व कप में मोरक्को ने रचा इतिहास, कनाडा को हराकर दूसरी बार

क्वार्टरफाइनल में पहुंचा। अब जानकारी देते हैं मौसम की, तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। दिन भर हल्की से मध्यम बारिश और कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और नदियों नालों का जलस्तर बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। और कार्यक्रम में अब चलते चलते एक बार फिर करेंगे आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: सुबह सुहानी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:40 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम शुभ प्याग।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शुभ प्याग, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः की 7:55 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं तेज गान।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8 बजने को ही कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज रिले किए जाएंगे।

0: द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं।

0: उपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। कार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6-8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
3: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
4: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीति विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास।

0: विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधारभूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
2: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
3: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
5: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की

0: उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एम्बार्क ऑन अ 6-डे विजिट टू इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बिगिनिंग टुडे। India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Keralam beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after 5-time world champion Brazil suffers stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And now the

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:45 होने को है, कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से कार्यक्रम कानून की बात रिले की जाएगी।

0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कानून की बात। आज का विषय है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। विशेषज्ञ हैं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला एवं सत्र न्यायालय हमीरपुर श्री रवि शर्मा और भेंट करता है अनुज कुमार। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र से भी सुन सकते हैं।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कानून की बात। आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री रवि शर्मा जी। रवि जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका आकाशवाणी हमीरपुर के स्टूडियोज में।
2: धन्यवाद अनुज जी, सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार।
1: श्रोताओं, आज का हमारा विषय

0: है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। माननीय न्यायाधीश महोदय, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है।
1: अनु जी, इसकी कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में पहले पुरुष को ऊंचा माना जाता था, अब महिलाएं टाइम के साथ जागरूक हो रही हैं, नौकरियां कर रही हैं, तो ईगो क्लैशेस बढ़ रहे हैं।
0: जी
1: पहले पुरानी सोच होती थी कि लड़की पराया धन होती है, इससे भी महिलाओं में एक तरह से इनसिक्योरिटी रहती थी, और जहाँ पर महिलाओं को पेरेंटल सपोर्ट या गाइडेंस नहीं मिलती थी तो इनिशियल एडजस्टमेंट जो किसी भी रिश्ते में ज़रूरी होती है उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और इसके अलावा अगर महिलाएं पति पर पूरी तरह से फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती हैं और पति पत्नी की सोच में तालमेल नहीं होता है तो भी घरेलू हिंसा के चांसेस बढ़ जाते हैं।
0: न्यायाधीश महोदय, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि घरेलू हिंसा से समझा क्या जाए।
1: भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समता, स्वतंत्रता और सम्मान से जीने का अधिकार देता है,
0: जी
1: लेकिन जब एक महिला अपने ही घर की चार दीवारी के भीतर सुरक्षित महसूस नहीं करती है तो इन संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है। इसी उद्देश्य से संसद द्वारा यह एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसको हिंदी में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कहा जाता है, पारित किया गया, जो 26 अक्टूबर 2006 से पूरे देश में प्रभावी हुआ। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि यह अधिनियम मुख्य रूप से एक दीवानी कानून है, जिसका उद्देश्य पीड़ित महिला को शीघ्र राहत प्रदान करना है, ना कि केवल दंड देना। ऐसे तो इस कानून से पहले भी हमारे पास महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अलग अलग कानून, जैसे सेक्शन 125 CRPC, गुजारा भत्ता कानून, 498 AIPC इत्यादि कानून थे, परंतु उनके लिए अलग अलग कानूनों में आवेदन करना पड़ता था, जबकि इस कानून में सभी रिलीफ्स एक ही पटिशन से प्राप्त किए जा सकते हैं और मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स भी इससे कम हो जाती है। अब बात करते हैं घरेलू हिंसा है क्या। इस कानून की धारा 3 के तहत घरेलू हिंसा की बहुत ही व्यापक और स्पष्ट भाषा दी गई है। कानूनन घरेलू हिंसा का मतलब केवल शारीरिक मारपीट नहीं है, इसको 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली, शारीरिक दुर्व्यवहार। इसमें किसी प्रकार का ऐसा कृत्य शामिल है जो महिला के शरीर, जीवन या स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाता है, जैसे मारपीट करना, थप्पड़ मारना, धक्का देना या शारीरिक बल का आपराधिक इस्तेमाल करना। दूसरी, सेक्सुअल अब्यूज। ऐसा कोई भी आचरण या व्यवहार जो महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, उसका अपमान करता है या उसकी इच्छा के विरुद्ध किया जाता है, वो इस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। तीसरे नंबर पर वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज। इसमें कोई अदृश्य चोट जो महिला के मानसिक स्वास्थ्य को छिन्न भिन्न कर देती है, जैसे महिला को लगातार ताने मारना, अपमानित करना, गाली गलौज करना, चरित्र पर लांछन लगाना या संतान, विशेषकर लड़का, ना होने पर प्रताड़ित करना शामिल है। किसी भी तरह से मानसिक यातना देना इस दुर्व्यवहार के अंतर्गत आता है। और लास्ट, इकोनॉमिक अब्यूज, आर्थिक दुर्व्यवहार। जैसे अपनी ही संपत्ति या साझा गृहस्थी, जिसे शेयर्ड हाउस होल्ड के उपयोग से महिला को वंचित करना आर्थिक हिंसा है। महिला के स्त्री धन, वेतन या मूल्यवान वस्तुओं को उनकी सहमति के बिना बेच देना या उसे और उसके बच्चे को भरण पोषण के लिए बुनियादी खर्च ना देना भी इसी श्रेणी में आते हैं।
0: जी रवि जी, आप इस कानून के लाभार्थी कौन-कौन हो सकते हैं?
1: जी, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी एक्ट्स की तरह इस कानून में ऐसा नहीं है कि इसके लाभार्थी हों। महिलाएं होंगी, लेकिन सिर्फ पत्नियां नहीं इसमें लिमिटेड होंगी।
0: जी
1: इस अधिनियम की धारा 2A के तहत कोई भी महिला जो प्रतिवादी के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही है, वर्तमान में रह रही है या पहले भी रही है, और आरोप लगाती है कि वह घरेलू हिंसा की शिकार हुई है, वह पीड़ित व्यक्ति की श्रेणी में आती है। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है कि दोनों ने एक शेयर्ड हाउस होल्ड में एक साथ रहते हैं या रह चुके हैं। इसके अंतर्गत विवाहित पत्नियां, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं या ऐसी कोई भी महिला जो किसी भी ऐसे रिश्ते में है जो इन द नेचर ऑफ मैरिज है,
0: जी
1: वो सब इंक्लूड होते हैं। इसमें परिवार के अदर सदस्य जैसे माता, बहन, पुत्री, विधवा, विधवा पुत्र, वधू,
0: जी
1: दत्तक पुत्र, ये सब भी इस एक्ट के तहत कानूनी मदद ले सकते हैं। यानी कि एक वृद्ध माता जिसको उसके बेटे या बहू द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, या एक बहन जिसको उसके भाई द्वारा आर्थिक या मानसिक रूप से सताया जा रहा है, वो भी इस एक्ट का लाभ ले सकती है। मैं अनुजी एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा,
0: जी
1: कानूनन शिकायत किसके खिलाफ की जा सकती है। मुख्य रूप से शिकायत किसी भी वयस्क पुरुष, अडल्ट मेल के खिलाफ की जा सकती है जिसके साथ महिला का घरेलू संबंध रहा हो, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों के बाद अब पीड़ित महिला पति या पुरुष साथी के महिला रिश्तेदारों, जैसे

0: ननद अगर उन्होंने ऐसी कोई हिंसा की है तो उनके खिलाफ भी आवेदन कर सकती हैं।
1: जी, तो शिकायत दर्ज कराने की क्या प्रक्रिया होती है और क्या कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है पीड़ित महिला के पक्ष में?
0: कोई भी पड़ोसी, रिश्तेदार, पुलिस ऑफिशियल, प्रोटेक्शन ऑफिशियल, कोई भी एनजीओ, ये सब पीड़ित महिला के बिहाफ पर आवेदन दर्ज कर सकती हैं अगर महिला ऐसे हालात में है कि उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। उसके अलावा इसमें एक अलग से प्रशासनिक तंत्र दिया गया है एक्ट में ही, जिसकी सहायता ली जा सकती है, जिसके तीन प्रमुख स्तंभ हैं। पहला है प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो कि सेक्शन 8 में दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा हर जिले में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती है। इस पद पर यथासंभव महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इनका मुख्य कार्य है पीड़ित महिला की सहायता करना, कोर्ट के समक्ष डोमेस्टिक इंसिडेंटल रिपोर्ट पेश करना और विधिक सहायता सुनिश्चित करना है। इसके अलावा इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स सेक्शन 10 में बताया गया है कि जो एनजीओज हैं जो सरकार के पास पंजीकृत होती हैं, ये महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और आश्रय प्रदान करती है। और तीसरा इसमें सेक्शन 6 व 7 में शेल्टर होम्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ की सुविधा दी गई है कि अगर यदि किसी पीड़ित महिला के पास रहने का कोई स्थान नहीं है या वह घायल है तो संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर या एनजीओ उसे सुरक्षित आश्रय गृह और अस्पताल में उपचार की सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। अगर प्रक्रिया की बात करें, कोई भी ऐसी पीड़ित महिला स्वयं या जो मैंने अभी बताया उन
1: जी,
0: माध्यमों से अदालत में आ सकती है। उसके बाद कोर्ट दूसरी पार्टी को बुलाएगा सम्मन से और सुनेगा, और इसमें दूसरी पार्टी को बुलाने के लिए सम्मन्स भेजे जाते हैं कोर्ट से। दूसरा पक्ष अगर लोकल है, सपोज करो कि हमीरपुर में ही रहने वाला है,
1: जी
0: तो उसमें हम प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू ही सर्विस कराते हैं 2-3 दिन के अंदर ही। और अगर तो दूसरा पक्ष बाहर रहता है, सपोज करो दिल्ली रहता है या कहीं देहरादून रहता है, तो उस केस में हम थ्रू कंसर्न कोर्ट सर्विस कराते हैं, तो उसके लिए थोड़ा रीजनेबल टाइम लग जाता है।
1: जी
0: और उसके बाद फिर इसमें दोनों पक्षों को सुनने के बाद इश्यूज फ्रेम कर देते हैं कि क्या झगड़ा है इनके बीच में। उसके बाद पहले पक्ष के एविडेंसेस, फिर दूसरे पक्ष के एविडेंसेस और फिर दोनों के आर्गुमेंट सुन के फिर उसमें फैसला कर दिया जाता है।
1: जी
0: और इसमें थोड़ा सा स्पीडी ट्रायल रहता है। एक्ट के अंदर ही दिया गया है कि अदालत यह कोशिश करेगा कि पहली सुनवाई से 60 दिनों के भीतर भीतर मामले का निपटारा करें।
1: जी रवि जी, अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस कानून के तहत लाभार्थी को क्या-क्या लाभ दिए जाते हैं?
0: अनु जी, ये अधिनियम का सबसे व्यवहारिक और सशक्त भाग है।
1: जी
0: जैसा कि हमने बात किया कि पहले अलग अलग कानूनों में पटिशन्स फाइल करनी पड़ती थी, इस कानून की खूबी यही है कि एक ही पटिशन में आपको सब रिलीफ मिल जाते हैं। तो इसमें सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22 रिलीफ्स की बात करते हैं। प्रोटेक्शन ऑर्डर धारा 18 की, यदि अदालत को प्रथम दृष्टा लगता है कि घरेलू हिंसा हुई है या होने की संभावना है, तो अदालत प्रतिवादी पर सख्त पाबंदी लगा सकती है। इसके तहत प्रतिवादी को पीड़ित महिला पर दोबारा हिंसा करने, उससे या उसके रिश्तेदारों से संपर्क करने फोन, ईमेल या मैसेज के जरिए, या महिला के कार्यस्थल या स्कूल कॉलेज जाने पर रोक लगा दी जाती है।
1: जी
0: बात करें निवास आदेश की, धारा 19 में रेजिडेंस ऑर्डर पास किया जा सकता है। यह प्रावधान महिलाओं के सबसे बड़े डर को दूर करता है कि जो हम पहले बोलते थे कि अब तो पति का घर ही महिला का घर है।
1: जी
0: कानूनन महिला को सांझी गृहस्थी, शेयर्ड हाउस होल्ड, जो इसको ससुराल भी बोलते हैं,
1: जी
0: में रहने का पूरा अधिकार है, चाहे उस घर में उसका कोई मालिकाना हक हो या ना हो। कोर्ट प्रतिवादी को आदेश दे सकता है वह महिला को घर से ना निकाले। प्रतिवादी में आपके इन लॉज भी, पति, ये सब इंक्लूड
1: जी
0: होते हैं।
1: जी
0: यदि स्थिति ऐसी है कि दोनों का साथ रहना संभव नहीं है, तो कोर्ट प्रतिवादी को आदेश दे सकता है कि वो महिला को उसी स्तर के अल्टरनेटिव अकोमोडेशन की व्यवस्था करे और उसका किराया चुकाए। यहाँ तक कि कोर्ट प्रतिवादी को स्वयं उस घर से हटने का निर्देश भी दे सकती है, और उचित केसेस में प्रतिवादी गणों को शेयर्ड हाउस होल्ड बेचने इत्यादि पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। धारा 20 मॉनेटरी रिलीफ की बात करता है। घरेलू हिंसा के कारण महिला को होने वाले खर्चों और नुकसान की भरपाई के लिए यह आदेश दिया जाता है। इसमें महिला और उसके बच्चों को चिकित्सा खर्च, भोजन, कपड़े, आवास और बच्चों की स्कूल फी इत्यादि के लिए मासिक भरण पोषण, मेंटेनेंस, तय किया जाता है, जो प्रतिवादी को हर महीने अनिवार्य रूप से देना होता है। अदरवाइज तो कोर्ट उसको एनफोर्स कराता है सैलरी अटैच करके या प्रॉपर्टी अटैच करके और सेल करके।
1: जी
0: उसके बाद धारा 21 में जो कस्टडी ऑर्डर पास किया जा सकता है, उसमें कई बार होता है कि बच्चे की कस्टडी ससुराल वालों के पास होती है, तो जनरली कोर्ट का टिल्ट ये होता है कि 5 साल तक तो नेसेसरी कस्टडी माँ के पास ही हो, और बाकी अल्टीमेटली जो टेस्ट होता है कस्टडी के लिए वो होता है कि बच्चे का वेलफेयर किस साइड है। जनरली ये लेडी

0: कोई कस्टडी मिलती है, अनलेस कि कोई ऐसा कोई एग्जाम्पल हो कि उसकी
1: जी
0: भलाई में नहीं है।
1: जी
0: और उसके अलावा जो मुआवजा आदेश धारा 22 के अंतर्गत दिया जाता है, वह जो मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक चोट इत्यादि लेडी ने सफ़र की है, उसके लिए धारा 22 में इसका प्रोविज़न है।
1: जी माननीय न्यायाधीश महोदय, कई बार इन केस में देखा जाता है, जैसे जिस तरह के आपने आदेश बताए कि दिए जाते हैं माननीय न्यायालय द्वारा, तो इनमें समय भी लग जाता है कई बार। क्या कोई अंतरिम आदेश भी दिया जा सकता है इन परिस्थितियों को देखते हुए?
0: बिल्कुल मैम जी, जैसे मैंने बताया कि राइट ऑफ बीइंग हर्ट भी एक नेचुरल जस्टिस है, तो दूसरी पार्टी को सुनने में, उनके एविडेंसेस को लाने में टाइम लग जाता है। तो कई बार ऐसी ज़रूरतें होती हैं कि लेडी के पास रहने के लिए घर नहीं है, इमीडिएट रेस्क्यू करना है, इमीडिएट शेल्टर चाहिए, इमीडिएट अमाउंट चाहिए, तो इस एक्ट में धारा 23 के अंतर्गत इंटरिम ऑर्डर पास किया जा सकता है, और एक्स पार्टी ऑर्डर, एक
1: जी
0: पक्षीय आदेश फॉर द टाइम बींग, जब
1: जी
0: तक दूसरी पार्टी को सुना जाए तब तक के लिए पास किया जाता है, जिसमें महिला के एफिडेविट के बेसिस पे अगर मैजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि घरेलू हिंसा का मामला है और इन इन संरक्षण की या इन इन आदेशों की तुरंत ज़रूरत है, तो ये आदेश तुरंत पास कर दिए जाते हैं। मैं
1: जी
0: यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट के बारे में भी बताना चाहूँगा। जो ये आदेश हमने ऊपर बताए थे, इनके एनफोर्समेंट के तरीके होते हैं अलग अलग। तो पहले क्या होता था कि एक गलत धारणा होती है लोगों के मन में कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिर्फ एक फौजदारी मामले के लिए होता है, पर ये अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अक्षय ठाकुर बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अदर्स में क्लियर कर दिया है कि जो एक इसका पीनल प्रोविजन सेक्शन 31 है इस एक्ट का, जिसके अंतर्गत 1 साल की सजा और 20,000 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है, वो केवल ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए होता है। उसके अलावा अगर आपको मॉनेटरी रिलीफ या रेजिडेंस ऑर्डर है, उसको बाकी तरीकों से एनफोर्स किया जाता है, जैसे प्रॉपर्टी अटैच करके, सैलरी अटैच करके।
1: रवि जी, कई बार देखा जाता है कि जो पीड़िता होती है वो आर्थिक रूप से कमजोर भी होती है, तो इन स्थितियों में इस कानून का कैसे वो फायदा उठा सकती है?
0: श्रोताओं, आर्थिक तंगी न्याय की राह में कभी बाधा नहीं बननी चाहिए, इसीलिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 और घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रत्येक महिला, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, मुफ्त विधिक सहायता, फ्री लीगल एड पाने की हकदार है। हमारे हमीरपुर जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत है, कोई भी महिला सीधे इस कार्यालय में आकर मुफ्त वकील की मांग कर सकती है। कोर्ट फीस से लेकर ड्राफ्टिंग और वकील का सारा खर्च प्राधिकरण वहन करता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि घरेलू हिंसा केवल एक महिला के खिलाफ अपराध नहीं है, यह पूरे समाज को भीतर से खोखला करता है।
1: अब इस कार्यक्रम में समय भी हो चला है, तो हमारे सुनने वाले जितने भी श्रोता हैं और खासकर जो महिला श्रोता आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: अनुजी, यह कानून एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है महिलाओं के लिए, जो संविधान के आर्टिकल 14, 15 क्लोज 3 व 21 से शक्तियाँ अर्जित करके महिलाओं को सम्मान व समता के साथ जीने के अधिकार के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। तो कानून को बनाने का फायदा तभी होगा जब प्रत्येक पीड़ित महिला इसका प्रयोग कर सके। उसके लिए ज़रूरी है इस कानून का ज्ञान होना, जिसके लिए आज हम ये जानकारी साझा कर रहे हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी बार अज्ञानता के कारण कई पीड़ित वर्ग अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं दो बेहद आसान तरीके इस बिहाफ में बताना चाहूँगा। पहला है एक हेल्पलाइन नंबर 15100, जो अपने स्टेट का लीगल एड हेल्पलाइन नंबर है, और दूसरा हर एक कोर्ट में, चाहे कहीं भी कोर्ट में एक फ्रंट ऑफिस होता है,
1: जी
0: वहाँ पर पैरालीगल वॉलंटियर्स भी होते हैं और बाकी ऑफिशियल भी होते हैं DLSA के, कभी भी जा सकते हैं वर्किंग आवर्स में, वहाँ पर जाकर अपनी समस्या बता सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं और मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
1: जी ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि अज्ञानता बाधा बन जाती है कई बार, तो कानूनी रूप से आपको जागरूक होना चाहिए और प्रत्येक पीड़िता को अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। आकाशवाणी हमीरपुर को आज आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद अनुज जी।
2: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 विषय पर आप सुन रहे थे कानून की बात। विशेषज्ञ थे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला एवं सत्र न्यायालय हमीरपुर श्री रवि शर्मा, और इनसे भेंट कर रहे थे अनुज कुमार। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के शिमला FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र से भी सुन रहे थे। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9 बजे हैं और अब समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अनुराधा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, बारिश का मौसम अपने साथ सिर्फ ठंडी हवाएं

और भीगी फुहारे नहीं लाता बल्कि ढेर सारी यादें, नई उम्मीदें और मन को सुकून देने वाला एहसास भी लेकर आता है। जब बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है और बारिश की बूंदें धरती को छूती हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति कोई मधुर गीत गुनगुना रही हो।

श्रोताओं, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अपनी दोस्त अनुराधा के संग। और श्रोताओं, बारिश सिर्फ आसमान से गिरती बूंदों का नाम नहीं बल्कि प्रकृति की वो मधुर धुन है जो हर दिल को सुकून देती है। जब पहली बारिश की बूंदें मिट्टी को छूती हैं तो उसकी सौंधी सी खुशबू पूरे वातावरण को महका देती है और मन में नई उम्मीदें जगा देती है। कहते हैं ना, बारिश की हर बूंद में छिपा है एक नया संदेश, धुल जाते हैं गम सारे, खिल जा उठता है हर परिवेश।

0: श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यूं ही जारी रहेगा प्रातः 9:30 पर भी। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भाजपा कोर समिति की महत्वपूर्ण बैठक कल शिमला में। प्रदेश की राजनीतिक, संगठनात्मक और चुनावी मुद्दों पर होगा मंथन। आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा, प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र व संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 125वीं जयंती। प्रधानमंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बताया साहस, राष्ट्रवाद व निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक। सिरमौर जिला सीड प्रोडक्शन कार्यक्रम के तहत अन्य जिलों को भी उपलब्ध करवा रहा उच्च गुणवत्ता वाला गेहूं का बीज। और प्रदेश में मॉनसून आज से फिर होगा सक्रिय। 4 जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भाजपा कोर समिति की महत्वपूर्ण बैठक कल शिमला स्थित पार्टी कार्यालय दीप कमल में आयोजित होगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश की राजनीतिक, संगठनात्मक और चुनावी मुद्दों पर मंथन होगा। इसके अलावा बैठक में बूथ सशक्तिकरण, आगामी जनसंपर्क अभियानों और आगामी चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन किया जाएगा। कोर समिति की यह बैठक आगामी राजनीतिक व संगठनात्मक दिशा तय करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, सांसद व पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। इसके अलावा स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में पार्टी के

0: राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा व सह प्रभारी संजय टंडन भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि प्रदेश में आयोजित होने वाले पारंपरिक मेले और उत्सव राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे कल चंबा जिले के भटियात उपमंडल के तहत चलामा में छिंज मेले के दौरान बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेलों व त्योहारों को संरक्षित करना समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में आपसी भाईचारा, सौहार्द व सामाजिक एकता को मजबूत करने में मदद मिलती है। आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र व संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जयसिंहपुर के जलाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है और जनहित से जुड़े हर मुद्दे को गंभीरता के साथ सरकार के समक्ष रखा जाएगा। जयसिंहपुर के जलाड़ी और नाहलना में जनसमस्याएं सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जल्द ही यहाँ पर डायलिसिस और खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर इस अवसर पर कोलकाता में कार्यक्रम आयोजित किया है। यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष घोषित 2 वर्ष के आधिकारिक समारोहों के तहत होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस दौरान केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद भूमि पूजन होगा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फुट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A निरस्त किए जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। प्रधानमंत्री ने देश की औद्योगिक प्रगति में डॉक्टर मुखर्जी के योगदान का भी जिक्र किया। सिरमौर जिला में कृषि विभाग द्वारा सीड प्रोडक्शन कार्यक्रम के तहत जिला के किसानों से गेहूं की खरीद कर रहा है। खास बात यह है कि जिला अपनी जरूरत पूरी करने के बाद अब प्रदेश के अन्य जिलों को भी उच्च गुणवत्ता वाला गेहूं का बीज उपलब्ध करवा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: जिला में बीज के लिए 6000 क्विंटल गेहूं बीज की डिमांड रहती है। जिले की आवश्यकता पूरी करने के बाद शेष बीज की आपूर्ति हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और मंडी जिलों में की जा रही है। अभी तक जिला में किसानों से करीब 11000 क्विंटल गेहूं खरीदा जा चुका है। विभाग द्वारा करीब 350 किसानों से 3250 रुपए प्रति क्विंटल के निर्धारित मूल्य पर गेहूं की खरीद की गई है। जिला में गेहूं की मशीनों से ग्रेडिंग की जा रही है और ग्रेडिंग के बाद जो मोटा और उच्च गुणवत्ता वाला एक ग्रेड का दाना बचता है उसे कृषि विभाग द्वारा बीज के रूप में खरीदा जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। मंत्रालय ने बताया कि सहकार से समृद्धि लक्ष्य के तहत इस समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन तथा टिश्यू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के तीसरे चरण की शुरुआत और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। इस दौरान वे अन्य पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। राजधानी शिमला अपनी प्राकृतिक सुंदरता व मनमोहक पर्वतीय दृश्यों के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। यहां आने वाले सैलानियों के लिए पर्यटन के क्षेत्र में अब एक और नया आकर्षण जुड़ गया है जो कमियाना हिल ट्रॉप नेचर ट्रेल है। यह परियोजना न केवल पर्यटन को नया आयाम देगी बल्कि प्रकृति के संरक्षण व स्थानीय रोजगार में भी मददगार साबित होगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
2: लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी इस सुगम नेचर ट्रेल को इस प्रकार विकसित किया गया।

0: है कि बच्चे, युवा, वरिष्ठ नागरिक और प्रकृति प्रेमी सभी इसका आनंद ले सकें। सुरक्षित और सुविधाजनक मार्ग होने के कारण यह ट्रेल परिवारों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनने जा रही है। शिमला पहुंचने के बाद ऑकलैंड टनल से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पोआबो पंचायत में इस ट्रेल का निर्माण किया गया है। सड़क से सीधे जुड़े होने के कारण पर्यटक यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं और प्रकृति की गोद में सैर करते हुए मनोरम वातावरण का आनंद ले सकते हैं। लगभग 8 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित इस परियोजना में 2.5 किलोमीटर लंबा नेचर ट्रेल तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता बढ़ाना, प्रकृति के प्रति रुचि विकसित करना, जैव विविधता संरक्षण को प्रोत्साहन करना व सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: प्रदेश में आज से मॉनसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ सकता है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों तक राज्य के ऊना, कांगड़ा, सिरमौर व सोलन जिले में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य शेष जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए विभाग ने लोगों से नदी नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी रही और कांगड़ा में सर्वाधिक 84.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। मौसम से जुड़ी खबर को आज अधिकतर अखबारों ने अपनी प्रमुख खबर बनाया है। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, हिमाचल में 11 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज व येलो अलर्ट। अमर उजाला व दैनिक जागरण के एक जैसे शब्द है, चलती बस पर पहाड़ी से गिरा पत्थर, एक की मौत, 4 घायल, आज भी बारिश का अलर्ट। दैनिक भास्कर लिखता है, मॉनसून सुस्त, उमस के साथ 7 डिग्री तक उछला पारा, आज व कल भारी बारिश का अलर्ट। दिव्य हिमाचल बकौल मुख्यमंत्री लिखता है, तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में नई खोज करना सीखेंगे छात्र। पंजाब केसरी की एक खबर है, आपदा प्रभावित पशुपालकों के मुआवजे में हिमाचल सरकार ने की बढ़ोतरी। इस माह एक साथ मिलेगा 2 माह का सरसों तेल, शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है, प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों को मिलेगी बड़ी राहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भाजपा कोर समिति की महत्वपूर्ण बैठक कल शिमला में, प्रदेश की राजनीतिक, संगठनात्मक और चुनावी मुद्दों पर होगा मंथन। आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा, प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र व संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 125वीं जयंती, प्रधानमंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बताया साहस, राष्ट्रवाद व निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक। सिरमौर जिला सीड प्रोडक्शन कार्यक्रम के तहत अन्य जिलों को भी उपलब्ध करवा रहा उच्च गुणवत्ता वाला गेहूं का बीज। और प्रदेश में मॉनसून आज से फिर होगा सक्रिय, 4 जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतांजलि का शेष भाग। श्रोताओं, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जाने होगा क्या का ये प्यारा सा गीत अभिजीत और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए निखिल विनय के संगीत निर्देशन में फैज अनवर का लिखा गीत फिल्म कोई मेरे दिल में है से।

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

Natasha, Natasha, Natasha. अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में लीजिए अब सुनिए फिल्म नाम गुम जाएगा का ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 10 बज चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम गीतों का कारवां का।

इस समय आप सुन रहे हैं गीतों का कारवां आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। इस गीत को आप सुन रहे हैं एक दूजे के लिए फिल्म से।

गीतों का कारवा इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लव स्टोरी फिल्म से। अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में सुन रहे हैं आप इस गीत को।

अभी आप सुन रहे थे गीतों का कारवां आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं पहाड़ों के सुर।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पहाड़ों के सुर, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 11 बजने को है। अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: सूचना की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आप आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन सकते हैं।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश भाजपा कोर समिति की महत्वपूर्ण बैठक कल शिमला स्थित पार्टी कार्यालय दीप कमल में आयोजित होगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश की राजनीतिक, संगठनात्मक और चुनावी मुद्दों पर मंथन होगा। इसके अलावा बैठक में बूथ सशक्तिकरण, आगामी जनसंपर्क अभियानों और आगामी चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन किया जाएगा। कोर समिति की यह बैठक आगामी राजनीतिक व संगठनात्मक दिशा तय करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, सांसद व पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भाग लेंगे। इसके अलावा स्थायी आमंत्रित सदस्यों के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा व सह प्रभारी संजय टंडन भी मौजूद रहेंगे। आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र व संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। जयसिंहपुर के जलाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है और जनहित से जुड़े हर मुद्दे को गंभीरता के साथ सरकार के समक्ष रखा जाएगा। जयसिंहपुर के जलाड़ी और नाहलाना में जनसमस्याएं सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जल्द ही यहां पर डायलिसिस और खेल मैदान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर इस अवसर पर कोलकाता में कार्यक्रम आयोजित किया है। यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती

0: उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष घोषित 2 वर्ष के आधिकारिक समारोह के तहत होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस दौरान केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके बाद भूमि पूजन होगा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फुट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला भी रखी जाएगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A निरस्त किए जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। प्रधानमंत्री ने देश की औद्योगिक प्रगति में डॉक्टर मुखर्जी के योगदान का जिक्र भी किया। राजधानी शिमला अपनी प्राकृतिक सुंदरता व मनमोहक पर्वतीय दृश्यों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहां आने वाले सैलानियों के लिए पर्यटन के क्षेत्र में अब एक और नया आकर्षण जुड़ गया है, जो कमियाना हिल ट्रॉप नेचर ट्रेल है। ये परियोजना न केवल पर्यटन को नया आयाम देगी, बल्कि प्रकृति के संरक्षण व स्थानीय रोजगार में भी मददगार साबित होगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी इस सुगम नेचर ट्रेल को इस प्रकार विकसित किया गया है कि बच्चे, युवा, वरिष्ठ नागरिक और प्रकृति प्रेमी सभी इसका आनंद ले सकें। सुरक्षित और सुविधाजनक मार्ग होने के कारण यह ट्रेल परिवारों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनने जा रही है। शिमला पहुंचने के बाद ऑकलैंड टनल से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुआबो पंचायत में इस ट्रेल का निर्माण किया गया है। सड़क से सीधे जुड़े होने के कारण पर्यटक यहां आसानी से पहुंच सकते हैं और प्रकृति की गोद में सैर करते हुए मनोरम वातावरण का आनंद ले सकते हैं। लगभग 8 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित इस परियोजना में 2.5 किलोमीटर लंबा नेचर ट्रेल तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता बढ़ाना, प्रकृति के प्रति रुचि विकसित करना, जैव विविधता संरक्षण को प्रोत्साहन करना व सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: प्रदेश में आज से मॉनसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ सकता है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिन तक राज्य के ऊना, कांगड़ा, सिरमौर व सोलन जिले में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य शेष जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए विभाग ने लोगों से नदी नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी रही और कांगड़ा में सर्वाधिक 84.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:00 PM। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं महक पंजाब की।
3: दोस्तों, प्रोग्राम महक पंजाबी लेके हाजिर। हर धरती की अपनी खुशबू हुंदी है। पंजाब की खुशबू इस दे गीता विच वसदी है। आओ इन्हां खुशबू नूं महसूस करिए।

0: होश है कि नहीं तेनू?
1: दोस्तों, जदों दिल गल करता है तां शब्द कविता बन जाते हैं अते कविता गीत। लो सुनते हैं अगली पेशकश।

जिन्ना संगीत। कुछ लोग अपनी अदावां नाल हर महफिल की रौनक बन जाते हैं। अज का अगला गीत भी अजिही ही रंगीले मिजाज नूं समर्पित है।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
3: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिवकुमारी और रामदुलारी।
3: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
3: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश

0: से सूरज चौहान जी का।
1: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
1: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
1: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
1: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
1: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
1: 8800440559। और हमारी ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
2: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
2: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
0: जी।
2: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
0: जी।
2: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
0: जी।
2: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है इसका नंबर है 8448440632। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के

0: परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
1: जी।
0: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है, इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
0: जी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
1: जी,
0: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है, दूसरा विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं, एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
1: जी,
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुन करके, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी,
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी, और नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
1: जी।
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए
1: जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है।
0: देखिए अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना,

0: जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
1: जी
0: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात
1: बिल्कुल
0: है।
1: बहुत जरूरी
0: कई बार
1: है।
0: ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है।
1: जी।
0: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती
1: है।
0: जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से।
1: जी,
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है।
1: जी हाँ।
0: ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाए, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है।
1: जी।
0: आज के समय में जो हम बात करते हैं, वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
1: जी।
0: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
1: जी।
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है, बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहे। क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ जी।
0: तो वो गेम जो भी रहें, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें। क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया, जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी

0: एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है,
1: मनोबल
0: बढ़ता है
1: जी,
0: और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं उनकी भी चीजें शेयर करना। ये चीजें यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल
0: जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी,
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार, सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं, उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, उसमें बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो अब डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है। एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत

0: अच्छा हो सकता
1: हो
0: है,
1: सकता है
0: वही
1: बिल्कुल।
0: पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है।
1: बिल्कुल जी।
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है,
1: जी
0: उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है।
1: जी
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना
1: हाँ
0: है,
1: बिल्कुल।
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है।
1: जी उसी को
0: इसके
1: आगे
0: अलावा
1: बिल्कुल।
0: हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य,
1: जी
0: बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं।
1: जी
0: जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
1: हाँ होती है।
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया वो
1: प्रयास तो
0: सफल
1: किया।
0: नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला।
1: जी
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए गलती से भी कुछ सीखा ना,
1: हाँ होता है
0: तो
1: जी
0: इसका मतलब क्या हुआ,
1: जी
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है।
1: जी
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि है उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो
1: जी
0: क्रियाकलाप हैं वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें।
1: जी
0: अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है,
1: थोप
0: जैसे
1: देते हैं।
0: थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: हाँ प्रोत्साहित करें।
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें। और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है,
1: जी
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल,
1: जी
0: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो
1: जी
0: टाइम
1: बिल्कुल
0: टेबल के अनुसार उसका हम
1: जी।
0: काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं।
0: देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूं,
1: जी
0: 8448440632, 8448440632। ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 1446। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं।
1: जी
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं, और एनसीईआरटी के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं। तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं।
1: जी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत

0: अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर के 12 बजे हैं और अब समय है फौजी भाइयों के कार्यक्रम सैनिकों के लिए का।

सैनिक भाई जय हिंद। हाजिर हैं फिल्म संगीत के सुहाने सफर के साथ और कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म दिल के इस गीत के साथ। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल।

सैनिक भाइयों कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में फिल्म तेजाब का ये प्यारा सा गीत। गायक कलाकार हैं अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। दोपहर के 12:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुनो सखी।

कार्यक्रम सुनो सखी, सुनने वाली सभी सखियों को हमारी ओर से प्यार भरी नमस्ते। सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम में स्वागत है। सखियों, आज है सोमवार और हर सोमवार हम करते हैं हिमाचली संस्कृति पर बातचीत। तो आइए हम बातचीत करते हैं, और बातचीत करने से पहले मैं बता दूं सखियों कि आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी जानी पहचानी सखी सुमन लेकर हाजिर हुई हूँ। सुनो सखी, इस प्यारे से कार्यक्रम को, तो इस कार्यक्रम में हम हिमाचली संस्कृति की बात करेंगे, उसमें लोकगीत, लोक कथाएँ और हिमाचल के उन मधुर धुनों की, और जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारी भावनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी संजोए हुए है। और साथ ही साथ सखी, और लोकगीत किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज की सामूहिक स्मृतियों और अनुभवों का स्वर होती हैं, जिसमें जीवन के हर रंग समाए होते हैं। और साथ ही साथ जन्म की खुशी, विवाह का उल्लास, त्योहारों की रौनक, खेत खलिहानों की मेहनत, ऋतुओं का सौंदर्य, माँ का स्नेह, बेटी का विवाह, हर तरह के लोकगीत गाए जाते हैं जिन्हें हम सुनते हैं और खुश होते हैं। साथ ही साथ प्रकृति के प्रति प्रेम भी इस लोक गीतों के जरिए देखने को मिलता है। तो सखियो, कार्यक्रम में हम और भी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे, फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और कार्यक्रम का पहला गीत आप तक पहुंचाते हैं।

इसी धूम के साथ सखियों कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। धूम मचनी भी जीवन में बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उदासी तनाव जो है जीवन को एक नीरसा बना देता है, और खूब मस्ती धमाल जीवन में हो तो ज़िंदगी जो है हमारी खुशनुमा बन जाती है। इसी ज़िंदगी को थोड़ा सा खुशनुमा बनाने के लिए जीवन में जानकारियाँ भी बेहद ज़रूरी होती हैं। तो आइए थोड़ा सा रुक करते हैं हम जानकारियों की ओर। हमारी लोकगीतों की आज हम बात कर रहे हैं, हिमाचली संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो इसमें लोकगीतों की बात ना हो तो बात नहीं बनती है। तो सखियो, लोकगीत हमारी सरलता और मधुरता के लिए विशेष पहचान रखते हैं। कांगड़ी, चंबा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, किन्नौर और अन्य क्षेत्रों के लोकगीत अपनी बोली, अपनी धुन और शैली के कारण अलग पहचान रखते हैं। इन लोकगीतों में पहाड़ों की सुंदरता, नदियों की कलकल करती आवाज़, देव संस्कृति, मेले त्यौहार और पारिवारिक रिश्तों की आत्मीयता सहज रूप से सुनाई देती है। सखियो, लोकगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, ये हमारी संस्कृति के जीवंत दस्तावेज हैं, जिनके माध्यम से हम अपने पूर्वजों की जीवन शैली, सामाजिक परंपरा, लोक विश्वास और जीवन मूल्य की जानकारी मिलती है। यही कारण है कि लोकगीत हमारी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन लोकगीतों को हमें संजो कर रखना है, ताकि अगली पीढ़ी भी इन्हें जान सके, और हमें इस अमूल्य विरासत को सहेजना है, ताकि हम आने वाले बच्चों को इसके बारे में बता सके। हमारे हिमाचल की संस्कृति अपनी सादगी, अपनी मधुरता, अपनी धुनों के लिए पूरे देश में जानी जाती है। और साथ ही साथ जो है हमारे पहाड़ी गीतों की मिठास सीधे दिलों को छू जाती है। तो अब हम थोड़ी सी बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की लोक कथाओं के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा कार्यक्रम में रुकते हैं और अपनी सखियों का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

सखी इस प्यारे से गीत के बाद फिर से हम वापस आते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें अपनी सखियों के साथ हमें करनी हैं। तो सखियों, हिमाचल प्रदेश की लोक कथाओं की बात हम करें तो यहाँ की समृद्ध संस्कृति, स्थानीय देवी देवताओं, जादुई कवदंतियों यानी लोक कथाओं, पहाड़ों की रहस्य पर आधारित होते हैं। इन कहानियों में राजा, रानियाँ, राक्षस, परियाँ, स्थानीय देवताएं, कुल देवताओं के चमत्कार भी शामिल रहते हैं। पांडवों से जुड़ी कथाओं की सखी बात करें तो हिमाचल के हर क्षेत्र में पांडवों के वनवास से जुड़ी कहानियां प्रचलित है। उदाहरण के लिए मंडी के करसो, घाटी और खजियार ऐसी मान्यता रखते हैं कि पांडवों ने यहाँ अपने वनवास का समय बिताया था। अब हम राजा बाणभट्ट की कहानी की बात करें तो कांगड़ा के प्रसिद्ध लोक कथा है, जिसमें एक ऐसा राजा का वर्णन है जो अपनी जीविका चलाने के लिए रस्सियां यानी बाण का काम करते थे। ये कहानी प्रजा के साथ संबंध और ऐतिहासिक मान्यता को भी दर्शाती है। इसके साथ साथ सखी, अगर हम कार्यक्रम में आगे बढ़े तो कुंजू चंचलो, आपने नाम सुन रखा होगा, चंबा की ये बेहद प्रसिद्ध लोक गाथा है। ये स्थानीय प्रेम, वियोग, बलिदान के भावों को उजागर करती है। रानी सूही चंबा रियासत की एक गाथा, त्याग और बलिदान की कहानी दर्शाती है, जो आज भी यहाँ के लोक गीतों में जीवित है। सखी, हिमाचल के हर गांव की अपनी दंत कथा होती है। राजा गढ़वाल और रानी की कथा की हम बात करें तो यहाँ के स्थानीय देवताओं और प्राचीन राजाओं के त्याग और न्याय पर आधारित कई कहानियाँ प्रचलित है, जो मेलों त्योहारों के दौरान सुनाई और

जाती हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ें, बाबा बालकनाथ हमीरपुर और बिलासपुर की बात करें तो बाबा बालकनाथ की चमत्कारी कहानियाँ, उनकी सिद्धियों के किस्से पूरे उत्तर भारत में श्रद्धा के साथ सुने जाते हैं। सगे हिमाचल प्रदेश की बात जितनी की जाए उतनी ही कम है। हिमाचल प्रदेश लोक कथाओं के साथ साथ लोक संगीत में स्थानीय वाद्य यंत्रों का बहुत योगदान रहता है। इसमें रणसिंघा, करनाल, शहनाई, ढोल, नगाड़ा और बांसुरी प्रमुख रहते हैं, जो इन गीतों में जान फूंक देते हैं। लोकगीत और लोक कथाओं की हमने बात कर ली, अब थोड़ी सी बात हम लोक नृत्य की भी कर लेते हैं। नाटी के बारे में तो हम सभी ने सुन रखा है, सुनी भी है, और हम में से बहुत सारी सखियाँ जो है नाटी पर थोड़ा सा नृत्य भी करती हैं। नाटी ये पूरे हिमाचल का लोक नृत्य है। इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। शिमला गी और माला नाटी, कुल्लू कथली नाटी, सिरमौर और शिमला बिरसू लोक नृत्य और बुढ़ाह लोक नृत्य, चंबा ढांगी और ढिप्पल पांगी फूल यात्रा नृत्य इत्यादि लोक नृत्य किसी विशेष क्षेत्र और समुदाय की संस्कृति, पहचान और परंपराओं को दर्शाते हैं। तो सखियों, ये तो थी हमारी लोकगीतों और लोक कथाओं की बातचीत और जानकारियाँ। इन्हीं के साथ थोड़ा सा कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत के साथ। आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: हो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: सखियों, गीत और अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम आप सुन रही हैं सुनो सखी, और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम आ पहुँचे हैं। तो आइए जल्दी से बना लेते हैं ब्रेड उपमा। ये एक आसान सा नाश्ता है, इसे हम बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, और नाश्ते के समय यह झटपट से बनने वाला नाश्ता है। जब भी भूख लगे हम जल्दी से इसे फटाफट से बना सकती हैं। ब्रेड का उपयोग करने का एक शानदार तरीका भी सखियों है ये, और ब्रेड किसी भी तरीके से ले, जैसे हील बहील, मल्टीग्रेन, यहाँ तक कि पाव बंस भी हम ले सकती हैं। सब्जियाँ गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, मटर बारीक काट ले, प्याज से इसमें थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाता है और स्वाद भी बदल जाता है। अदरक लहसुन का पेस्ट स्वाद के लिए ले सकती हैं, टमाटर को खट्टेपन के लिए ले सकती हैं, हल्दी, सांभर, धनिया पाउडर, मिर्च, घी स्वाद बदल देता है। और ब्रेड के टुकड़े अब लेते हैं, उन्हें टुकड़ों में काट लेते हैं। एक पैन में तेल या घी गर्म करते हैं, प्याज सुनहरी होने तक इसे भूनते हैं। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे कटा हुआ या प्यूरी, और नमक डालकर इसे अच्छे से भूनेंगे, हल्दी डालेंगे, फिर सांभर पाउडर डालेंगे, और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ब्रेड के टुकड़े इसमें डाल देंगे। अंत में ऊपर से घी डालेंगे, धनिया पत्ती के साथ सजाएंगे, और फिर ज़्यादा सोचना नहीं है सखियों, जल्दी से फटाफट से बनाना है और फटाफट से सर्व कर देना है, क्योंकि समय भी हो रहा है थोड़ा सा खान पान का, और भूख भी बढ़ रही है। तो आप करें तैयारी, और चलते चलते हम आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत।
5: वो भी

सखी इस प्यारे से गीत के साथ अनुमति दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की। अगली बार नई बातों नई जानकारियों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। प्यारी सखियों नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर का 1 बजने को है। आप आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार ले किए जाएंगे।
1: मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद

खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुँच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: key NATO summit in Turkey, which U.S. President Donald Trump is expected to attend. Ukraine's Air Force said Russia used ballistic missiles, cruise missiles and drones in the attack. Explosions echoed across the city as civilians sought shelter in metro stations. The Intermeteorological Department, IMD, has issued red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra and Chhattisgarh today. The weather agency predicted heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Madhya Pradesh and Uttarakhand during the day. England stormed into the FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 3-2 victory over Mexico at the Azteca Stadium in Mexico City today. In another match, Brazil's veteran player Neymar Jr. has announced his retirement from international football. And with that, we end this news bulletin.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
2: रुक गए हम तो ये कीमती वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा, जो फिर कभी लौट कर नहीं आता। कुछ कदम आप चले, कुछ दूरी हमने तय की और इस तरह हमारी मुलाकात हो गई। हमारे एक और साथी का कहना है, चलते रहना नियति है और गुजरा वक्त अक्सर दोबारा कभी भी नहीं मिल सकता। जीवन का कटु और शाश्वत सत्य गतिशीलता ही है। ऐसे कर्मयोग काल निरंतरता और पुरुषार्थ के रूप में गहराई से समझे जाने की जरूरत है। दूसरे गहन अर्थ में जीवन बहती नदियों सा या किसी चक्र जैसा है, जैसा कि इन दोनों से यही ज्ञान मिल रहा है कि निरंतर गतिशील रहने में ही उनका अस्तित्व बरकरार रहता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि चलते चलते हम किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हमारा मन करता है कि कुछ देर के लिए ठहर जाए। क्या ऐसी कोई जगह या कोई ऐसा समय आपके जीवन में आया, हमें बताइए। और ये भी बताइए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आया जिसमें आपको लगा कि भाई इनके साथ कुछ देर ठहर जाना चाहिए। तो आप हमें बताइए कि रुकने का मन कब किया आपका। और साथ ही हम नहीं रुक रहे हैं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। आपको बताना है कि किसकी आवाज़ में गीत, कौन से फिल्म से।

माफ कीजिएगा, गति ही जीवन का आधार है, ठहराव तो बस एक हार है, संघर्षों से ही निखरता इस जीवन का श्रृंगार है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो कदम बढ़ाते रहते हैं, इतिहास वही रचते हैं जो लहरों से टकराते रहते हैं। और हमारे को और साथी कह रहे हैं कि चलना ही जीवन का दूसरा नाम है, अब जब आपके कदम सही दिशा में उठते हैं तो चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, आपकी निरंतर मेहनत और सही दिशा उसे सच कर देती है। सफलता हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि आप रुकने के बजाय कितनी लगन से अपने रास्तों पर आगे बढ़ते गए। हमारे को और साथी ने लिख भेजा है कि कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई, उसने कहा दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चलें, मंजिलें प्यार की होंगी तय चलते चलते, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रही ये जिंदगी, ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे को और साथी लिखते हैं कि सफर में चलते ही तो जाना है, जीवन का नाम ही चलना है, जहाँ रुके वहीं सांसें रुक जाएंगी, हंसते मुस्कुराते जीवन के सुख दुख को भी चलते रहेंगे तो जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ये गीत इन्होंने लिखा। और साथ ही बहुत सारे गीत भी इन्होंने लिखे। एक और साथी लिखती हैं कि सचमुच जीवन आज फिर एक बार आपके साथ चलने का भाग्य मिल गया, सचमुच जीवन में हर घड़ी चलते रहने का बड़ा महत्व है, निरंतर चलते रहने से हर मुश्किलें और असफलता का डटकर सामना करने का दृढ़ मनोबल पाते हैं, नई संभावनाओं को अपनाकर पुरानी बातें छोड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इसी अर्थ का एक सुंदर मराठी कविता याद आ रही है, कायदा पाड़ा गतीचा काल मागे लागला, थांबला तो संपला, धावत्याला शक्ति यही आणी रस्ता साफ पड़े। आज की भारत बहुत प्रेरणादायी, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, ये मार्गदर्शक संदेश दे रही है। हम तो अपने साथी से कहेंगे कि जो भी वो दूसरी भाषा में लिखकर भेजते हैं कुछ कविताएं, तो उसका अर्थ भी जरूर लिख दें ताकि सभी को पूरी तरह से समझ में आ जाए। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं, लेकिन एक और बात हमारे साथियों ने कहा कि चलते चलते सफलता मिलती है, चलते चलते रास्ते मिलते हैं, लेकिन ये सोचिए कि मान लीजिए हमें सफलता मिल गई और चलते चलते कहीं किसी मार्ग पर कहीं रास्ते में हमें असफलता का सामना करना पड़ा, तो कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। फिल्म का नाम और नायिका कौन है बताइए।

अनामिका फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, और इस फिल्म में नजर आती है नायिका के रूप में जया भादुड़ी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन से शिष्य श्यामल बनी प्रकृति के सुंदर प्रसन्न सुहाने नज़ारे को देखकर दिल कहता है रुक जा रे रुक जा। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन पथ पर मेरी बेटी के आगमन ने जीवन सफर की दशा और दिशा बदल दी। उसकी एक मुस्कान में मानो जीवन लक्ष्य छुपा था। आज वो 37 साल की ही कार्यरत है, कल स्वयं ड्राइव कर दूर घुमाने ले गई। मेरी दैनंदिनी जीवन बेटी ही है। वहीं हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी है। हमारे साथियों ने कहा कि कह रहे हैं कि उन्होंने चलने के महत्व को बताते हुए एक बात लिखी और कहा कि चलते रहना तो जीवन का सफर है। जीवन की तुलना हमेशा बहने वाली नदी से की जाती है। एक नदी अविरल बहती है, समुद्र में लहरें लगातार गतिशील रहती हैं, हवा एक पल के लिए भी नहीं रुकती। प्रकृति का नियम है कि जो ठहर गया उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना, चुनौतियों को पार करना और हर बदलाव को स्वीकार करना ही वास्तविक जीवन है। मनुष्य का जीवन भी कर्म प्रधान है। जीवन के सफर में सुख दुख धूप छांव और उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यदि हम किसी एक पड़ाव पर रुक जाएं तो जीवन का असली उद्देश्य पीछे छूट जाता है। हमारे एक और साथी ने बताया कि मैं हर रोज शाम मेरी शॉप के आगे की खुली जगह में वॉक करता हूँ। संडे की शाम मेरे घर के पास वॉक करते करते घूम लेता हूँ। वॉकिंग टाइम मेरी जेब में मोबाइल में विविध भारती सेवा के गीत बजते रहते हैं। तो बिल्कुल हम भी आपके साथ यानी कि वॉक कर रहे हैं, उसे भी नोट किया जाना चाहिए। जो भी उस वक्त आपके साथ हैं विविध भारती पर बने हुए, उन्होंने भी आपके साथ वॉक की है, ऐसा हम मानकर चलेंगे। और हमारे एक और साथी ने कहा कि भाई यूं ही कोई मिल गया था सरी राह चलते चलते। बहुत बार कुछ अनजान लोग चलते चलते मिल जाते हैं, उनके साथ चलना भी बड़ा सुखद होता है, ये जानते हुए कि शायद दोबारा फिर कभी उनसे मुलाकात नहीं होगी। राह चलते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने में उनका जो साथ रहता है वो हमेशा याद रहता है और दिल से उनके लिए शुभकामना भी निकलती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप कई बार वॉक करने जब हम जाते हैं तो भी बहुत से लोगों से हमारी पहचान होती है, बहुत से लोग हमें मिलते हैं, तो उनके पास जाकर कैसा लगता है आपको? कभी कभी तो हम वॉक करने के बाद बैठकर कुछ देर बात भी करने लगते हैं और वक्त यूं गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके पास जाकर आपका वक्त यूं ही गुजर जाता है? हमें बताइए। और साथ ये भी बताइए कि जो गीत अब सुनवाने वाले हैं वो किसने लिखा है।

नीला आकाश फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़ें, राजा मेहंदी अली खां के बोल थे, जो जवाब हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही दिया। चलते रहने का नाम ही जिंदगी है, मंजिल मिले या ना मिले हर कदम हमें कुछ नया सिखा जाती है। रास्ते बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन जो मुस्कुराते हुए चलता रहता है वही जिंदगी के हर सफर को यादगार बना लेता है। जिंदगी ठहरने से नहीं, चलते रहने से महकती है। हर नया कदम एक नई उम्मीद लेकर आता है और हर सफर हमें अपने बारे में कुछ ना कुछ बताता है। वहीं हमारे साथी ने बताया कि मेरी बेटी ने थोड़ी देर से चलना सीखा था, क्योंकि वो एक भरे पूरे परिवार में पली बड़ी है, इसलिए सब उसे दिन भर गोद में ही लिए रहते थे। फिर जब मेरे पापा उसके लिए एक तीन पहियों वाली गाड़ी लेकर आए, तब उसने चलना सीखा। उस यादगार दिन की तस्वीर आज भी मेरे पास है। वहीं हमारे साथी ने भी कथा ये याद किया कि हम जब छोटे थे तो लकड़ी की तीन पहियों वाली गाड़ी होती थी, एक खरीद ली जाती थी तो कई बच्चों के काम आती थी, बाद में तरह तरह के रंग बिरंगे वॉकर आने लगे। जिंदगी किसी मंजिल का नहीं बल्कि चलते रहने का नाम है, ऐसा हमारे साथी का कहना है, और हर कदम हमें एक नई कहानी से मिलवाता है, हर मोड़ कोई नया एहसास दे जाता है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि निरंतर चलते रहना ही जीवन की रीत है, चलते हुए ही जिंदगी में अनेक मोड़ आते हैं जहां से जिंदगी का फलसफा बदल जाता है। चलते हुए जीवन के सफर में अनेक साथी मिलते हैं जो जिंदगी भर याद करते हैं या जिंदगी भर याद रहते हैं। और हमारे साथी ने बहुत से गीत लिखे हैं जिनमें से कुछ गीत तो शामिल हो गए हैं। हमारी कौर साथी कहती हैं कि जिंदगी सचमुच एक खूबसूरत सफर है जहां हर कदम हमें किसी नई मंजिल, नए रिश्ते और नए अनुभव की ओर ले जाता है। कभी चलते चलते कोई अपना मिल जाता है तो कभी वक्त हमें जीवन के अनमोल सबक सिखा देता है। राहें बदलती रहती हैं, मोड़ आते रहते हैं, लेकिन जो मुसाफिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहता है वही जीवन की असली खूबसूरती को महसूस कर पाता है। हर मुलाकात एक नई याद बन जाती है और हर सफर दिल में एक नई धुन छोड़ जाता है। इसलिए जीवन का संदेश यही है कि रुकना नहीं, चलते रहना है, क्योंकि मंजिल से अधिक खूबसूरत वो सफर होता है जो हर पल हमें कुछ सिखाता है। तो चलते तो रहना है, चलते चलते हमारे पांव की खूबसूरती देखना भी बहुत ज़रूरत है, खूबसूरती से ज़्यादा मजबूती। तो किस तरह से मजबूत बनाते हैं आप अपने पैरों को, चलते चलते तो बनाते ही हैं, और उनका ख्याल रखने के लिए किस तरह के जूते चप्पल आप लेते हैं ये बताइए। कभी कभी हम बहुत ही सुंदर दिखने वाले चप्पल जूते ले लेते हैं और उससे पाँव में होती है तकलीफ। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किस फिल्म का है।

ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना और चलते रहने की बातें हो रही हैं आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में, क्योंकि चलना ही जिंदगी है ऐसा हमारे साथियों का भी मानना है। और हमारे साथियों से हमने ये भी पूछा था कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको देखकर या जिसके साथ थोड़ी देर बैठकर आपको वक्त का पता ही नहीं चलता और ऐसा लगता है कि भाई ये वक्त कहाँ चला गया। तो इस तरह के लोगों की बातें हमारे साथियों ने कही है। हमारी एक साथी कहती है, एक बड़ा ही प्यारा दोस्त जिसके साथ बात भले ही ना हो पर उसका साथ हमेशा साथ रहता है, मानो वो हमसे हर समय बात कर रहा हो। प्यारा सा एहसास ही इतना प्यारा होता है कि मानो वो हमारे आसपास ही है, और कभी कभी उसकी बातें इतनी अपनी सी होती हैं मानो वो हमारी ही बात कह रहा हो। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि जिंदगी का सफर यूं ही नहीं कट जाने वाला, हम सफर साथ हो तो रास्ते यूं ही कट जाते हैं। बहुत से मित्र छूट गए, कुछ राह बदल गए, सफर ये VBS के साथ सुहाना हो गया है। वहीं हमारे एक और साथी ने बताया कि कॉलेज के लास्ट ईयर में एग्जाम के बाद हमें सभी दोस्तों से बिछड़ने पर ऐसी ही इच्छा हुई थी कि काश ये समय और हम यहीं रुक जाएं, पर ऐसा संभव कहाँ, जीवन तो बहता पानी है, चलता रहता है। आज भी उन सबसे टच में है, कभी कभी मिलना जुलना हो जाता है। मोबाइल के आविष्कार को शत शत नमन की बातचीत होती रहती है। वाकई मोबाइल के जरिए तो हम अपने साथियों से सबसे मिल लेते हैं और बातें कर लेते हैं, कितना ही अच्छा ये वक्त होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जब कोई साथ बैठा है बातें कर रहा है तो वो ना जाए, कुछ देर के लिए रुक जाए, और ऐसे में हम उसे आवाज़ देकर रोकने की कोशिश भी करते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप किस व्यक्ति के साथ कुछ और देर बिताना चाहते हैं और उसे रोकना चाहते हैं और उसे आवाज़ देते हैं? कौन सा गीत गाते हैं उस वक्त, ये भी हमें बताइएगा। और हमारे साथी कह रहे हैं कि हम लोग सोमनाथ और द्वारिकापुरी की यात्रा पर गए थे तो हमारे साथ के लोगों से 7 दिन में इतना मेल मिलाप हो गया थी। यात्रा के बाद अलग होते समय बहुत दुख हो रहा था, करीब 80 लोग थे। तो ये भी एक तरीका होता है जब हम अलग अलग सफ़र के दौरान मिलते हैं, लेकिन इन दिनों तो आपस में बने रहना, आपस में मिलते जुलते रहना, बातें करना आसान है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर उत्तरदायित्व का बोझ है और राह में किसी खास व्यक्ति से सफ़र बाधित हो रहा है तो समझौता कर जाएं, त्वरित फैसले से नुकसान हो सकता है। हमारे एक और साथी को कछुए की याद आ गई, कछुआ और खरगोश की वो जो कहानियां हैं उससे उन्हें याद आ गया कि कछुआ निरंतर चलता रहता है और अंत में उसकी जीत होती है। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्या आप अपने जीवन में किसी व्यक्ति को रोकना चाहते हैं ज़्यादा देर और चाहते हैं कि कुछ पल ऐसा निकले जिसमें समय ना बीते और बातें चलती रहें, तो हमें बताइए कौन

उदित नारायण और साथियों की आवाज़ में आपने सुना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से ये गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। और हमने अपने साथियों से बहुत सी, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई इसमें तो रुकने की बात है, चलने की बात कहाँ है, लेकिन रुका कितनी अच्छी तरह से जा रहा है ये तो देखिए। और हमारे भारत में रुकने वाला शब्द भी तो शामिल है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ताजमहल को देखने के लिए बहुत चलना पड़ता है। ताजमहल फिल्म का ये गीत सुनकर

उन्हें याद आया है। तो हम ये बताएं कि बहुत से जो ऐसे स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं, उनको देखने के लिए बहुत चलना ही पड़ता है। और जब भी हम सखी सहेलियाँ किसी कार्यक्रम में उसकी जानकारी देते हैं तो आपको बताते ही हैं कि एक आरामदायक फुटवेयर आप साथ में लेकर जाएं, क्योंकि बहुत चलना पड़ेगा। और कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं चले गए घूमने के लिए और आपको इतना ज़्यादा चलने का बिल्कुल भी मन नहीं था और किसी तरह से आप चल के जाकर देखने के लिए गए किसी नज़ारे को या किसी दर्शनीय स्थल को, और आपको बहुत आनंद आया और ऐसा लगा कि चलना हमारा सार्थक हो गया। या कभी ऐसा हुआ है कि आप चले ही नहीं और उस जगह की सैर ही नहीं की, तो दोनों बातें हुई हों तो हमें से साझा कीजिए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जूते अब हमारे शौक के अधीन नहीं है उम्र के उत्तरार्ध में, पापा ये पहनो ये वाला अच्छा लगता है कि उनकी मर्जी से शासित होते हैं। जितनी खर्च पोशाकों में उम्र भर की होंगी उतनी बच्चे मेरे लिए दो जोड़ी जूते पर कर देते हैं। भाई बड़े ही खुश नसीब हैं आप, ऐसा हम कहते हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि जूते और चप्पल अपने पैरों को फिट आए ऐसे लेने चाहिए, छोटी हाइट वाले हील लेने चाहिए जो चलने में दिक्कत ना हो। तो ऊँचे लोग टेपर हील वाले पसंद करते क्योंकि हाइट ज़्यादा ना दिखाई दे, ऐसा इनका कहना है। पर लेकिन हील वाले जूते लेने के लिए कह रहे हैं, मतलब छोटी हाइट जिनके उन्हें हील वाले जूते ले लेने चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मुझे कभी भी जीवन का या किसी समस्या का या बच्चों के विषय में कोई फैसला लेना होता है तो अपनी धर्मपत्नी के पास बैठता हूँ, सारी बात समझाता हूँ और साथ में दोनों अदरक इलायची वाली चाय पीते हुए सही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। अगर धर्मपत्नी कोई सही सुझाव देती है तो मैं यही कहता हूँ कि आपके बिना मैं अधूरा हूँ। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि मुझे लाइट वेट जो जूते होते हैं वो बहुत पसंद आते हैं। हमारे एक और साथी ने कहा कि सुबह 3 किलोमीटर पैदल घूमने जाते हैं और आते हैं, शाम को साइकिल में भी इतना ही घूम आते हैं। भाई हमारे श्रोताओं की सेहत का राज तो आज खुल रहा है क्योंकि वो बता रहे हैं कि कितनी वॉक कौन कर रहा है, और सारे के सारे श्रोता वॉक करने पर जा रहे हैं, कोई साइकिल चला रहा है, कोई दौड़ने जा रहा है। भाई वाह, हमें तो आपसे सीख लेनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बिल्कुल वॉक करने से ही बहुत से लोगों से जान पहचान हो गई है, बहुत ज़्यादा किसी के बारे में जान पहचान नहीं है, लेकिन हम टहलने के बाद कुछ देर बैठकर खाना बनाना, फल सब्जियों के भाव, घुटनों और पैर के दर्द के बारे में और भी कुछ बातें करते हैं, हंसते हैं, फिर ताज़ी स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ अपने अपने घर को लौट आते हैं। हमें तो पूरा यकीन है कि जब इस दर्द की बातें होती होंगी तो उसकी दवा भी समझ में आती होगी, बहुत से लोग सुझाव भी देते होंगे। हमारे एक और साथी का कहना है कि सुबह की वॉक सिर्फ सेहत ही नहीं, नए रिश्तों और नई मुस्कानों का भी जरिया बन जाती है। राह चलते जब नए लोग मिलते हैं तो कुछ पल की बातचीत भी दिन को खुशनुमा बना देती है। कभी कभी अनजान चेहरे भी जीवन में अपनापन और नई सकारात्मक ऊर्जा भर जाते हैं। एक और साथी का कहना है कि मैं प्रतिदिन सुबह 1 से 1.5 घंटे तक हमारी क्रिकेट टीम के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। खेल पूरा होने के बाद हमारी टीम के कुछ खिलाड़ी रुकते हैं तो उनके साथ बातें करते करते वक्त कहाँ कट जाता है पता नहीं चलता। तो इस तरह से हमारे सभी साथी खेल से या फिर वॉक से सेहत से जुड़े हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है और आप हमें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि भाई समय तो बीतता ही जाता है और सही समय पर किया गया सही काम भी काम आता है। तो इस वक्त मुझे लगता है कि सही काम ये है कि एक गीत सुनवा देते हैं। बताइए किसकी आवाज़ में गीत है।

गोलमाल फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। आपने आवाज़ बिल्कुल सही पहचानी। हमारे एक साथी ने बताया कि माँ शारदा शक्तिपीठ मेहर गया था, वहाँ पर लगभग 1000 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बहुत थक गया था। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि मैंने अपनी मॉर्निंग वॉक साइकिलिंग से शुरू करते हैं, फिर मॉर्निंग वॉक करते हैं काफ़ी लंबे समय तक। अब रिटायर बैंकर हैं, 69 ईयर के हैं और उन्हें हमेशा अच्छा लगता है ये करना। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि उन्होंने 6000 स्टेप का एक बंधन रखा हुआ है। हमारे और साथी जो हैं वो भी बता रहे हैं सब अपनी अपनी व्यायाम की बातें करने लगे हैं अब तो। ऐसा हमें लगा कि भाई आप इतनी अच्छे से चलते फिरते रहते हैं और वॉक करते हैं, योग करते हैं, ये सारी बातें हमारे साथी बताने लगे और स्वस्थ रहने के नुस्खे भी अब आने लगे हैं। अब हमें पता चल रहा है कि आपका जीवन इतना आनंदमय कैसे रहता है, किस तरह से इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप करते हैं। क्योंकि सुबह सुबह जब आप चलते हैं, जाते हैं, कहीं घूम फिर कर आते हैं तो आपके मन में भी एक अलग सी ऊर्जा रहती है, अलग सी सकारात्मकता रहती है जो हमें आपके कमेंट्स के ज़रिए मिलती है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चलते चलते जीवन हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। कुछ लगे लोग राह में मिलते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं, कुछ याद बनकर दिल में बस जाते हैं। सफ़र चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, हर मोड़ पर कोई ना कोई एहसास हमारा हम सफ़र बन जाता है। वैसे हमारे एक साथी का कहना है कि भाई मैं तो सारे दिन चलती रहती हूँ और घर में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, रेडियो में गाने चलते रहते हैं और मेरा हाथ बराबर चलता रहता है, कुछ भी करते हुए उनका हाथ काम में लगा रहता है। हमारे एक साथी ने बताया कि मेरी बेटी पूना में पढ़ रही थी, जाते जाते ट्रेन में एक लड़के से उसकी मुलाकात हो गई, हम लोगों को बताया भी। वो अक्सर यूं ही ट्रेन में मिलते रहते और उन दोनों ने शादी करने का निश्चय कर लिया। हम लोगों के लाख विरोध के बाद भी शादी हुई गई और दामाद बहुत ही अच्छा और शरीफ है। तो इस तरह से जो ट्रेन में हम सफ़र मिला वो जीवन में हम सफ़र बन गया, बहुत ही अच्छी बात। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम प्रतिदिन कम से कम 5 अधिकतम 8 किलोमीटर वॉक करते हैं, सुबह 5:30 से 8 बजे तक 5 तो कम से कम चलते ही हैं। और एक साथी कहने कि सुबह योग और रात को खाने के बाद टहलने जाते हैं। हमारे एक साथी ने बताया कि कनाडा में नायग्रा फॉल देखने के समय उन्हें ऐसा लगा कि उनका दिल ये कह रहा था कि वापस ही नहीं आना है, वहीं रुक जाएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैरों में हाई हील सैंडल किस उम्र तक पहननी चाहिए महिलाओं को। भाई ये सवाल तो किसी भी महिला के लिए पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जिसकी जितनी भी श्रद्धा भक्ति हो कह सकते हैं, या कहें कि जिसके पैर जितनी इजाज़त दें, जो अपने पैरों को अच्छी तरह से संभाल सकें, वो उम्र का तो कोई इसमें सीमा रही नहीं, आप अपनी मर्जी से पहन

सकते हैं। वहीं हमारे साथी ने कहा कि मैंने ताजमहल 15 बार देखा है, तो अब तो आपको पूरा याद हो गया होगा ताजमहल की कहाँ जाने से क्या क्या होता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये ज़िंदगी बड़ी अजीब है, मंजिल का लालच देती है और सारी उम्र इंसान को सफ़र में रखती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गुरु जी के आश्रम में जाते हैं, वहाँ के वातावरण में ऐसी शक्ति होती है कि कुछ देर वापस लौटने का मन नहीं करता। एक साथी ने कहा कि उन्हें एक गाना मेरे दिल के बहुत करीब है और आपने पूछा कि किसी के साथ रहने से अगर वक्त ठहर जाए तो गाना जब भी आता है तो मुझे मेरे पतिदेव जो इस दुनिया में नहीं है उनकी याद आती है और मेरे लिए वो ये गाना हमेशा गाते थे। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इस गीत के जरिए उनकी याद एक बार फिर हमने दिलाई। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नाना नानी जब आते थे कुछ दिन रुकते थे और फिर जब वो जाने लगते तो हम बच्चे रोते थे, अगले दिन जब हम लोग स्कूल जाते तब वो चुपके से जाते थे। अच्छा ये बताइए कि नाना नानी के जाने से तो ऑलमोस्ट सभी रोया करते थे क्योंकि साथ में जाने का मन करता या एक अलग ही प्रेम जो मिलता था, लेकिन ये बताइए कि स्कूल जाने के लिए कितने लोग रोते थे, स्कूल जाने के लिए कितने लोग रोते थे और नहीं जाने के लिए कितने लोग रोते थे, ये बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गीत, हमें बताइए किसने लिखा ये गीत।

घर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे गुलजार के बोल, और यही हमारे सवाल का सही जवाब जो आपने भी दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे बचपन से एक हसरत थी कि गोलकुंडा हैदराबाद का किला देखूं और वो इच्छा पूरी हुई। वहाँ पर पहाड़ बहुत ऊंचा था, उस पर चलना आसान नहीं था, लेकिन मैं गया और प्राचीन कला को देख कर आनंद आया। वहीं हमारे एक साथी का कहना कि 11 गीत की लिखी हुई इबारत में से 9वां और 11वें नंबर पर लिखा गीत शामिल हुआ। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो स्कूल जाना बड़ा ही अच्छा लगता था, नहीं रोए कभी भी। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सरल सरल सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि कुछ हार्ड सवाल पूछें, सरल सवाल में इतना मज़ा नहीं आता। तो बिल्कुल आप बताइए कि कौन सा मुश्किल सवाल होना चाहिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक बार जब हम सब छोटे थे तब राजस्थान मामा जी के विवाह में कार्यक्रम में गए थे, तब माता चामुंडा देवी के मंदिर के दर्शन के लिए गए। मंदिर इतना ऊँचा है कि सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते बड़े बूढ़े तो थक गए थे, हम बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था। एक और साथी कहती हैं कि मैं रोज़ स्कूल जाती थी, चाहे बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, फुल अटेंडेंस होती थी मेरी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैरों में तकलीफ होने के बावजूद डॉक्टर चलते रहने की सलाह देते हैं, एक लोहे की मशीन अगर बहुत दिन तक चलाई न जाए तो उसमें जंग लग सकती है। इसी प्रकार यदि मनुष्य रुक गया तो धीरे धीरे पैर की हड्डियां जाम होने लगती है, इससे थोड़ा बहुत चलते रहना चाहिए। बिल्कुल सही सलाह आपने दी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनकी बचपन से हसरत थी घूमने जाने की, ये तो हमने पढ़ ली। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मसूरी यात्रा के दौरान मैंने लैंडोर तक करीब 11 किलोमीटर के पैदल चढ़ाई की। जब मैं वहाँ लैंडोर बेक हाउस पहुंची तो उसके मशहूर केक और पेस्ट्री खाए और स्वाद आज तक मुंह में बसा हुआ है। एक और साथी कहने कि मैंने मेरी दीदी की छोटी सी लड़की को बहुत चलाया जब वो 1-2 साल की थी। हमने किसके चलना सिखाया? हमारे चलते बोलते रहने की तब की गुरु तब माँ ही थी। माँ ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। जब बच्चे अचानक उठने की कोशिश करने लगते हैं तो माँ को ये समझ में आ जाता है कि वो चलना चाहते हैं और धीरे धीरे वो उन्हें पकड़ कर चलना सिखा देती हैं। एक साथी कह रहे हैं कि समय और बादल के अलावा कोई ईमानदारी से नहीं चलता। और हमारे साथी कह रहे हैं कि हम जीवन और उसके अंतर हमें निरंतर सक्रिय रहने, चलने फिरते रहना ज़रूरी है। वैसे तो चलते चलते रहने के बहुत से गीत हैं, कुछ याद आ रहे हैं। इन्होंने गीतों के नाम लिख भेजे हैं, हमें पूरी उम्मीद है उसमें से कुछ गीत तो शामिल हो ही गए हैं। अब कार्यक्रम का अंतिम गीत, हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत, किसकी आवाज़।

चलते चलते फिल्म से किशोर कुमार को आप सुन रहे थे और हम अलविदा नहीं कह रहे हैं, हालांकि वक्त हो गया है, लेकिन विविध भारती का सुरीला सफर तो रहता है आपके साथ दिन रात लगातार। इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत।

0: त्रिवेणी। श्रोताओं को नमस्कार। आज की त्रिवेणी रिश्ते नातों पर आधारित है। दोस्तों, रिश्ते नातों के बिना परिवार समाज की कल्पना नहीं कर सकते। हर व्यक्ति का व्यक्ति से कोई ना कोई रिश्ता जुड़ जाता है जब उनकी मुलाकात होती है। जब बच्चा परिवार में जन्म लेता है, पहला रिश्ता माता से, पिता से, उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों से जुड़ता है। दादी, बाबा, चाचा, चाची, नानी, नाना, मामा, मौसी, बुआ, भाई, बहन, सब रिश्ते करीब आ जाते हैं, जिनसे मिलता है अपार ममता, प्यार और दुलार। ये रिश्ते नाते विश्वास, प्यार, व्यवहार, सुरक्षा, भरोसे से निखरते हैं। इनमें सच्चाई का होना बहुत ज़रूरी है। बिना किसी भेदभाव के अपना पराया जैसी भावनाओं से परे मानसिकता का स्पष्ट होना आवश्यक है। इनमें मिलना मिलाना, आदर सम्मान का होना बहुत ज़रूरी है। आपसी बातचीत, संवाद, संतोष, धैर्य भी हो आपस में।
1: तेरा मुझसे

दोस्तों, इन रिश्तों में प्रेम की धारा बहती है। रहीम जी ने भी कहा है कि रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रिश्तों में प्यार का होना बहुत ज़रूरी है। इनमें मतभेद हो जाए तो दूरियां बढ़ जाती हैं। ये रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं। बरसों तक रिश्ते नाते फलते फूलते रहा करते थे, तब संयुक्त परिवार हुआ करते थे। बच्चे परिवार में कैसे बड़े हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। आज एकल परिवार हो गए हैं, बच्चों की संख्या भी कम हो गई है। ये रिश्ते नाते बुआ चाचा, भाई बहन, मौसी मामा सब खत्म होते जा रहे हैं। रिश्तों की रौनक त्यौहार, उत्सव और मांगलिक कार्यों में बड़ी अच्छी लगती है। आज इनमें भी कमी आ गई है, या सब अपने आप में इतने व्यस्त होते जा रहे हैं कि शामिल होने में असमर्थता दिखाते हैं।

दोस्तों, आजकल रिश्ते नाते डिजिटल हो गए हैं। फ़ोन, वीडियो कॉल्स या मैसेज से बधाई, संदेश, संवेदना प्रकट करना, बस दे दिया उनका ये फ़र्ज़ पूरा हो गया। इनमें कितना अपनापन होता है या सिर्फ खाना पूर्ति, ये हम सभी अच्छी तरह से समझते हैं। जो पहले रिश्ते नातों का आपस में एक दूसरे से घर आना जाना होता था, मिलकर रसोई बनाना, एक साथ खाना, कितनी गप्पे मारना, सुख दुख में शामिल होना, परिवार को ताकत दे जाता था कि एक आवाज़ पर, एक तार, टेलीग्राम, चिट्ठी मिलते सब आ जाएंगे। आज इनमें भी कमी आ गई है। लोग रिश्ते अब दिल से नहीं, ज़रूरत से बनाने लगे हैं। कहते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन वे तब तक आपके साथ हैं जब तक उन्हें बदले में कुछ मिले।

वक्त के बदलते दौर में हमें मिलकर इन्हें संभालना होगा। रिश्तों में फिर से मुलाकातों का, संवाद का दौर लगाना होगा। रिश्तों की मीठी यादों को साझा करें, वे फिर से लौट आएंगे।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन

0: सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
1: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
2: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
3: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट

0: जारी कर रही है।
1: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
0: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोडोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलेजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में 3री बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

किशोर कुमार की आवाज में फंटूश फिल्म का गीत आपने सुना, साहिल ध्यानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

गुलजार के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। बंदिनी फिल्म के इस गीत में संगीत सचिन देव बर्मन का। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

पारसमणि फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, फारूक कैसर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं हाफ टिकट फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।

0: सहरिया होय होय ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होय होय ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ संवरिया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुधन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय लटकट रंगीले सांवरिया आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सांवरिया हाय हाय
0: ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया ओ गुजरी।

0: बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय। मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया हाय हाय ओ तेरी तिरछी नजरिया,
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया होय होय ओ जाने सारी नगरिया।
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशिक फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, मुकेश और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब आपको अंतिम गीत सुनवाते हैं, शमशाद बेगम और उषा मंगेशकर की आवाजें। ब्लफ मास्टर फिल्म का ये गीत सुनिए, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और इस गीत के साथ नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार व सामायिक चर्चा ले किए जाएंगे।
1: अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक आज लगभग 27 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र के बढ़ते योगदान को दर्शाता है।
1: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन किया, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। अमित शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीज का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। उन्होंने आज तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिवस के अवसर पर छोटा शिमला स्थित तिब्बतियन स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विक्रमादित्य सिंह ने शिक्षकों से विद्यार्थियों को नशे जैसी बुराई से दूर रखने के लिए नियमित तौर पर जागरूकता अभियान चलाने का आग्रह किया। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सड़कों और आधारभूत ढांचे का निर्माण आवश्यक है, लेकिन कोई भी विकास कार्य पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र और वनों के महत्व के प्रति जागरूक करने पर भी बल दिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक के स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान है, जो व्यक्तियों को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली रोगियों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। सोलन जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सोलन शलुमणा सड़क मार्ग पर पोकलेन मशीन चलाए जाने से स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर हाल ही में सुधारीकरण व टारिंग का कार्य किया गया है और पोकलेन मशीन चलने से सड़क समय से पहले ही क्षतिग्रस्त होने लगी है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने सड़क निर्माण के दौरान आवश्यक स्थानों पर पुलियों और नलियों के निर्माण की मांग भी की थी, लेकिन उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
2: ये जो ध्रोट सुमणा मार्ग प्रधानमंत्री सड़क योजना में बनी है, इसके हाल पहले ही बहुत खराब थे और अब आज ये जेसीबी लाए हैं, इससे सारी सड़क उखड़ रही है। कृपया सड़क का या तो ध्यान रखा जाए, इस तरह से जेसीबी मत लाया जाए इसके ऊपर से, ताकि कम से कम सड़क तो ठीक अच्छी तरह से बनी रहे।
3: हमारी सड़क पहले से ही बहुत खराब और हम बहुत टाइम से बोल रहे थे कि इस पे टायरिंग की जाए, और अब जब इस पे टायरिंग की गई है तो इस पे चेन वाले जेसीबी चलाए जा रहे हैं। पहले भी बहुत खराब थी, अब जब ठीक की गई है तो इस पे जेसीबी चलाए जा रहे हैं, वो भी टायर वाले, जिससे कि बहुत ही खराब हो गई है, तो इसका ध्यान रखा जाए।
0: प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम जबकि कई स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों तक ऊना, कांगड़ा, सिरमौर व सोलन जिले में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में भी बारिश की

0: भावना जताई है। मौसम के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। सामयिक चर्चा सुनिए जिसका विषय है माय भारत, डिजिटल इंडिया और युवा भारत का संगम। वाचक स्वर है प्रभा शर्मा का।
2: भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। यहाँ लगभग 65% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। इस युवा आबादी की अपार क्षमता को पहचानते हुए अक्टूबर 2023 में युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के तहत माय भारत का शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य स्वयं सेवा, कौशल विकास, नेतृत्व और नागरिक भागीदारी के अवसर प्रदान करके युवाओं को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में लाना है। माय भारत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो युवाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी के लिए सरकार, शिक्षण संस्थानों, गैर लाभकारी संगठनों और उद्योग जगत को आपस में जोड़ता है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत के मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से ये प्लेटफॉर्म लाखों युवाओं को सीखने और राष्ट्र निर्माण के अवसरों से जोड़ता है, जिससे देश भर में अधिक समावेशन, पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित होती है। इस पहल के माध्यम से युवा नागरिकों को विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए सशक्त बनाया जा रहा है। माय भारत एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। ये डिजिटल तकनीक के साथ व्यक्तिगत रूप से भागीदारी का समावेश करता है। जून 2026 तक प्लेटफॉर्म ने स्वच्छता, रक्तदान, खेल, आपदा प्रतिक्रिया और सामुदायिक सेवा के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक स्वयंसेवी अवसर प्रदान किए हैं। जुलाई 2026 तक ये प्लेटफॉर्म 24,900 से ज्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम पेश करता है जो प्रैक्टिकल लर्निंग और वर्कफोर्स के लिए तैयारी को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा अवसरों में सरकारी और निजी संगठनों में इंटर्नशिप, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण के लिए अप्रेंटिसशिप और उद्योग जगत का अनुभव प्राप्त करना भी शामिल है। ये प्लेटफॉर्म क्विज और प्रतियोगिताओं के माध्यम से नागरिक नेतृत्व को प्रोत्साहित करता है और युवाओं को केंद्रीय बजट जैसे राष्ट्रीय मुद्दों को समझने में सम्मिलित करता है। इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म विकसित भारत युवा संसद जैसी पहलों के माध्यम से नेतृत्व विकास का अवसर प्रदान करता है, जिससे युवा राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर सकें और अपने नेतृत्व कौशल को निखार सकें। माय भारत माय वोट अभियान ने पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के बीच सोच समझकर वोट देने और संवैधानिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में 50,42,000 से अधिक युवाओं ने भाग लिया, जिससे ये भारत के सबसे बड़े युवा परामर्श कार्यक्रमों में से एक बन गया। इसके तहत युवाओं को विकसित भारत 2047 के लिए विचारों और समाधानों पर चर्चा करने का एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया, जिससे नेतृत्व, नवाचार और राष्ट्र निर्माण में सार्थक भागीदारी को बढ़ावा मिला। यूथ फॉर विकसित भारत माय भारत यूथ कन्वेंशन 2026 ने अमृत पीढ़ी की आकांक्षाओं और उपलब्धियों का उत्सव मनाने के लिए 6,000 से अधिक युवाओं को एकजुट किया। 17 जोन में आयोजित नारी शक्ति युवा संसद में 7,000 से अधिक युवतियों ने लोकतांत्रिक संवाद और नीतिगत चर्चाओं में भाग लिया। राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवा भागीदारी और मॉनिटरिंग को सुगम बनाने के लिए माय भारत प्लेटफॉर्म का लाभ उठाती है। माय भारत के स्वयंसेवकों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के दौरान शिक्षण संस्थानों, सामुदायिक केंद्रों और प्रतिष्ठित स्थानों पर योग सत्र आयोजित कर लाखों युवाओं को जोड़ा। नशा मुक्त भारत अभियान के माध्यम से युवा स्वयंसेवक नशा मुक्त भारत के लिए जागरूकता अभियानों, पुनर्वास कार्यक्रमों और समुदाय तक पहुंचने के कामों में मदद करते हैं। माय भारत नागरिक भागीदारी और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश भर में पद यात्राओं, स्वच्छता अभियानों और सामुदायिक सेवा गतिविधियों का आयोजन करता है। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ने युवाओं को भारत के सीमावर्ती गांवों में जीवन का अनुभव करने का अवसर दिया।

0: जिससे राष्ट्रीय एकता और जमीनी स्तर की भागीदारी को बढ़ावा मिला।
1: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
3: पति जिस मानसिक अवस्था और शैक्षिक स्तर के हैं, उसी के अनुसार शब्दों के प्रयोग, नाटकीयता के गुण और संवाद योजना के कारण कहानी जीवंत होती है। वे यथार्थ का चित्रण करते हुए सदा आदर्श पर दृष्टि रखते हैं, यही इस कहानी में भी परिलक्षित होता है। मुंशी प्रेमचंद की स्पष्ट धारणा है कि साहित्यकार को मानवीय स्वभाव की उज्ज्वलताओं को दिखाने वाला होना चाहिए, यही इस कहानी का मर्म भी है। भाव और पात्र के अनुकूल भाषा का सफल प्रयोग इस कहानी की विशेषता है। अत्यंत मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली कहानी है दो बहनें। इसमें प्रेरणा देने की शक्ति के साथ साथ पाठक को चिंतन में लीन करने की भी अद्भुत क्षमता है। तो आइए सुन

0: साथ पाठक को चिंतन में लीन करने की भी अद्भुत क्षमता है। तो आइए सुन
1: कि जम्पर ने उसके हुस्न को और भी चमका दिया है। वही रामदुलारी जो लड़कपन में सर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी, आखिरी बार रूप कुमारी ने उसे उसकी शादी में देखा था। 2 साल कबल तक भी उसकी शक्ल और सूरत में कुछ ज्यादा तगय्युर ना हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर उतनी ही दुबली, उतनी ही जर्दरू और उतनी ही बदतमीज, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो और हुस्न उसने कहाँ छुपा रखा था।
2: नहीं नहीं, नजरों को धोखा हो रहा है, ये हुस्न नहीं महज दीदा जेबी है। रेशम मखमल और सोने की बदौलत नक्शा थोड़े ही बदल जाएगा, फिर भी वो आंखों में समाई जाती है। 50 औरतें जमा हैं मगर ये कशिश और किसी में नहीं।
1: कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते वक्त उसने अपनी सूरत देखी थी, उसे चमकाने के लिए जितना साइकिल कर सकती थी वो किया था, लेकिन अब वो सूरत जैसे याददाश्त से मिट गई है। उसकी महज एक धुंधली सी परछाई जहन में है, उसे फिर से देखने के लिए वो बेकरार हो रही है। यूं तो उसके साथ मेकअप के लवाजमात के साथ आईना भी है, लेकिन उस मजमे में वो आईना देखने या बनाव सिंगार करने की आदि नहीं है। ये औरतें दिल में खुदा जाने क्या समझे, यहाँ कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में तो ज़रूर होगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई और कदे आदम शीशा में अपनी सूरत देखी। उसके खद व खाल बेऐब हैं मगर वो ताजगी में, वो शगुफ्तगी, वो नज़र फरेबी नहीं है। रामदुलारी आज खुली है और उससे खुले जमाना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसे तस्कीन नहीं हुई। वो रामदुलारी से हेटी बनकर नहीं रह सकती।
2: उफ़, ये मर्द भी कितने अहमक होते हैं, किसी में असली हुस्न की परख नहीं। उन्हें तो जवानी, शोखी और नफासत चाहिए बस। आंखें रख कर भी अंधे बनते हैं। मेरे कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहाँ उड़ गया है। चुड़ैल सी नजर आए, अबे अहमक

0: अब अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने का मर्ज कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है, लेकिन इस तरह बनठन कर निकलेंगी गोया कहीं की राजकुमारी हैं। बिसातियों के, दर्जियों के और बजाज के तकाजे सहेंगी, शौहर की घुड़कियां खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर नुमाइश के जुनून को नहीं रोक सकें। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहां तो बेहयाई पर कमर बांध ली। कोई कितना ही हंसे, बेहया की बला दूर। इसको तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर उसकी खूब तारीफें की जाए। राम दुलारी ने जरूर जरूर किसी से जेवर और कपड़े मांग लिए हैं। मैं जानती हूं ये बेशर्म जो है,
1: उसके चेहरे पर गुरूर की सुर्खी झलक पड़ी। ना सही उसके पास जेवर और कपड़े, किसी के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। एक एक लाख के तो उसके दो लड़के हैं, भगवान उन्हें जिंदा सलामत रखे। वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से ही तो जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी की बददुआ तो नहीं लेते। इस तरह अपना दिल मजबूत करके वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
2: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं?
1: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ रे दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है। अकड़ कर बोली,
0: हाँ तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल ये भी गनीमत है, मैं तो अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। और तेरा शौहर अब बीए में होगा?
2: नहीं, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया है बहन, पढ़कर औकात खराब करना था और क्या। एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं, अब 250 रुपया माहवार कमाते हैं, कमीशन ऊपर से 500 रुपया रोज सफर खर्च के भी मिलते हैं। अब ये समझ लो 500 का औसत पड़ जाता है। 150 रुपया माहवार तो उनका जाती खर्च है। बहन ऊंचे होदे पर हैं तो अच्छी हैसियत भी बनाए रखनी लाजिमी है ना?
0: वो तो है भाई।
2: 350 रुपया बेदाग घर दे देते हैं और उसमें 100 रुपए मुझे मिल जाते हैं। 250 में घर का खर्च खुशफेली से चल जाता है। अब एमए पास करके भला क्या करते।
1: रूप कुमारी उसे शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा वक्त नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी सदाकत है कि चेहरे पर शिकस्त की बदमजगी साफ झलक रही है। मगर उसे अपने होशो हवास को कायम रखना है तो इस असर को दिल से मिटा देना पड़ेगा। उसे जिरहों से अपने दिल को यकीन करा देना पड़ेगा कि इसमें एक चौथाई से ज्यादा हकीकत नहीं है। वहां तक तो वो बर्दाश्त करेगी, इससे ज्यादा कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है। अगर ये रुदात सच निकली तो वो कैसे राम दुलारी को मुंह दिखा सकेगी। उसे अंदेशा है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तमस्खुर के अंदाज से पूछा,
0: जब एजेंटी में इतनी तनख्वाह और भत्ते मिलते हैं तो ये तमाम कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते, भला बताओ जरा। हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं हा?
1: राम दुलारी बहन की खिफत का मजा उठाते हुए बोली,
2: बहन तुम यहां गलती कर रही हो, एमए तो सभी पास हो सकते हैं।
0: अच्छा,
2: मगर एजेंटी करना किसको आता है भला, ये तो बहुत हुनर का काम है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे मगर जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट हो जाए। रुपया पैदा करना दूसरी चीज है, इल्मी फजीलत हासिल करना दूसरी चीज है, अपने माल की खूबी का यकीन पैदा कर देना या जहन नशीन करा देना कि इससे तो बेहतर और देरपा चीज बाजार में मिल ही नहीं सकती, आसान काम नहीं है।
0: वो तो है भाई।

0: एक से एक ग्राहकों से उनका साबिका पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों की ताली कल्ब भी करनी पड़ती है, औरों की तो उन राजाओं और नवाबों के सामने जाने की हिम्मत भी न पड़े, और किसी तरह पहुंच जाए तो जबान न निकले। शुरू शुरू में उन्हें भी झिझक हुई थी बहन, मगर अब तो इस दरिया के मगर हैं मगर। अगले साल तरक्की भी होने वाली है।
1: सही कहती हो।
2: रूप कुमारी की रगों में जैसे खून की हरकत बंद हुई जा रही है।
1: जालिम आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता, बेरहम जमीन क्यों नहीं फट जाती? ये कहां का इंसाफ है कि मैं जो हसीन हूं, तमीजदार हूं, किफायत शियार हूं, अपने शौहर पर जान देती हूं, बच्चों को जान से अजीज समझती हूं, इस खस्ता हाली में बसर हो रही है मेरे, और ये बदतमीज तन परवर चंचल छोकरी रानी बन गई है। लेकिन कुछ तो उम्मीद है बाकी, शायद मेरी तस्कीन कल्ब का कोई तो रास्ता निकल आए।
2: उसी तमस्खुर के अंदाज से बोली।
1: तब तो शायद 1,000 मिलने लगे होंगे। हाँ,
0: 1,000 तो नहीं, मगर 600 में शुभा नहीं।
1: हाँ, ऐसे ही कोई आँख का अंधा मालिक बन गया होगा।
0: बहन, व्यापारी आँख के अंधे नहीं होते। हाँ, जब तुम उन्हें 6,000 कमा कर दो ना, तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कोई क्या बेवकूफ बनाएगा भला।
2: तमस्खुर से काम न चलते देख रूप कुमारी ने तहकीर शुरू की।
1: हाँ, वैसे मैं उसको बहुत मुअज्जज़ पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तोमार बांधो, क्या ये ठीक विद्या है?
0: अरे, इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी गलत करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकीलों को हम अपना लीडर कहते हैं, उन्हें अपनी कौमी सभाओं का सदर बनाते हैं, उनकी गाड़ियां खींचते हैं, उन पर फूल बरसाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है, पैसा। पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता। जिसके पास पैसा हो उसकी पूजा होती है। जो बदनसीब हैं, नाकाबिल हैं, पस्त हिम्मत हैं, वो जमीर और अखलाक की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछ लेते हैं। वरना जमीर और अखलाक को भला कौन पूछता है।
2: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है, इससे मुजीर नहीं। तमस्खुर या तहकीर से वो अपनी तंगदिली के इजहार के सिवा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वाकई लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो वो अपनी किस्मत को ठोक कर बैठ रहेगी। समझ लें कि दुनिया में कहीं इंसाफ नहीं है, कहीं ईमानदारी की कदर नहीं है।
3: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। आज आपने सुनी पहली कड़ी। पात्र परिचय इस प्रकार है, रूप कुमारी,

0: आज आपने इस कहानी की पहली कड़ी सुनी। आगे ये कहानी क्या मोड़ लेती है जानने के लिए अगले हफ्ते जरूर सुनिएगा कथा सुधा।
1: इस कहानी के भाव में तो हम भी बह गए थे साथियों, आपके साथ
2: बिल्कुल।
1: चलिए सुनते हैं गीत।

0: जानिए गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी IVF या IUI एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: तो दीपा, अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं और बात करते हैं बचत के ऊपर।
1: बहुत
0: तो
1: जरूरी है
0: दीपा, बचत करने से पहले हम एक उसी का ही कमेंट है वो उठा लेते हैं। हमारे साथ ही लिखते हैं कि बचत हम दोनों ने अपनी बेटियों और बेटों को अजमेर शहर के बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाया, बहुत ही महंगी शिक्षा थी, तो हमें और बच्चों को भी शुरुआत से ही हाथ टाइट करके बचत करना अनिवार्य हो गया था। कभी बेटों को जब मैं स्वयं ही स्कूल की छुट्टी के बाद लाता और ये कहता कि कचौरी खा लो, तो बेटे कहते पापा जी खर्चा नहीं करना है, वैसे ही घर पहुंचकर भोजन करेंगे। ये सुनकर खुशी के मतलब उनकी आंखें जो हैं वो नम हो जाया करती थी और कहते मेरा मन सोचता था कि मेरी मेहनत सफल हुई। अगर बच्चे समझने लग जाएं कि हमें कहाँ पर खर्चा करना है कहाँ पर नहीं करना है, तो समझ लो कि माता पिता की आधी समस्या तो वैसे ही हल हो जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा। देखो ना, कई बार ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे हम जब खर्च करते चले जाते हैं तो फाइनेंशियल यानी कि जो वित्तीय अनुशासन है वो अगर हम नहीं रख पाते हैं तो हमें कभी ना कभी एक आर्थिक तनाव वो आ जाता है, थोड़ा सा एनजाइटी टेंशन ये सब चीज़ें आई जाती है। और फिर सहेलियों के मन में ये सवाल आता ही है कि आखिर पैसे इतनी जल्दी ख़त्म हो क्यों जाते हैं, होता है ना ऐसा?
0: बिल्कुल ऐसा होता है। और यही होता ना कि अक्सर हम जो है बिना योजनाएं बनाए खर्च करते रहते हैं और छोटे छोटे जो खर्च होते हैं वो सुविधाओं के नाम पर होने वाला व्यय, अचानक की गई खरीदारी होती है और बचत को टालने की आदत यानी धीरे धीरे पूरे बजट को जो है वो बिगाड़ ही देती है।
1: अरे अरे मंजरी, इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। और सखियों, हम आपसे भी कहते हैं इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अगर थोड़ा सा आपस में अभी जो विचार विमर्श कर रहे हैं और जो बहुत सारे संदेश आए हैं तो हम कुछ जानेंगे आसान बदलाव के बारे में कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, आपको क्या सही लगता है क्या गलत, वो ज़रूर बताते चलिएगा।
0: बिल्कुल। और अक्सर लोग तय नहीं कर पाते हैं दीपा कि उनकी आय का कितना हिस्सा कहाँ खर्च होना चाहिए। और अब देखिए ना, कुछ खर्चे तो बिल्कुल निश्चित होते हैं कि जैसे मकान का किराया, राशन की खरीदारी करनी है, पेट्रोल भराना है, बिजली पानी वगैरह वगैरह, जैसे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, घर में दूध का बिल देना है, तो बच्चों की फ़ीस जमा करनी है, इन सब खर्चों के लिए पहले से ही राशि तय कर लेने से क्या होता है कि फिजूल खर्च से हम बच सकते हैं। यानी कि जब आप सैलरी लेकर आए तो एक एक छोटे छोटे बॉक्स बना लें, उसमें सबके हिस्से के पैसे डाल दें।
1: हाँ, इस तरह से भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और कई बार ये भी देखने में आता है मंजरी कि बहुत सारे लोग महीने की शुरुआत में खुलकर खर्च कर देते हैं, फिर जनाब नतीजा तो तय ही होता है ना कि आखिरी दिनों में आर्थिक जो एक टेंशन सी आ जाती है वो बढ़ने लग जाती है। इसलिए ज़रूरी खर्चों के बाद बचे रकम को पूरे महीने के हिसाब से अलग अलग हिस्से में बांट कर देखना चाहिए, जैसे अभी आप बता रही थी। तो वैसे भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 से 10 तारीख का खर्च अलग रख दो, 11 से 20 का अलग रख दीजिए और फिर 21 से 30 का खर्च आप अलग अलग एक सेगमेंट बना करके अलग अलग रख सकते ये भी करके हम देख सकते हैं।
0: बिल्कुल। और अक्सर दीपा हम लोग यही सोचते हैं कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बचत में डाल देंगे, लेकिन क्या होता है ऐसा होता नहीं है और पता ही नहीं चलता है कि मतलब सैलरी मिलते ही 20-30% राशि बचत के लिए जो हमने रखी है या नहीं रख पाए हैं वो कहाँ चली गई, खर्च होते ही चले जा रहे हैं।

0: तो हमें बचत के लिए भी सोचना पड़ता है, और सच में यही बचत आने वाले दिनों में आर्थिक सुरक्षा का आधार बनाती है, जो हम कटौती करते हैं। और दीपा, एक और रास्ता है कि आप एक कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए खर्चे को,
1: बिल्कुल,
0: तो आप अगले महीने उसको सोचिए कि हमने कहाँ पे खर्चा ज्यादा किया है, तो उस चीज को फिर अगले महीने आप बजट से हटा सकते हैं,
1: हटा सकते
0: हैं, हमारे लिए आवश्यक नहीं है,
1: बिल्कुल। और इसी तरह से एक इमरजेंसी फंड भी हम जरूर रखना चाहिए हमें, जैसे बीमारी हो गई या नौकरी में बदलाव हो गया, इस तरह की कोई परिस्थिति अगर बन जाती है, तो बिना तैयारी के जो ये आर्थिक दबाव आता है, ऐसे में 3 से 6 महीने का खर्च के बराबर का एक इमरजेंसी फंड अगर हम रखें ना अलग से, बहुत मुश्किल है। देखिए, बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा बचा करके हम कुछ ऐसा करने के, 3-1 महीने की सैलरी जितना पैसा अगर हमारा अलग से रखा हुआ है, तो कभी भी अचानक कुछ अगर इमरजेंसी आ गई है तो हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि अरे क्या करें क्या नहीं करें, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे मदद मांगे, किसको बोलें कि हमें थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ हमें कुछ हेल्प करेंगे क्या। तो इस तरह की स्थिति हमारे सामने आने से हम बच जाएंगे।
0: और दीपा, देखो पहले के समय में ऐसा होता था ना, महिलाएं जो हैं, दादी नानी काकी लोग, इनको देखो तुम अलमारी के पेपर के नीचे पैसे रख देते थे, अपने साड़ी के फलाने साड़ी के पल्लू में बांध के रख दिए, या अलमारी के अंदर उन्होंने एक छोटी सी डिब्बा रख दी, तो वो हर जगह थोड़े थोड़े पैसे रखती थी, और मुसीबत के समय वही पैसे उनके काम आते थे। तो सिर्फ बचत करने से काम नहीं चलता है दोस्तों, थोड़ा सा निवेश भी होता रहना चाहिए, इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निवेश करने की आदत जरूर बनाएं, फिर वो चाहे महीने के 1,000 या 2,000 रुपए की शुरुआत क्यों ना हो, शुरू किया जाए। और आप गुल्लक भी बना सकते हैं, अपनी गुल्लक भी बनाइए, बच्चों के भी, हस्बैंड के भी, और सबसे बोलिए इसमें सब लोग पैसे बचाइए, तो आप इस तरह से भी पैसे बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और हम अपने लिए कुछ ऐसे दिन भी चुन सकते हैं जहाँ हम सिर्फ ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी करेंगे और फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे, महीने के 3-4 दिन भी अगर ऐसे आ गए, तो आप देखिएगा थोड़ा सा पैसा तो हमारे पास बच जाएगा। एक और तरीका भी हो सकता है कि 24 घंटे का नियम बना लें, यानी कि कभी भी ऑनलाइन कोई लग्जरी आइटम या ऐसी कोई चीज़ जो कि आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं हमें लेना है, वो ऑनलाइन पे दिख गई, अब हमें लगता है खर्चना तो है या हमें ये ख़रीदना तो है, तो आप 24 घंटे का इंतज़ार करिए, उसके बाद ही उसे ख़रीदने की सोचें। देखिए, आवेग में आकर के बहुत चीज़ हम ऐसे खरीद लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा रुक जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है नहीं ये फिजूल लग रहा है, अगले महीने ले लेंगे।
0: आदत होती दीपा खर्चा करने की, हाथ में खुजली होती तो नहीं लगता है, मतलब पैसे वाली की, अब कुछ तो कर ले, तो उन्हें ऑनलाइन सबसे अच्छा माध्यम लगता है।
1: तो उन्हीं लोगों के लिए ये है कि आप रुकिएगा, बिल्कुल तुरंत ही वो चीज जो है ऑनलाइन उसकी शॉपिंग ना करिएगा,
0: बिल्कुल
1: थोड़ा सा रुक जाइए। हम कह रहे हैं 24 घंटा, आप 24 घंटा भी नहीं, आप 12 घंटे रुकिएगा, 12 घंटे के बाद आपके मन में वो जो उतावलापन है ना, वो हम बिल्कुल
0: शांत हो जाएगा। और जब खरीदने का मन भी करे, तो आप अपने आप से ये कहिए कि ये मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, इसकी कितनी जरूरत है या नहीं जरूरत है,
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह की जब बातों पर विचार करेंगे, तो भी आप अपने को रोक सकते हैं। और दीपा, हम खुद को एक वित्तीय चुनौती देकर भी देख सकते हैं, जैसे कि 15 दिन से हम कोई एक तय हुई राशि में ही काम चलाएंगे, उसे चलाएंगे, ऐसा करके देख सकते हैं कि सोची हुई राशि से हम अपने 15 दिन निकाल सकते हैं या नहीं। अक्सर लोग केवल किराया, राशन, बिल जैसे तय खर्चों को ही बजट में शामिल करते हैं, लेकिन रोज़मर्रा के कई छोटे छोटे अनियोजित व्यय धीरे धीरे पूरे वित्तीय संतुलन को बिगाड़ देते हैं।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही। और अब देखिए, कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जो अचानक से आ सकते हैं, जैसे उपहार खरीदना है, या कभी कभी ऐसा होता है ना, फल सब्जियों की अचानक कीमतें बढ़ जाती हैं, या बाहर कभी खाना खाने जाना पड़ सकता है कोई, या अचानक से कोई ट्रैवल यानी यात्रा पर निकलना पड़ सकता है, कोई मेडिकल खर्च भी आ सकता है, या दफ्तर में कोई छोटे छोटे योगदान होते हैं ना, हमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, इस तरह के भी खर्च आ जाते हैं। तो इन सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बजट में शामिल करके रखना ज़रूरी है।
0: बिल्कुल। और देखो, हमारे साथी भी लिखते हैं कि महीने की शुरुआत और बचत का सीधा संबंध है, शुरुआत अच्छी तो महीना अच्छा, सैलरी मिलते ही शुरुआती दिन में सबसे ज़रूरी वही खर्च करें जिनकी तारीखें फिक्स होती हैं, मसलन घर का किराया, बिजली का बिल, गैस पेमेंट, EMI, बच्चों की फीस वगैरह, फिर आता है राशन, और घर में कोई पेशेंट है तो दवाइयाँ। इसके बाद कुछ पैसा घर में इस तरह से रख लो कि लगभग ऐसा लगे कि जैसे है ही नहीं, जो आड़े वक्त काम आ सके, किसी से मांगना ना पड़े। फिर इसके बाद आते हैं शौक वाले खर्च, जो तो वो अपनी आय और बचत के अनुसार करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को देख कर। अगर आय के अनुसार बजट बनाकर खर्च किया जाए तो महीना बहुत आराम से निकल जाता है।
1: और एक संदेश ये भी आ रहा है कि एक गीत सुना दीजिए।

0: बताइए आपके दिल में क्या है?
1: मेरे दिल में तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, हम संदेश ही पढ़ेंगे फिलहाल तो अपने विषय पर। हाँ। तो हमारे साथी लिखती हैं कि आजकल बचत के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, पर अपनी माँ के ज़माने में हम देखते थे कि माँ एक अलग से अपना गुल्लक टिन या पाउडर वाले डिब्बे या किसी तरह के डिब्बे रखती थी। वे ज़्यादातर रसोई घर में छुपा के रखा जाता था और कुछ महीने के अंत में कभी ज़रूरत पड़ा तो उसमें से निकाला जाता था पैसा। हम बच्चों को डरवाया जाता था उस डिब्बे में कोई नहीं छूएगा, उसमें भगवान का पैसा रहता है, पाप लगेगा। अब कभी माँ निकालकर कुछ खर्च करके बाजार से मंगवाती थी तो हम कहते थे कि ये तो भगवान का पैसा। माँ बोलती थी कि अन्नपूर्णा भी देवी माँ ही है, उन्हीं के नाम पर आ रहा है। क्या बात है,
0: क्या बात
1: माँ
0: है?
1: तो माँ ही होती है आखिर, है ना?
0: सही कहा। और एक संदेश में हमारे श्रोता भाई ने लिख भेजा है कि मेरे बड़े भैया अक्सर कहा करते थे कि जीवन में तीन मित्र जरूरी हैं, इससे बचत के स्रोत कहिए या मित्र, वो ऐसे मित्र हैं जो विपरीत परिस्थितियों में हमारे संकट मोचक साबित हो सकते हैं। पहला आपकी बचत, दूसरा है सोना या गहने का, और तीसरा है आपके खुद का मकान। मैंने उनकी बातों का अनुसरण करते हुए छोटी छोटी बचत के द्वारा शुरुआत की, जैसे पोस्ट या बैंक में 5 साल की अवधि के लिए रिकरिंग अकाउंट खुलवा लिए। इन अकाउंट की अवधि पूरी होने पर उसी रकम को फिक्स डिपॉजिट में तब्दील करता गया। 15 साल के बाद खुद का मकान बनाने में मुझे बड़े भाई जैसा साथ मिला हो,

0: ऐसा महसूस हुआ, वो भी बगैर लोन लिए। उसके बाद बेटे बेटे की शादी के लिए अग्रिम तैयारी स्वरूप समय समय पर गहने बनवाता गया, क्या बात है। और आज सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये सब कुछ बातें ठीक ठाक चल रही हैं। तो भाई इस तरह के अगर परिवार का साथ हो तो फिर तो देखिए बचत में और आपको दुगनी सहायता ही मिलेगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारी साथी लिखती कि जब पहली तारीख को तनख्वाह आती तो इतना सारा पैसा एक साथ देकर मन ही मन बहुत से प्लान शुरू हो जाते थे, उस समय हाथ रुक भी नहीं पाता था। पर जब एक एक करके पैसे देने यानी फीस, राशन पानी, दवा, डॉक्टर आदि में निपटाने लगते थे तो कैसे फुर से उड़ जाता था पैसा, पता ही नहीं चलता था। और महीने के शुरू से ही कुछ एक चौथाई पैसा अलग दबा कर रख देते और भूल जाएं, और फिर पूरे महीने का राशन, दवा और डॉक्टर के पैसे, बच्चों की फीस, घर में काम करने वाली महिलाएं आदि को दे दें, बीच बीच में 50-100 रुपये एक अलग गुल्लक में डाल दें। अगर हाथ में पूरा पैसा होगा तो अधिक तेजी से खर्च होता है, दबाए हुए पैसे आड़े वक्त में काम आते हैं। बहुत अच्छी सी सबने बात लिख के
0: जी बिल्कुल
1: रखी है।
0: और हमारे सभी साथी बचत के मामले में इतने सतर्क हैं और हमेशा करते हैं और अलग अलग सुझाव दे रहे हैं, उसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं। मंजरी हमसे एक सवाल पूछ रही थी, क्या सवाल था मंजरी?
1: ये सवाल हम ये पूछ रहे थे कि ये बताओ कि वन तुमने देखा है ना, हरियाली वहाँ की बहुत मन को मोहती है, तो क्या कभी तुमने उस पर ध्यान दिया कि वन में कौन कौन से वृक्ष लगे होते हैं?
0: बहुत सारे लगे होते हैं, कई बार जाते हैं ना तो लगातार कभी बरगद के पेड़ दिखने लग जाते हैं, नीम होते हैं, पीपल होते हैं, और भी कई कई तरह के कहीं कहीं पे आम के बगीचे लगातार दिखते हैं यात्रा में जाते हैं ना।
1: और देखो वनों में जब हम जाते हैं तो ये तो तुमने सही बताया, लेकिन इसके साथ साथ महुआ है, पलाश है, तेंदू है, सेमल है, आंवला है, जामुन है, खैर, बबूल, चंदन, शीशम, चीड़, देवदार, साल, सागौन, ये सारे पेड़ भी वहाँ पर दिखते हैं। तो जब कभी वन की तरफ रुख करना तो इन पत्तों को, इन पेड़ों को बहुत ध्यान से देखना,
0: बिल्कुल
1: तो बड़ा मजा आएगा,
0: बहुत मजा आता है। उनके अलग अलग आकार, किसी कोई पत्ता चौड़ा होता है, कोई लंबा होता है, किसी की धारियां बहुत साफ सफाई से दिखती
1: हैं, कोई बड़े खुरदुरे भी होते हैं कि उंगली लगाओ तो तुम्हारे उंगली में भी छिलने जैसा एहसास होगा, ऐसा भी होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो भाई देखो कहते हैं ना कि वन महोत्सव जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है, तो एक पेड़ लगाए 100 खुशियां पाए, हरियाली बढ़ाए, धरती को स्वर्ग बनाए। इस वर्ष की थीम है हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण है। इसके अलावा ये मुहिम चलाई जा रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ धरती लगाओ बचाओ जैसे नारे जागरूकता बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने जो पौधा रोपण किया है दीपा, उसकी देखभाल एवं उसके बढ़ने, फलने, फूलने तक का ध्यान रखा जाए। पानी समय पर देना है, उसको कोई और क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। और इसकी शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर K.M. मुंशी इनके द्वारा हुई थी, तभी से इसे पेड़ लगाने का त्यौहार भी कहा जाता है। हर साल एक, जैसा कि अभी आपने बताया, हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे हमारे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। पेड़ों से हमें प्राण वायु, ऑक्सीजन मिलती है, वर्षा चक्र संतुलन में रहता है, तापमान नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, इनमें अनेक जीव जंतु, पशु पक्षी निवास करते हैं, उन्हें भोजन मिलता है और हम सभी को अनेक आवश्यकताएँ इन्हीं से पूर्ण होती है।
1: बिल्कुल। और इनको बचाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कटाई इसकी रोकनी होती है, वरना आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। जो वनों को बहुत काटते जाते तो उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसको अगर थामा नहीं तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और गर्मी की दिक्कतें हमें झेलनी पड़ जाती है। तो कहना चाहिए प्रति व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए और उसकी देखभाल के प्रति भी सजग रहना चाहिए।
0: बिल्कुल। और इसी तरह के बहुत सारे संदेश भी हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे, लेकिन सुनते हैं क्या
1: एक गीत।

0: ऐसे ही जो काली काली घटाएं है ना, हर जगह हर तरफ बस ये बरखारा नहीं इसी तरह से बाहर बरसा दे, यही हम चाहते हैं।
1: बिल्कुल। और हमारे साथ ही लिखते हैं दीपा, वन महोत्सव के सप्ताह के दौरान स्कूल कॉलेज या सरकारी संस्थान वृक्षारोपण अभियान वहाँ पर चलाया जाते हैं और लोगों को पौधे वितरित करते हैं और पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम और आम बहार आपके द्वार जैसे विषय विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें देशी और फलदार वृक्ष जैसे आम, जामुन, अमरूद, नीम के रोपण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। और दीपा, जो हमारे जो पेड़ हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है? वृक्ष जब लगे होते तो देखो लकड़ी की और लकड़ी और इमारती सामान मिलता है, जलावन की लकड़ी मिलती है, औषधि जड़ी बूटियाँ, शहद, फल, जामुन, आंवला, बेल आदि, मेवे, मशरूम, बांस और बेत भी मिलते हैं, गोंद, लाख, राल, ये सब चीज़ें इन सब में घास और चारा मिलता है पशुओं के लिए। और वन्य जीव पक्षी जो है वो वहाँ पर जीव जंतु हैं, पशु पक्षी वो सब वहाँ पर निवास करते हैं। तो कहना चाहिए कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए और वनों को कटने से उसको जो है रोकने से बचाना चाहिए और तभी हमारा जो जीवन है वो सफल हो पाएगा।
0: बिल्कुल, सफलता सफल जीवन के लिए देखिए अच्छा वातावरण तो बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और स्वास्थ्य अच्छे के लिए अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिख भी भेजा है, बहुत सारे रेसिपीज़ आज अलग अलग तरह से आई है, पंजाबी छोले और भटूरे की। तो मंजरी आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़ें?
1: कोई भी पढ़ सकता है,
0: पढ़िए आप पढ़िए।
1: चलिए, तो हमारे एक साथी लिखते हैं छोले भटूरे की रेसिपी। 2 कप काबुली चने रात भर भिगोए हुए, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर पिसे हुए, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2-3 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, इतना ही आप हल्दी लें और 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 या 2 छोटे चम्मच ले सकते हैं, और लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच छोटा छोले मसाला पाउडर लेना है, 1/2 चम्मच छोला मसाला लेना है इन्होंने लिखा है, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया, भीगे हुए चनों को नमक प्रेशर कुकर के साथ में और पानी डालकर 5-6 सीटी के साथ इसको उबाल लें। 1 कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें प्याज सुनहरा होने तक भूनें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, टमाटर और सारे मसाले डालकर तब तक पकाएं जब तक तेल अलग ना हो जाए। अब छोले और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर 10 से 15 मिनट धीमी आँच पर पकाएं, अंत में हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। भटूरे के लिए सामग्री, दीपा इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच सूजी, 2 बड़े चम्मच दही, 1/2 छोटा चम्मच चीनी, 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच तेल, गुनगुना पानी। तलने के लिए तेल लेना है आपको, मैदा, सूजी, नमक, चीनी और बेकिंग सोडा मिलाएं, दही और तेल डालकर गुनगुने पानी से मुलायम आटा गूंथ लें, आटे को ढककर 2-3 घंटे के लिए रख दें, छोटी छोटी लोइयां बनाएं जब आपको बनाना हो और गर्म तेल में मध्यम तेज आँच पर गर्म तेल करें और मध्यम तेज आँच होनी चाहिए और दोनों तरफ भटूरों को आप उसमें सुनहरा तल लें और बस भटूरे तलने पर बहुत ही अच्छे बनते हैं। और आप इसको परोसना है तो आप कटा प्याज, हरी मिर्च, नींबू और आम के अचार के साथ छोले के संग में परोसें।
0: ये भोजन का आप स्वाद का आनंद लीजिए और साथ में लीजिए इस गीत का आनंद।
2: अरे अरे ए,

0: तो साथियों आज तो देखिए समय कह रहा है कि हमारे भी चलने का वक्त हो गया है,
1: लेकिन चलने से पहले एक बात बताते हैं। हमारी सखी ने लिखा है जंगल की, जब हम लोग बात कर रहे थे वनों की, तो उन्होंने कहा है कि कभी कभी वो ऐसे वन भोज में शामिल हुई जहाँ पर उन्हीं पत्तों पर वहाँ की सब्जियाँ साग परोसे जाते थे और झाड़ बेरियाँ और जंगली पत्तों पर बैठ कर प्रेम से भोजन करते थे, इन्होंने लिखा है। तो भाई वन तो ऐसे हैं कि हम उनको छू कर महसूस कर सकते हैं, वहाँ जा के देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी आत्मिक शांति मिलती है।
0: बिल्कुल, तो हम तो आशा करते हैं आज का कार्यक्रम में आपने खूब आनंद लिया होगा। आप अपना अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा
1: और अब लेते हैं विदा कार्यक्रम से। तो सभी को मंजरी वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: सेहतनामा कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लता देवलीकर को। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह।

0: और ये है कार्यक्रम सेहतनामा। दोस्तों, स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और जब बात महिलाओं के स्वास्थ्य की हो तो जागरूकता और सही जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर महिला के जीवन से जुड़ा है। महिलाओं का स्वास्थ्य, हार्मोनल बदलाव, PCOD, प्रजनन स्वास्थ्य और आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव। तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशालता देवलेकर, जो नासिक से आई हैं। डॉक्टर आशालता देवलेकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार। थैंक यू।
0: कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा।
0: स्टूडियो में आकर
1: बहुत ही अच्छा लगा
0: जी। आज एक बड़ी समस्या हो गई है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है, जिस पर सजगता बहुत ज़रूरी है, वो है PCOD। ये PCOD क्या है और क्या ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: यस, अभी PCOD यानी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। और PCOD क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसका फुल फॉर्म है पॉली यानी ज़्यादा और सिस्ट यानी सिस्ट। PCOD के दो है, PCOD और PCOS। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो PCOD है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है और PCOD में क्लियरली होता है सिस्टिक ओवरीज। और जो PCOS है जो उसमें मल्टीपल डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम्स होते हैं, ज़्यादा लक्षण होते हैं, इसमें फर्टिलिटी पर इफेक्ट करता है। ये आजकल यही है PCOS।
0: इसके लक्षण क्या है, मतलब क्या है इसमें, खतरा क्या है?
1: PCOD है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और ये जो है ये फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है। फर्टिलिटी पे तो इफेक्ट करता ही यही है, लेकिन उसके साथ साथ में शुगर, BP हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है और आगे बहुत आगे चल के एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। ये जितना सिंपल है उतना खतरनाक भी है ये बीमारी।
0: तो PCOD असल में क्या है, ये क्या हार्मोनल इंबैलेंस?
1: PCOD एक हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से होता है। क्या होता है, अभी जो ओपीडी में बच्ची आती है हमारे पास, 10 बच्चियों में से 6 बच्चियों में ये साइन दिखता है PCOD। तो इसका बहुत ज़्यादा ही प्रमाण हो गया है। रिप्रोडक्टिव एज जो होता है बच्चियों का 14 से 35 तक ये इफेक्ट करता है और ज़्यादातर 20 से 30 तक उम्र के बच्चों में ये ज़्यादा दिखता है
0: जी।
1: ये जो डिसीज़ है लाइफस्टाइल चेंज डिसीज़ है, लाइफस्टाइल चेंजिंग, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं और ये तीन फैक्टर के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है
0: जी।
1: और इंसुलिन रजिस्टर हो जाने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो इंसुलिन रजिस्टेंस के वजह से मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं और एंड्रोजन बढ़ने लगता है और ये बढ़ने के वजह से ओवुलेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसके वजह से नॉर्मल ओवुलेशन नहीं आता है, पीरियड रेगुलर नहीं आता है, ओरी सिस्टिक हो जाती है और इरेगुलर सब हो जाता है
0: जी। तो इसके जैसे कि आप लक्षण बता रहे हैं, पीरियड्स हाँ। नहीं आते हैं रेगुलर, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हाँ। हो जाती है ना लड़कियों की, महिलाओं की, उनको स्ट्रेस और बढ़ेगा। अगर स्ट्रेस और बढ़ेगा तो ये समस्या और बढ़ेगी, तो इसका क्या इलाज है?
1: हाँ, तो इसके लक्षण बताती हूँ मैं। पहला इसमें फर्स्ट लक्षण दिखता है पीरियड का इरेगुलर हो जाना और पीरियड का फ्लो कम हो जाना, स्केंटी पीरियड्स बोलते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाना। कभी 2 महीने के अंदर पीरियड आते हैं, 3-3 महीने आते हैं, ये 6-6 मंथ भी नहीं आते हैं और कभी कभी मेडिसिन लेके ही पीरियड्स आ जाते हैं। वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, रफ फेस दिखता है
0: जी।
1: और मूड स्विंग्स होते हैं, आलस आता है, बाल झड़ते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर, चीन पे हेयर आते हैं, अपर लिप्स पे हेयर आते हैं, बॉडी पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं और इनफर्टिलिटी में ये बहुत इफेक्ट करता है। आगे चल के शुगर, थायराइड, वो सब होता है
0: जी। तो इसका इलाज किस तरह से संभव है?
1: हाँ, इसका इलाज संभव है। इसका इलाज है कि नेचुरल वे से संभव है, जैसे वेट लॉस। PCOD के पेशेंट में देखो तो 80% पेशेंट में ओवर वेट रहते हैं, पेशेंट वेट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका इलाज है वेट लॉस और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं,

0: खाने लगते हैं और इनफर्टिलिटी में ये बहुत इफेक्ट करता है, आगे चल के शुगर, थायराइड वो सब होता है
1: जी। तो इसका इलाज किस तरह से संभव है?
0: हाँ, इसका इलाज संभव है, इसका इलाज है कि नेचुरल वे से संभव है, जैसे वेट लॉस। पीसीओडी के पेशेंट में देखो तो 80% पेशेंट में ओवर वेट रहते हैं, पेशेंट वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसका इलाज है वेट लॉस और एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, यानी
1: मेडिटेशन,
0: हाँ वो थोड़ा। तो एक्सरसाइज

0: इस गाने के बाद डॉक्टर आशा लता, आपने जिक्र किया था कि PCOD यानी कि ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, असंतुलन है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होता है। तो इनफर्टिलिटी के लिए जब पता चले कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा है किसी कपल को, तो क्या है जांच पद्धति और क्या है उसका ट्रीटमेंट, बताइए। हाँ, पहले जांच पद्धति बताइए। हाँ, किस तरह
1: तो
0: से ट्रीटमेंट,
1: जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो 1 ईयर कुछ प्रिकॉशन यूज़ करते हुए भी उनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, तो फर्स्ट थिंग हम करते हैं लेडीज में, फीमेल में, ओवुलेशन स्टडी। कि ओवुलेशन स्टडी एक सोनोग्राफी होती है
0: जी,
1: और उसमें पता चलता है हार्मोन की लेवल रहती है, वो करना पड़ती है। इतना ब्लड टेस्ट रहता है और UHG सोनोग्राफी, ये दो टेस्ट बहुत ज़रूरी है। और मेल पार्टनर में हम सीमेन काउंट, सीमेन एनालिसिस वो करते हैं।
0: और अभी तो तकनीक काफ़ी एडवांस हो गई है, तो इनफर्टिलिटी के जांच के लिए और भी कुछ जांच की पद्धति आ गई है, तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ इन्हें बच्चा ना होने का क्या कारण है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। जैसे लेप्रोस्कोपी है तो क्या?
1: हाँ, वो थोड़ा जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी या IVF या IUI एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने ज़माने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल, और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर। और शिफ्ट नहीं हो रहा है तो टेस्ट रहते हैं आगे चल के उनका टिबल ब्लॉक है कि नहीं, वो एक अच्छी सी टेस्ट रहता है
0: जी।
1: तो वो सब ठीक है, अभी नहीं हो रहा है नॉर्मल, कुछ ज़्यादा दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आगे चल के उनको लेप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं।
0: तो ये भी इनफर्टिलिटी भी एक ऐसा कारण है जो स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। आज हम बात करना चाह रहे हैं PCOD और महिलाओं के अन्य तमाम समस्याओं पर, और आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि जब PCOD का इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती है, लक्षण हैं जैसे कि पीरियड्स का इररेगुलर हो जाना। तो पीरियड्स का इररेगुलर होता है, कई बार कई महिलाओं को, कई लड़कियों को हैवी ब्लीडिंग होती है, भयानक पेन होता है, तो दर्द से निजात पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? और ये भी सुना है कि फिर फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं क्या हैवी ब्लीडिंग की वजह से, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है फाइब्रॉइड्स और
1: यूटेराइन फाइब्रॉइड और CSTA जो है। तो मेडिसिन लेकर देखते हैं पेशेंट को, अगर उसका साइज ज़्यादा हुआ, फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो वो सर्जरी करना पड़ता है इसका।
0: कैसे पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स है या नहीं?
1: UHG में, सोनोग्राफी में उसका परफेक्ट मेजरमेंट आता है
0: जी,
1: सोनोग्राफी एक ही माध्यम है उसको
0: जी। तो क्या फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन करना जरूरी होता है या ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है?
1: शुरू शुरू में तो ट्रीटमेंट ही देना जरूरी है, और ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है मेजरमेंट उसका, तो सर्जरी करना पड़ती है
0: जी। तो एक गाना और सुने आपकी पसंद का, कौन सा?
1: अजीब दास्ता
0: है जी, सुनते हैं। बेहतरीन गाना चुना है, लता मंगेशकर की आवाज़ है।

0: आपने कुछ लक्षण बताए, हार्मोनल असंतुलन होता है तो और क्या क्या लक्षण होते हैं जब हार्मोनल असंतुलन होता है, और इनको क्या नजरअंदाज करती हैं कई बार महिलाएं, तो क्या कुछ मुश्किलें आती हैं जब इन्हें नजरअंदाज करती हाँ। छोड़ देती हैं?
1: ये तो जब फिजिकली होता है तो हमको समझ में आता है कि नहीं उसको ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है इसमें, उसको नज़रअंदाज कर दिया जा सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन है जिसे, और काउंसलिंग पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा।
0: तो काउंसलिंग किस तरह की होनी चाहिए?
1: काउंसलिंग जब डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर भी अच्छे, जब काउंसलर डॉक्टर हो गए तो पेशेंट का रेपो अच्छा हो जाता है उनसे, फ्रेंडली, जब वो अच्छे से समझाते हैं तो आधा काम इधर ही हो जाता है ऐसा मुझे लगता है
0: जी।
1: और डीप ब्रीदिंग, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक थिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी अभी जो चाहिए इस जमाने में, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, और उसका स्लीपिंग जो पार्ट है प्रॉपर स्लीप वो होना चाहिए, और समझाना चाहिए सब। और एक है पॉजिटिव विजुलाइजेशन, जो तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव थिंक प्रोसेस और पॉजिटिव विजुलाइजेशन, ये बहुत बड़ी बात है
0: जी। डॉक्टर आशालता, पीसीओडी एक बड़ी समस्या है, हार्मोन्स का असंतुलन, तो इसमें डाइट्स का कितना बड़ा योगदान है? क्या डाइट्स के जरिए ठीक किया जा सकता है, खान पान के जरिए?
1: डाइट
0: किस तरह से ठीक किया जा सकता?
1: डाइट के जरिए 35 तक ठीक कर सकते हैं पीसीओडी, 35% तक ठीक कर सकते,
0: 35%
1: हाँ। तो डाइट में, डाइट ही बहुत ज़रूरी है पीसीओडी यानी वुमन हेल्थ में, एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर बहुत ज़रूरी है। और डाइट में हम देखें तो अभी फास्ट फूड खाते हैं बच्चियाँ, बस फास्ट फूड ही खाती है, बर्गर खाएगी, पिज़्ज़ा खाएगी, बाहर का सब खाएगी, तो ये सबसे बुरी बात है। कार्ब्स कम करना है इसमें, और फाइबर इंटेक करना है, जैसे सैलड हो, कच्चे स्प्राउट्स हो, कैलोरीज पर ध्यान देना है। हाँ, जो हमको डेली में लगता है 1800-2000 तक कैलोरीज
0: जी,
1: और बच्चियाँ लड़कियाँ खाती है 4000-5000 कैलोरी, तो कहाँ पर कम करना है, और कैलोरी अगर खा लिया

0: तो बर्न कैसे करना है, तो उसको बर्न करना है एक्सरसाइज से। तो डाइट हम लोग जैसे बोलेंगे, तो टाइम पे सोना है, उठना है, पीसीओडी में पानी पीना है 3 से 4 लीटर, स्ट्रेस ना लेना है, और शुरू में उठते बराबर सुबह सुबह थोड़ा गर्म पानी पीना है, और अगर मेथी, थोड़ा जीरा, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा ये भी डाले तो ये टी हो सकता है, हर्बल टी, उससे भी थोड़ा सा पीसीओडी कम होने में मदद कर सकते हैं। नाश्ते में फाया आलमंड, वाइट एग ये ले सकते हैं, स्प्राउट्स ये ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में मूंग दाल वगैरह ये चीले ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन उपमा, पोहा, शिरा ये कार्ब्स है, उससे वजन बढ़ता है और अफेक्ट करता है। और हरी सब्जियां बहुत ज़रूरी है, जैसे सभी मेथी, पालक ये सब, और हरी सब्जियां से भी 25% तक पीसीओडी या वुमेन हेल्थ कम कर सकता है। और शुगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शुगर एकदम बंद, पीसीओडी के पेशेंट में हम शुगर बंद कर देते हैं, शुगर, मैदा, वाइट जो चीज़ें, राइस जैसे
1: जी।
0: हाँ, और हाई प्रोटीन डाइट हम बोलते हैं पेशेंट को कि थोड़ा प्रोटीन लो, तो प्रोटीन किस में होता है, जैसे मिल्क है, टोफू है, पनीर है, गुड प्रोटीन होता है ड्राई फ्रूट्स में, वो भी हम बोलते हैं। और सप्लीमेंट्स भी लेना ज़रूरी है, हम उनको बोलते हैं, जैसे ओमेगा फैटी हो गया, विटामिन डी थ्री हो गया, विटामिन डी,
1: और विटामिन डी धूप से
0: सनलाइट,
1: और आजकल धूप की बहुत कमी है,
0: बहुत कमी है।
1: लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, तो मिलता नहीं, तो धूप सेकना बहुत जरूरी है। धूप का ही एक गाना है, एक टुकड़ा धूप का, फिल्म थप्पड़ से, आप कहें तो वो गाना सुनवा दें, आप कहें तो कोई और गाना।
0: नहीं नहीं जरूर, वो बहुत अच्छा गाना है।
1: तो ठीक है, ये गाना सुनते हैं जिसमें धूप है।

0: डाइट का कितना योगदान है?
1: डाइट का बहुत सारा योगदान है।
0: तो और क्या क्या डाइट्स ले सकते हैं?
1: अभी डाइट में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते हैं, जैसे कोक हो गया और जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, हाँ, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रहता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं, चॉकलेट्स भी नहीं। और इससे बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ता है और शुगर लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। बाहर की चीज़ें जैसे रिसाइकलिंग ऑयल में हम जैसे बोलते हैं समोसा, जो
0: हाँ
1: नहीं खाना चाहिए,
0: समोसे उससे ट्रांसफैट, हाँ
1: हाँ, ये ट्रांसफैटी एसिड बढ़ता है और वो भी ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। और पैकेज फूड जो होता है, पैकेट बंद पैकेट का फूड, वो भी नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग फूड, नमकीन, भुजिया, जो सॉल्टी फूड्स है, वो भी नहीं।
0: तो और आपने कहा कि शक्कर बंद कर देना चाहिए एकदम, तो कई बार एकदम से शक्कर बंद हो जाए तो लोगों को चक्कर आना, इस तरह की समस्या, वीकनेस, कमजोरी महसूस होती है, तो उसके लिए फिर क्या करना
1: चाहिए? फ्रूट्स से नेचुरल शुगर मिल जाती है जी को, हाँ, तो मतलब फ्रूट्स इंटेक कीजिए।
0: जब अगर शक्कर छोड़े तो फल जरूर खाएं।
1: फल जरूर खाएं। और ऐसा नहीं है कि शक्कर छोड़े गुड़ खाओ, अभी वैसा ही करती है महिलाएं कि हमको शक्कर छोड़ने बोला है और बोला है कि गुड़ खाओ, बिल्कुल गलत है। शक्कर की सब्स्टिट्यूट गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं तो कोई नहीं, स्वीटनर कोई नहीं है,
0: मीठा वो भी
1: मीठा, हाँ, हमारे रोज के खाने में भी हमको शुगर जाती है। और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खजूर वगैरह है, नेचुरल शुगर मिल जाती है,
0: वो खा सकते हैं,
1: खा सकते हैं।
0: और पीसीओडी जो हार्मोनल असंतुलन होता है, तो क्रॉनिक

0: स्ट्रेस होता है।
1: हाँ क्रॉनिक,
0: तो उसके लक्षण क्या है और कैसे इलाज हो सकता है?
1: हाँ,
0: क्या
1: क्रॉनिक स्ट्रेस होता है, बहुत सारी चिड़चिड़ पीसीओडी के पेशेंट, चिड़चिड़ बहुत ज़्यादा होती है पीसीओडी के पेशेंट की। अभी जब भी पेशेंट हमारे पास आती है तो बोलती है कि चिड़चिड़ी बहुत ही होती है, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कुछ हो तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ये क्रॉनिक ये रहता है स्ट्रेस, और इससे कॉर्टिसोल बढ़ा देता है ये, और वजन बढ़ता है और ओवुलेशन ब्लॉक हो जाता है, सिस्टिक ओवरी हो जाती है, इनफर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है।
0: और क्या क्या कर सकते हैं इस स्ट्रेस से निजात पाने के लिए?
1: स्ट्रेस से कुछ तुम हॉबी हो या करियर पे ध्यान दो, या थोड़ा मेडिटेशन करो, या थोड़े अच्छे संगीत सुनो, और फिर थोड़ा सा मौन व्रत धारण करो।
0: हाँ। चलिए हम मौन व्रत धारण करते हैं, एक गाना सुनते हैं। बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
1: झिलमिल सितारों के
0: आंगन होगा, सुनते हैं यही गाना।

0: पीसीओडी की बात करें और महिलाओं की और भी बीमारियां होती हैं जो महिलाएं जिनसे बचती भी हैं, जिन्हें छुपाती भी हैं, संकोच करती हैं। जैसे कि एक समस्या और है कि एक खास समय पर, टीनेज पर, 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं मासिक धर्म, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये बताया नहीं जाता, अवेयर नहीं किया जाता है, माँ बाप उन्हें इस बात की शिक्षा नहीं देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से उनको जागरूक बनाया जाए, उनको जानकारी कैसे दी जाए, इसके बारे में कुछ
1: अभी
0: कहिए
1: जो
0: आप।
1: है टीनेज में आने का, जो मेनार्क बोलते हैं हम लोग पीरियड स्टार्ट होने का, वो एज बहुत अर्लियर हो गया है।
0: जल्दी आ
1: हाँ,
0: जाता है
1: जल्दी आ
0: पीरियड।
1: गया है। हम लोगों में जब 14 to 16 था, 12th से आता था, 12 ईयर से, अभी वो 8.5-9 साल की लड़कियों में भी दिख जाता है कि इसको मेनार्क स्टार्ट हो गया, इसको पीरियड स्टार्ट हो गया। और ये बहुत ज़्यादा डरने की चीज़ है, डरने जैसी।
0: तो
1: तो
0: क्या
1: क्यों,
0: वजह है इसकी?
1: इसकी वजह है जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, 2-3 साल की, खाने लगती है, तो बस उसको फास्ट फूड देते हैं।
0: ओ
1: हाँ, कोक, ये वो सब। मोटी होती है बच्ची, ध्यान नहीं देते, खाती है खाती है। और जब जितना अर्लियर मेनार्क स्टार्ट हो गया, जितना अर्लियर तुमको पीरियड स्टार्ट हो गए, उतना पीसीओडी का खतरा बढ़ता है। और अभी पीरियड्स कैसे स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, यूटेरस क्या चीज़ है, उसका फंक्शन कैसा है, ये सब स्कूल में इसके सब शोज होते हैं, बातें करती है डॉक्टर, और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है।
0: और आपने ये गर्भाशय में सिस्ट बन
1: हाँ,
0: जाता है तो,
1: गर्भाशय में
0: हाँ,
1: सिस्ट
0: तो
1: बन जाता
0: ये
1: है,
0: क्या
1: तो
0: समस्या है और इसका इलाज कैसे होता है?
1: गर्भाशय रहता गर्भाशय है, गर्भाशय के साइड में दो गर्भनलिकाएँ रहती है, और गर्भनली के नीचे ओरिस रहती है। और जनरली देखा जाए तो 30 डेज की साइकिल रहती है, थर्टी
0: जी
1: ट्वेंटी एट थर्टी। तो फर्स्ट 10 डेज, बीच के 10 डेज और लास्ट 10 डेज, ऐसे 30 डेज। तो फर्स्ट 10 डेज में ओवुलेशन नहीं होता है, लास्ट 10 डेज में ओवुलेशन हो जाता है, और बीच के 10 डेज जो होते हैं उसमें ओवुलेशन होता है, यानी ओरी से एक फॉलिकल निकलता है, अंडा निकलता है, वो रिलीज होता है, बाहर आता है, और जब स्पर्म उससे मिलता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और नहीं मिलता है तो पीरियड्स आ जाता है। ये नेचुरल नॉर्मल लेडी में होता है, बीच के 10 डेज ओवुलेशन पीरियड। और पीसीओडी के पेशेंट में ये होता है कि उनका वो जो एग है वो रिलीज नहीं होता है, वो बाहर नहीं आता है, वो बाहर ना आने जाने की वजह से मोतियों जैसी, मालाएं जैसी ओरी में सिस्ट दिखती है, छोटी छोटी सिस्ट होती है, और बाहर न आने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है।
0: जी, तो उस सिस्ट का इलाज कैसे किया जाता है? क्या ऑपरेशन होता है या दवाओं
1: वो
0: से ठीक
1: सिस्ट
0: होता
1: तो नेचुरल सिस्ट, तो मैंने जैसे बार बार बोला है कि वो अच्छे से डाइट, एक्सरसाइज, पहले नेचुरल वे से कंट्रोल करते हैं, नेचुरल वे से नहीं कंट्रोल हुआ तो मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, नहीं हुआ तो सिस्ट का ड्रिल होता है, ड्रिलिंग लैप्रोस्कोपी से, सर्जिकल प्रोसेस है,
0: जी?
1: होते हैं।
0: तो उसका कोई खतरा नहीं?
1: नहीं, उसका कोई खतरा नहीं, सर्जिकल होता है और मेडिकली वो होता है ठीक ठाक।
0: जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
1: सुरमई अखियो
0: सुरमई अखियों में नन्ना
1: नन्ना
0: मुन्ना
1: मुन्ना
0: एक
1: सा
0: सपना दे
1: सपना।
0: जा रहे, सुंदर गाना, सदमा फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और डॉक्टर आशा रता विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर, हमें बताइए कि आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया था कि पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके तो बहुत सारे इलाज आजकल संभव है। अखबारों में विज्ञापन आता है कि इतने हजार में आप IVF तकनीक से बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा IVF तकनीक के बारे में बताइए किस तरह से वो बच्चे का जन्म होता है, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो गांव में भी हैं जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी बताइए, और कितना टाइम लगता है, कितना रिस्की होता है।
1: तो पेशेंट जैसे इनफर्टिलिटी उनको डिटेक्ट हुआ, चलो तो डायरेक्टली IVF नहीं करना चाहिए और करते भी नहीं है, उनको प्रॉपर नेचुरल वे से ट्राई करते हैं और फिर इनफर्टिलिटी जर्नी किसी को नहीं होना चाहिए, इतनी सफ़र होती है पेशेंट उसमें बहुत सारे, तो नेचुरल ट्राई करते हैं। नेचुरल ट्राई नहीं हुआ तो डॉक्टर मेडिसिन देख के ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है और फिर IUI का सेटिंग करते हैं। IUI भी नहीं हुआ तो
0: IUI क्या है?
1: IUI है इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको, डायरेक्टली यूटेरस में सीमेन डाल देते हैं। IUI जब करते हैं कि जैसे स्पर्म काउंट कम हो, उसकी मोर्टेलिटी कम हो और स्पर्म काउंट जीरो भी हो, अजोस्पर्मिया उसको जो बोलती है, तो डोनर से बोल लेते हैं, लैब में ये सब किया जाता है
0: और लैब से भी डोनेट,
1: हाँ डोनर कर देते हैं, और डोनर को पता नहीं रहता है पेशेंट को पता नहीं रहता है, ये सब बहुत ही लीगली होता है, बहुत ज़्यादा लीगली होता है। और IUI के जैसे परसेंटेज सक्सेस रेट बहुत कम है, 5-7% इतना ही सक्सेस रेट है, बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट कम है। और फिर नहीं IUI हुआ तो वो फॉर IVF के तरफ जब जाते हैं, तो IVF क्या होता है तो IVF में ओवम पिकअप करते हैं फीमेल का,
0: वो जो परक्टली
1: उसमें सब मेडिसिन पहला देकर उसको मैच्योर करते हैं और वो पिकअप करते हैं, और स्पर्म तो लैब में उसको एम्ब्रियो बनाते हैं, उसका एम्ब्रियो बन जाने के बाद में यूटेरस में
0: तो ट्रांसफर।

0: इस पूरी प्रक्रिया में पीरियड्स के किस दिन से शुरू होता है ये प्रोसीजर?
1: हाँ, पीरियड्स के सेकेंड थर्ड से स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर।
0: हाँ
1: फर्स्ट तो इंजेक्शंस, मेडिसिंस,
0: जी
1: और फिर बाद में ओम पिकअप करते हैं जब मैच्योर हो जाता है श्री बीज अंडा, और फिर बाद में
0: तो कई बार कपल जो पति पत्नी होते हैं जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको घबराहट भी होती है कि ये क्या प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कैसे होता है, क्या जैसे महिलाओं के गर्भाशय से जब अंडे रफ्चर होते हैं वो निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, उस समय कैसे, फिर उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती है?
1: वो थोड़ा
0: और
1: पेनफुल प्रोसीजर रहता है,
0: हाँ
1: तकलीफ तो होती है उनको, लेकिन
0: एनेस्थीसिया वगैरह देना पड़ता है?
1: एनेस्थीसिया नहीं, एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं रहती है। और स्पर्म तो ऐसे ही लैब में कलेक्ट हो जाते हैं और उसका एम्ब्रियो बनाते हैं लैब में।
0: ओके तो फिर इसमें किसी तरह का खतरा, कोई रिस्क नहीं होता है?
1: नहीं, अभी तो सब लैब टेस्ट टेस्टिंग होता है, पूरा सब लीगली प्रोसीजर्स होता है, खतरा कोई नहीं होता है।
0: कितने साइकिल में ये संभव हो पाता है, डॉक्टर के पास कितनी बार जाना पड़ता है?
1: वो बोल नहीं सकते, कभी वन साइकिल में हो जाता है, कभी सेकेंड साइकिल में, कभी थर्ड साइकिल में भी हो जाता है, वो बोल नहीं सकते, कभी फेल भी हो जाता है। लेकिन IVF जो फेल हो गया वो लास्ट लास्ट है,
0: जी
1: लास्ट स्टेप है। IVF फेल हो जाने के बाद में तुम नेचुरल वे में नहीं आ सकते।
0: जी। तो PCOD के कारण क्या ये भी होता है कि मेनोपॉज जल्दी हो जाए या फिर बहुत देर से हो, ये समस्या भी होती है?
1: हाँ, होती है। PCOD में पीरियड से रेगुलर रहते हैं और ट्रीटमेंट नहीं किया तो मेनोपॉज ही हो जाता है, कभी कभी दवाई लेके ही पीरियड आता है,
0: जी
1: ये भी होता है।
0: जी तो इसकी क्या वजह है कि नींद की कमी
1: हाँ,
0: और
1: नींद की कमी, डाइट और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है,
0: जी
1: हार्मोनल इम्बैलेंस बस।
0: कई बार हमने देखा है कि महिलाओं में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और कई महिलाओं में बहुत कम
1: कम
0: होती
1: हो
0: है,
1: जाती है स्केंट में।
0: और कुछ महिलाओं को दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी क्या वजह होती है?
1: वो जेनेटिक फैक्टर भी रहता है, कभी कभी दर्द होता है, मनर्जिया बोलते हैं उसको, और डाइट का भी इफेक्ट करता है वो, और एक्सरसाइज भी नहीं होती है तो होता है। जो
0: जी
1: महिलाएं एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, काम करती है, उनको नहीं इतना कुछ होता है।
0: तो
1: जो महिलाएं बहुत सुख वस्तु है, कुछ भी नहीं करती, योगा भी नहीं करती है, तो उनको ये सब पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज पेनफुल होता है।
0: तो ये गंभीर रूप कब ले लेता है?
1: तो इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये गंभीर ही रूप लेता है।
0: क्या कुछ
1: यूटेरस में
0: खतरा होता है?
1: हाँ, यूटेराइन कैंसर भी होता है, एंडोमेट्रियम कैंसर, ओरीज का कैंसर हो सकता है बाद
0: जी
1: में, और ये सब इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा।
0: तो क्या इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है कि इससे निदान?
1: वैक्सीन उपलब्ध है लेकिन उसका सक्सेस रेट कितना ये पता नहीं है।
0: और कई बार महिलाओं के गर्भाशय में छोटी मोटी गांठ होती है, कई बार फाइब्रॉइड्स को भी लोग गांठ समझ लेते हैं और
1: हाँ,
0: कैंसर का डर पैदा होता है, तो
1: डर
0: ऐसा
1: पैदा
0: कहाँ तक सच्चाई है इसमें?
1: सभी गांठें कैंसर की होती है ऐसा नहीं है।
0: जी
1: कभी कभी ये PCOD की तो सीस्ट पानी जैसे होता है उसका,
0: जी
1: हाँ, कभी कभी हेमोरेजिक होती है, खून भी रहता है उसमें, हेमोरेजिक सिस्ट भी होता है,
0: मतलब पानी,
1: सिस्टिक
0: हाँ
1: होता है, और कभी कभी हेमोरेजिक भी होती है,
0: यूरिन के रास्ते से सफेद
1: यूरिन
0: पानी
1: के,
0: आता है ऐसा?
1: हाँ, वो अलग चीज़ है। यूरिन के रास्ते जो सफ़ेद पानी है तो वाइट डिस्चार्ज होता है, वो इन्फेक्शन के कारण हो जाता है।
0: जी तो
1: हाँ,
0: उसका क्या इलाज है?
1: वो तो क्लीनिनेस और फिर थोड़ा एंटीबायोटिक और सभी देख के वो क्लियर हो सकता है।
0: जी तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
1: ये रात भीगी भीगी
0: ये रात
1: नरगिस,
0: भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, चोरी चोरी फिल्म का गाना है,
1: हाँ
0: सुनते हैं यही गाना।

0: पीसीओडी की जो समस्या होती है डॉक्टर, तो उसमें आपने जिक्र भी किया था कि अनावश्यक बाल हो जाते हैं चेहरे पर, जो लड़कियों को, महिलाओं को बहुत बुरा लगता है और उसका ट्रीटमेंट ढूंढती हैं, तो इसके बारे में बताइए कि इसका क्या इलाज है।
1: पीसीओडी का लक्षण है अनवांटेड हेयर।
0: हाँ।
1: और लड़कियां बोलती है कि हमको पीसीओडी चलेगा, लेकिन ये अनवांटेड हेयर नहीं। हर 2-3 दिन के बाद हेयर ग्रोथ हो जाती है, कभी रेजर करते हैं, कभी वैक्सिंग करते हैं, कभी थ्रेडिंग करते हैं, और उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये बाल तो जैसे पीसीओडी इम्बैलेंस रहा, हार्मोनल इम्बैलेंस, तब तक आते ही रहते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये बाल होते हैं। और इसमें भी LHR बोलते हैं उसको, लेज़र कर देते मशीन से, हेयर लेज़र रिमूवल, वो भी बहुत अच्छी एक है।
0: जी, जब हार्मोन्स का असंतुलन होता है तो मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, किस तरह से होता है?
1: मानसिक स्वास्थ्य ही प्रभावित होता है, चिड़चिड़ापन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है।
0: जी, तो इसका इलाज क्या है?
1: इसका इलाज मेडिटेशन, शांत रहना।
0: डॉक्टर, आज के युग में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारी महिलाओं के बारे में सुना जाता है उन्हें ब्रेस्ट कैंसर से वो महिला जूझ रही है, तो इसका परीक्षण कैसे करें?
1: हाँ, इसका परीक्षण सेल परीक्षण भी कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होके अपना पाल्म ये है इसका थोड़ा सा टच करके, कुछ लगे हार्ट तो जल्दी से डॉक्टर को बता देना चाहिए। और महीने में एक बार तो भी सेल परीक्षण करना चाहिए। और फिर कुछ लगा ऐसे कि हार्ड होता है, कुछ गठे जैसी लग रही है, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए। और ब्रेस्ट फर्स्ट सेकेंड स्टेज में तो बहुत ही अच्छा हो जाता है।
0: और इसके लिए एक तकनीक भी इसकी जांच के लिए उपलब्ध है ना, मैमोग्राफी।
1: मैमोग्राफी कर,
0: तो
1: मैमोग्राफी, सोनोग्राफी, FNAC, नीडल बायोप्सी।
0: लेकिन महिलाएं डरती हैं इस तकनीक से?
1: महिलाएं डरती नहीं है, महिलाएं वो करना ही पड़ता है, वो जरूरी है, डरने का ये नहीं है। महिलाएं कभी डर गई तो बढ़ जाएगा, थर्ड फोर्थ स्टेज में कुछ नहीं होता है।
0: और पीसीओडी में मूड स्विंग बहुत होता है, तो इसका क्या इलाज है मूड स्विंग का, कि अचानक किसी महिला को देखा है अचानक चीखने चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अचानक बिल्कुल शांत,
1: मेंटल स्ट्रेस,
0: तो इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है?
1: उसका डाइट से, डाइट एकदम मसालेदार, बहुत चटपटा, बहुत बाहर का, अंदर से पूरा हीट बढ़ गया ऐसा है वो। इसका इलाज भी मेडिटेशन है, शांत रहना है
0: जी,
1: एक्सेप्टेंस करना है, और जो मैनेजमेंट रहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट वो आना चाहिए
0: जी,
1: अच्छे से किताब पढ़ो, अच्छे से थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो, फोकस करो करियर पे, जो चीज़ तुमको बुरी लगती है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, जो तुमको थोड़ा सा अच्छा लगता है, हॉबीज है कुछ, उस पे ध्यान दो।
0: और PCOD की समस्या

0: से निपटने के लिए और क्या सलाह देंगी आप हमारे श्रोताओं को? फास्ट
1: पीसीओडी से निपटने के लिए तो फास्ट फूड बंद करो। जब पीसीओडी का पेशेंट आता है तो हम यही बोलते हैं कि फास्ट वॉक, अवॉइड फास्ट फूड बस, और नींद लो अच्छे से।
0: जी, कुछ संदेश देना चाहती हैं हमारे श्रोताओं को?
1: बस हैप्पी रहो, किसी को पीसीओडी ना हो। जो महिला योगा करती है अच्छे से, खुद को माइंड फ्रेश रखती है, हैप्पी रहती है, और उनको पीसीओडी, मेनार, मेनोपॉज, ये वो सभी समस्या से वो आराम से गुजर जाती है, आराम
0: जी
1: से हो जाता है सब। और
0: जी
1: जो महिलाएं नहीं, चिड़चिड़ापन ही रहता है उनका, बाकी कुछ ज़्यादा सोचती नहीं, बस चिड़चिड़ चिड़चिड़, तो ये सब जो हमारे स्टेजेस हैं महिला के जीवन में, मेनार्क है, जैसे पेरी मेनोपॉज है, मेनोपॉज है, अभी ये पीसीओडी आ गया, तो इससे वो नहीं जूझती है, उनको तकलीफ होती है इससे सब
0: जी
1: बाहर
0: जी
1: निकलने के लिए।
0: जी
1: पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज़ है, और लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचो, सभी अच्छा होता है।
0: बिल्कुल
1: पॉजिटिव विजुलाइजेशन, पॉजिटिव मेडिटेशन, सात्विक सकारात्मक
0: जी।
1: जीवन शैली।
0: डॉक्टर आशालता, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें हमारे श्रोताओं को बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू
0: नमस्कार।
1: सो मच, थैंक यू मैम।
2: ये थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम।
4: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से

0: पहले हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन को एक नए चरण में प्रवेश मिला है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के लिए राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य आपदा मोचन बल के साथ स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मेक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत हैं भजन।

अभी आप सुन रहे थे भजन। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा मंच।

0: युवा दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार और स्वागत है आपका कार्यक्रम युवा मंच में। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं युवा आदित्य धीमान, जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम की परीक्षा पास की थी, उनके साथ ज्योति की बातचीत। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का युवा कार्यक्रम युवा मंच, जहां हम बात करते हैं युवाओं की सोच, उनके सपनों और उनकी सफलताओं की प्रेरणादायक कहानियों की। आज के हमारे कार्यक्रम में हम मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे युवा से जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से देश की प्रतिष्ठित यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करके एक नई मिसाल कायम की है। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदित्य धीमान, जिन्होंने हाल ही

0: यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल करके अपने परिवार और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अदिति जी, युवा मंच कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है और इस शानदार सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई।
1: थैंक यू मैम, धन्यवाद आपका।
0: अदिति जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा को पास करने के बाद जब रिजल्ट आया तो उस समय आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी?
1: मैम, वही था कि जब रिजल्ट आया तो बहुत ज्यादा एक डर का माहौल रहता है और आप इसी क्षण का इंतजार करते हैं इतने सालों, और उस समय आपकी एक पीडीएफ डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ आगे क्या होगी, और आप इस एग्जाम में चीजें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप श्योर नहीं हो सकते कभी भी कि क्या आपका रैंक आएगा, कि आप सक्सेसफुल होंगे भी कि नहीं। तो डेफिनेटली जब रिजल्ट आया तो मैं तो मंदिर में बैठ गया था एंड वहां पे मैंने भगवान जी की मूर्ति थी उनको उसको पकड़ा था, और मैंने सोचा कि देखो अब मेरी साइड से हो चुका है जो हो सकता था, अब आपकी बारी, अब आप देख लेना। तो मैंने उन पे छोड़ दिया एंड फिर रिजल्ट अच्छा आया। तो फिर सबसे पहले ऐसा था कि मुझे लगता था पहले कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा लाइफ में और एकदम से मेरे को बहुत खुशी होगी, बट उस समय ऐसा था, एक रिलीफ था और थोड़ा अच्छा लगा, बट एक खुशी आई वुड से बहुत कंट्रोलेबल थी। मेरे से ज्यादा खुश मेरे पेरेंट्स थे और मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे फैमिली मेंबर्स थे, लोग थे। तो वही है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं सालों साल और उस मोमेंट के लिए, बट फिर वो मोमेंट आता है तो आपको लगता है कि ये भी पास हो गया एंड आपके अराउंड जो लोग होते हैं वो आपसे ज्यादा खुश रहते हैं और उसकी आपको बहुत खुशी होती है और बहुत रिलीफ मिलता है।
0: जी, और आपकी इस सफलता के पीछे निश्चित ही लंबी तैयारी और संघर्ष रहा होगा। श्रोताओं को बताइए कि आपकी तैयारी की रणनीति क्या रही?
1: मैम, मैंने लॉ में पढ़ाई करी है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल से। उस समय ये 5 साल की डिग्री है BA LLB ऑनर्स की। मैं 2020 में कॉलेज पहली बार गया फर्स्ट ईयर में, और 2025 में मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी। मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के एक महीने बाद ही यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम था। तो मुझे बहुत क्लियर था जब मैं थर्ड ईयर में हुआ कॉलेज के, तो मैंने सोचा कि अब कुछ करना है, सोचना है लाइफ के बारे में कि आगे क्या करना है। पहले 2 साल तो कॉलेज जाते हैं तो वो जानने जान पहचान कॉलेज से एक्वेंटेंस बनाने में लग जाते हैं। जब थर्ड ईयर आया तो सोचना था कि अब क्या करना है। मेरे काफी मित्र जो थे वो कोई जुडिशरी कर रहा था, किसी को जज बनना है, किसी को वकील बनना है, कोई कॉर्पोरेट साइड जाना था। तो उस समय मैंने सोचा कि अब मेरे को क्या करना चाहिए। तभी मुझे लगा कि डेफिनेटली सिविल सर्विस, क्योंकि मेरे जो पिता हैं वो भी हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर रहे हैं, तो उससे हमेशा मुझे एक प्रेरणा मिली और उससे हमेशा एक मेरे को मोटिवेशन रहा कि मैं सिविल सर्विस कर सकता हूँ। क्योंकि सिविल सर्विस में मैंने हमेशा से देखा है कि आपके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है लोगों के लिए काम करने का, क्योंकि आप गवर्नमेंट में डायरेक्टली काम करेंगे और उस पोजिशन में काम करेंगे जहां पे आपके पास काफी अथॉरिटी और पावर रहती है, वहां पे डेफिनेटली इट इज जो आपको बहुत अपॉर्चुनिटी देगा लोगों की हेल्प करने का। और मुझे ऐसा लगता था वही मेरा पर्पस है।
0: और तैयारी के दौरान कभी ऐसा समय भी आया जब आपको लगा कि रास्ता बहुत कठिन है, उस समय आपने खुद को कैसे प्रेरित किया?
1: यूपीएससी जैसे एग्जाम में जो बहुत लॉन्ग टर्म एग्जाम है, इसमें डेफिनेटली बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अनसर्टेनिटी बहुत है, डाउट्स बहुत रहते हैं अपने ऊपर, 0.001% का सक्सेस रेट है, तो आपको हमेशा लगता है कि यूपीएससी आपको ही क्यों चुनेगा, क्या है आप में ऐसी बात। बट वही है मैम, हमें हमेशा ये समझना है कि आपका जो गोल है, उद्देश्य है, वो बहुत ऊंचा होना चाहिए। एक बार आपने वो सोच लिया तो आप उसकी तरफ काम करते हैं, और अगर आपकी डायरेक्शन अच्छी है, आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, आप उतनी मेहनत कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इवन यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीवेबल है।
0: जी, और आपकी इस यात्रा में आपके परिवार और शिक्षकों की क्या भूमिका रही, ये हम जानना चाहेंगे।
1: मैम, परिवार और जितने भी टीचर्स थे उनकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मोटिवेशन रहती है, बिकॉज परिवार को देख के ही आप अपनी, जब आप कुछ भी आप अगर अचीव करते हैं लाइफ में तो सबसे ज्यादा खुशी हमारे माता पिता को और हमारे दोस्तों और परिवार वालों को ही होती है, एंड वो एक आपका मोटिवेशन का सोर्स है कि आपको अपने लिए नहीं तो उनके लिए करना है। वो हमेशा आपसे एक होप लगाए रखते हैं कि आप कुछ करेंगे लाइफ में। इन एडिशन जो दोस्त हैं मेरे और मेरे टीचर्स हैं, टीचर्स ने मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखा कि हर चीज पॉसिबल है, और उन्होंने मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन की वैल्यू बताई कि एजुकेशन तुम्हें कहां से कहां पहुंचा सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि बहुत सिग्निफिकेंट उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है थ्रू आउट द जर्नी।
0: जी, अदिति, आपकी जिंदगी का वह कौन सा पल था जब आपने तय किया कि आपको सिविल सर्विस में ही जाना है?
1: मैम, बहुत पहले से था, जब मैं 9th-10th में था तब मैंने क्लैट करके एक एग्जाम होता है फॉर लॉ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज का, उसकी तैयारी शुरू करी। उस समय मैंने सोच लिया था कि लॉ मैं इसीलिए करूंगा क्योंकि बाद में लॉ की पढ़ाई मुझे काम आएगी ब्यूरोक्रेसी में, जो कि उनका काम ही लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। तभी से मैंने अपना मन बनाया था, बट ऑफकोर्स उस समय बहुत ज्यादा ऊपर सर्फिस लेवल पे था, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मेरा उस समय गोल था। बट जब मैं थर्ड ईयर में आया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं थर्ड ईयर में डिसाइड कर रहा था कि मुझे क्या करना है, और थर्ड ईयर में फिर मैंने फाइनली ये स्टेप लिया घर वालों से बात करके, दोस्तों से बात करके, और फाइनली खुद पे एक विश्वास मेरे अंदर पैदा हुआ कि मैं ये कर सकता हूँ
0: कि आपको यहाँ जाना है सिविल सर्विस।
1: जी
0: जी, तो पढ़ाई

0: के लंबे समय में ध्यान और एकाग्रता बनाए रखने के लिए आप क्या तरीका अपनाते थे? कुछ बताना चाहेंगे?
1: मैम, मैं एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता था, उसे 50-10 का रूल कहते हैं, विच बेसिकली सेज कि आप 50 मिनट पढ़ाई करें और फिर 10 मिनट आप ब्रेक लें। इससे ये होता है कि आप अगर 3 घंटे लगातार पढ़ेंगे तो आपसे आपका जो फोकस है वो धीरे धीरे गिरता रहता है। अगर आपने स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग के 40-50 मिनट के आपके बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं और फिर आपको टायर्डनेस आने लगती है। तो मैंने हमेशा से 50-10 रूल फॉलो किया है। 50 मिनट में पढ़ता था, 10 मिनट में ब्रेक लेता

0: पढ़ाई करें और फिर 10 मिनट आप ब्रेक लें। इससे ये होता है कि आप अगर 3 घंटे लगातार पढ़ेंगे तो आपसे आपका जो फोकस है वो धीरे धीरे गिरता रहता है। अगर आपने स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग के 40-50 मिनट के आपके बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं और फिर आपको टायर्डनेस आने लगती है। तो मैंने हमेशा से 50-10 रूल फॉलो किया है। 50 मिनट में पढ़ता था, 10 मिनट में ब्रेक लेता, बहुत पसंद है
1: जी। और अगर आपको अपनी यूपीएससी यात्रा को 3 शब्दों में बताना हो तो वे 3 शब्द क्या होंगे?
0: मैम, फर्स्ट वर्ड मेरे हिसाब से होगा परसिवरेंस, दूसरा शब्द पेशेंस और तीसरा शब्द एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी। तो ये 3 शब्द हैं जिसके अराउंड मेरी पूरी प्रेपरेशन रही है।
1: आदित्य जी, आजकल बहुत से छात्र सोशल मीडिया से पढ़ाई करते हैं, आपके अनुसार ये कितना उपयोगी है?
0: मैम, वो डिपेंड करता है आप कौन से एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, बट सोशल मीडिया के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, दोनों साइड्स हैं। अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होके, अगर आपने बहुत अच्छे से अलायंस करके आपने वो चैनल सब्सक्राइब किए हैं जहाँ से आपको एजुकेशन मटेरियल मिल रहा है, तो डेफिनेटली सोशल मीडिया भी आपका एक सोर्स बन सकता है पढ़ने का। वो इंडिया के किसी भी कॉर्नर में घर पे बैठ के वीडियोस पे कोचिंग भी ऑनलाइन आ चुकी है, उससे कर सकते हैं। सोशल मीडिया के साथ बस इशू ये है कि मैम, आई थिंक उसमें बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा सोशल मीडिया का यूज आपको बहुत ज्यादा लिमिटेड वे में करना चाहिए, और अगर आप कर भी रहे हैं तो ऐसे करना चाहिए कि आपका सारा मटेरियल स्पेशली पढ़ाई रिलेटेड मेनली हो। मैंने पर्सनली सोशल मीडिया काफी टाइम तक अपना डीएक्टिवेटेड रखा था, लेकिन मैं बीच बीच में मैं देखता था तो मेरे को नए, मैं काफी सारे न्यूज चैनल्स के मैंने सब्सक्राइब किया था तो मुझे पता चलता रहता था, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज न्यूज़पेपर से भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, आपके पास बुक्स हैं और वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। तो सोशल मीडिया आपका अच्छा सोर्स है, बट आपको डिस्ट्रैक्शंस को फिल्टर आउट करना है।
1: जी, क्या कोई ऐसी असफलता या गलती थी जिसने सबसे बड़ा सबक आपको सिखाया हो?
0: मैम, यूपीएससी सिविल सर्विसेज अभी जो मैंने दिया उसमें मेरे साथ जब इसका मेंस की परीक्षा होती है जिसमें 9 पेपर होते हैं, तो उसमें मेरा लॉ का ऑप्शनल था और उसमें एक पेपर में मैं थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया तो 1-2 सवाल मेरे छूटे, जो कि कहते हैं कि मेंस में बहुत बड़ा ब्लंडर होता है कोई भी क्वेश्चन छोड़ना। तो मेरे को काफी उस समय मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया खुद से और मुझे लगा कि मेरा नहीं होगा मेंस क्लियर, कि मैंने तो 2 क्वेश्चन छोड़ ही दिए हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने जो सबसे बड़ी सीख सीखी है, जो मेरा फेलियर नहीं बोलूंगा मैं उस समय, बट परसीव्ड फेलियर जो मेरा था, उससे मैंने ये सीखी है कि किसी भी चीज को, आपकी लाइफ में कुछ भी है उसके ऊपर ऑब्सेस्ड नहीं होना है, उस पर आप पूरा एफर्ट मारो, आप जितना कर सकते हो करो, लेकिन आपके कंट्रोल में जितना है आप सिर्फ उतना ही करो। मतलब बोलते हैं कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो आपके हाथ में है सिर्फ वही आपके हाथ में, अपना कर्म करो, उसके बाद रिजल्ट्स, बाकी सब कुछ भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता।
1: जी, तो क्या कोई किताब, शिक्षक या व्यक्तित्व है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया?
0: मैम, एक बहुत फेमस बुक है, उसका नाम है मेडिटेशंस, वो लिखी है मार्कस ऑरेलियस ने, जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे, बहुत पुरानी किताब है, स्टोइसिज्म फिलोसफी पे है, फिलोसफिकल बुक है। अगर आप उसके चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको बेसिकली लाइफ लेसंस बहुत सारे दिए हैं। तो उसको वैसे भी दुनिया की बहुत इन्फ्लुएंशियल बुक मानते हैं, तो अगर जिसने नहीं पढ़ी है मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशन, उसको एक बार पढ़नी चाहिए।
1: अच्छा वर्णन उसमें मिलेगा। और एक भावी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप युवाओं के लिए क्या बदलाव देखना चाहते हैं?
0: मैम, स्पेशली जो मेरी एज के लोग हैं, मेरी उम्र अभी 23 साल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी उम्र वाले, जिनको आप जेन ज़ीज़ बोलते हैं, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक तो वो सोशल मीडिया में एक्टिव होना प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम यह है कि जब आप अपनी पूरी लाइफ फोन को बना लो, इशू ये है कि आप जब भी रील्स या फिर जितना भी ट्रेंड चल रहा है आजकल, उसमें जब आप बहुत ज्यादा घुस जाते हो तो जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं वो आपकी एल्गोरिदम को पकड़ लेता है और वो आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं, और उसके कारण आप बहुत ज्यादा समय अपना वहां व्यतीत कर देते हैं। अभी वाला जो यूथ है उनके पास पेशेंस नहीं है, अब क्योंकि उनपे पेशेंस नहीं है, उनको इंस्टेंट सब कुछ चाहिए, अब तो उनको लगता है कि वो सब चीजें उनके पास इमीडिएटली आनी चाहिए, बट सक्सेस जो है मेरे को लगता है वो टाइम लेता है, उसके लिए पेशेंस इंपॉर्टेंट है और वो अपने समय से ही आता है, क्योंकि यूथ इसीलिए बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता है कि उनको इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते, और इसके कारण से बहुत सारे इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज आप देख रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह बहुत ज्यादा राइज हो रही है। तो आई थिंक यूथ को मैं यही बोलूंगा कि आप अपने फोन से थोड़ा बाहर देखिए दुनिया को, दुनिया बहुत सुंदर है, दुनिया बहुत बड़ी है, लोगों से बात करें, स्पेशली जो आपके बड़े हैं उनसे बात करें, जब उनके समय फोन नहीं हुआ करते थे वो कैसे रहते थे, उनसे आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है और इतनी उम्र के बाद पहुंचे किसी मुकाम पे। तो सक्सेस अपना समय लेती है और इसके लिए आपको पेशेंट रहना पड़ेगा।
1: अगर आपको अपने ही क्षेत्र में सेवा करने का अवसर मिले तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी?
0: मैं, मेरे से यही क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं, तो हमेशा से मेरे को ऐसा लगता है कि 2 जगहें हैं, 2 चीजें हैं जहां से इंडिया, पूरे भारत को बदला जा सकता है। पहली है प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंड है प्राइमरी हेल्थ केयर। मैंने देखा है थ्रू आउट इंडिया, अगर आप देखेंगे कहीं पे भी, प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत वीक है इंडिया का, प्राइमरी एजुकेशन भी बहुत वीक है। इंडिया के जो टॉप सिटीज हैं, आप अगर बॉम्बे दिल्ली लोगे तो आपको वहां पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मतलब स्कूल्स, एजुकेशन सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप थोड़ा सा गांव की तरफ जाइए और आपको रियलाइज होगा कि जो डिस्पेंसरीज

0: हैं, लोकल जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहां पे आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, वहां पे आप पूरे गांव से लोग 3-4 गांव ट्रैवल करके जाएंगे तब जाके उन्हें एक डॉक्टर मिल पाएगा, और तब तक उनकी हेल्थ केयर का जो भी उनको क्राइसिस इमरजेंसी है उसका कोई पॉइंट नहीं रहेगा, इट लीड्स टू बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी ऑल्सो। तो मैं मुझे लगता है प्राइमरी हेल्थ केयर इज समथिंग जहां एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आता हूँ तो आई विल वर्क देयर डेफिनेटली। और प्राइमरी एजुकेशन अगेन, मैम इंडिया में सबसे बड़ा इशू ये है कि बोलते हैं कि लिटरेसी बहुत ज्यादा हाई हो रही है धीरे धीरे, बट लिटरेसी की जो डेफिनेशन है बहुत लिमिटेड है, सिर्फ आपको अपना नाम लिखने आना चाहिए, दैट्स लिटरेसी। बट अगर आप गांव में अगेन फिर से जाएंगे, हिमाचल फिर भी उसमें बहुत अच्छा कर रहा है हेल्थ केयर और एजुकेशन में, बट स्टिल मुझे लगता है काफी उसको और बढ़ा सकते हैं, उसका चैनल बढ़ा सकते हैं, स्कूल्स का चैनल बढ़ा सकते हैं। काफी ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे एक भी टीचर नहीं है, एक टीचर है जो 200 बच्चों को पढ़ा रहा है। और ऑल्सो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी जो फैसिलिटीज हैं वो हमें पब्लिक हेल्थ केयर और पब्लिक एजुकेशन में लानी चाहिए। उसके लिए आई थिंक अगर इफ आई हैव दैट इन्फ्लुएंस एंड दैट कंट्रोल, तो मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग टू GDP रेशियो है इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन उसको बढ़ाए। क्योंकि एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि एक कैपेबिलिटी अप्रोच करके एक अप्रोच है जो कि एक इकोनॉमिस्ट है बहुत फेमस, उन्होंने दी थी। वो कहता है कि अगर आप हेल्थ केयर और एजुकेशन का ध्यान रख लोगे तो जो यूथ है वो खुद अपना ध्यान रख लेगा, वो खुद डेवलपमेंट करेगा और उसी से विकसित भारत बाय 2047 हो पाएगा। तो दिस इज समथिंग आई वांट टू।
1: बहुत अच्छी सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और आज के युवाओं में आपको सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौती क्या दिखाई देती है?
0: मैम सबसे बड़ी ताकत मेरे हिसाब से है कि जो आज के युवा हैं वो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं और उन लोगों को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे वर्ल्ड चल रहा है। अगले 30 साल में हम ये देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी डोमिनेट करेगी। आप देख रहे हैं AI का दौर चल रहा है, तो जो युवा है उसके पास टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझ है चीजों की, उसका अगर हम बहुत अच्छे से लेवरेज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, तो इंडिया अपनी उस टेक्नोलॉजिकल जो भी उसका डेवलपमेंट है उसके ऊपर लेवरेज करके बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी बन सकता है। हमने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1,00,000 करोड़ का एक सेटअप करा है फॉर AI इंडिया मिशन। तो इसलिए आई थिंक यूथ में ये पावर है। उनका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो अगेन दो चीजें हैं। पहला ये कि वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, इसी टेक्नोलॉजी ने उनको धकेल भी दिया है पीछे बिकॉज उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन उन्हें नहीं आ रहा। और दूसरा मैम ये है कि नशे और जो भी डिस्ट्रैक्शन, स्पेशली नशे वगैरह की और जो भी हो रहे हैं उसके कारण युवा अपने सबसे इंपॉर्टेंट ईयर्स को वेस्ट कर रहे हैं। और क्योंकि वो वेस्ट हो रहे हैं तो उनको लगता है कि वो सिर्फ उनको अफेक्ट करेगा या उनकी फैमिली को करेगा, बट अगर आप लार्जर इमेज देखेंगे इसकी तो इंडिया अब सबसे ज्यादा रिलाई कर रहा है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड पे जो कि इसकी यूथ पॉपुलेशन है आगे ग्रो करने के लिए, तो वो इवन इंडिया की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा है।
1: बिल्कुल। और आदित्य जी जानना चाहेंगे कि पढ़ाई के बीच जब ज्यादा तनाव हो जाता था तब आप खुद को कैसे फ्रेश करते थे, कैसे तरोताजा रखते थे?
0: मैम मेरी कुछ हॉबीज हैं जो कि मुझे हमेशा रिफ्रेश रखती थी पढ़ाई के बीच में। एंड उस समय मैं कॉलेज, तो मैंने कॉलेज से अपनी सारी प्रिपरेशन करी है, तो कॉलेज में जब एक बार मेरे नंबर ऑफ आवर्स जो मेरे को पुट इन करने हैं, नंबर ऑफ मेरी जो टारगेट्स हैं वो फुलफिल हो जाते थे दिन के, तो मैं अपने दोस्तों के साथ जाता था, चाय पियेंगे, उस पर बात करेंगे, डिस्कशंस होंगी, थोड़ा घूम के आ जाएंगे उससे। और साथ में मैं गाना गाता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं थोड़ा गिटार वगैरह बजा लेता हूँ, फोटोग्राफी का मेरे को शौक है रिसेंटली, तो ये सारी चीजें मेरे को डिस्ट्रैक्टेड रखती थी, डिस्ट्रैक्टेड इन द सेंस मेरे को मेरा थोड़ा मूड लाइटन अप कर देती थी।
1: आपने गाने की बात कही तो कुछ गुनगुनाना चाहेंगे, कोई ऐसा नगमा जो आपके दिल के बहुत करीब हो?
0: एकदम आपको सुनाते हैं हम, मैम लग जा गले है तो वो मुझे काफी अच्छा लगता है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ।

0: वाला
1: बहुत
0: सॉन्ग।
1: उम्दा आपने गाया और बहुत दिल से आपने गाया, और इससे पता लगता है कि आप संगीत से कितना प्रेम करते हैं। और आखिरी सवाल आपसे कि जो युवा अभी बार बार असफलता का सामना कर रहे हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी?
0: मैम, मुझे ऐसा लगता है कि जो सक्सेस है वो हमेशा

0: फेलियर्स के बाद आता है, क्योंकि आपको हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट से चलना है लाइफ में, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें हर मोमेंट पे हर समय हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हमें लगता है कि हमसे कुछ नहीं हो पाया तो वो एंड है लाइफ का, बट क्या पता कोई चीज आपके लिए उससे भी अच्छी रही हो। तो जैसे एक बोलते हैं कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और अच्छा, क्योंकि फिर वो खुदा का होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा अगर आपके मन का कुछ नहीं हो रहा है, अगर आप बार बार फेलियर्स का सामना कर रहे हैं, तो आप बस ये समझ लीजिए कि भगवान आपको टेस्ट कर रहा है और आपकी पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, और बिकॉज वो पेशेंस को टेस्ट कर रहा है तो ऑफकोर्स वो आपको और कुछ बड़ी चीज देना चाहता है लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस और परसिवरेंस, आपको टिके रहना है, और साथ में आप में एक रेजिलियंस होना चाहिए कि छोटे छोटे तूफान आपको उड़ा ना सकें। आप हमेशा ग्राउंडेड रहो। जैसे एक पेड़ होता है, उसके जो रूट्स होते हैं वो नीचे तक होते हैं, तो तूफान अगर आता है तो वो पेड़ थोड़ा सा हिलेगा बट वो वापस वैसा बन जाता है। तो आपको बिल्कुल वैसा बनना है। जब भी आपको फेलियर फील हो, एक बार स्माइल कर दो और खुद को बोलो कि चलो एक्सपीरियंस हो गया, तो जस्ट मूव ऑन देन।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थे यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले आदित्य धीमान की प्रेरणादायक कहानी। उनकी ये सफलता हमें बताती है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत निरंतर हो और हौसले मजबूत हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। आदित्य जी, एक बार फिर आपको उज्ज्वल भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं, और युवा मंच कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे युवा आदित्य धीमान की कहानी, उनकी जुबानी।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
2: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
1: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
1: वो कैसे?
2: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
1: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
2: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
1: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
2: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
1: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
2: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
3: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी।

शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरमई सांझ। 6:30 पर आप सुनेंगे किसान बागवान भाई बहनों का कार्यक्रम मौजा गराइंदियां, जिसमें बातचीत का विषय रहेगा मधुमक्खी पालन। खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनेगा शाम 7:10 पर। रात्रि 8 का समय रहेगा विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का, और 8:30 पर आप सुनेंगे देशगान। रात्रि 9:15 पर सुनेगा कार्यक्रम एक ही संगीतकार, जिसमें संगीतकार अमित कुमार के संगीतबद्ध किए कुछ नगमे सुनवाए जाएंगे।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पहाड़ों की गूंज और रात्रि 10 सुनेगा सजीव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से शाम 6:07 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या 9 News@9, रात्रि 11 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:58 होने को है। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
3: आरबीआई कहता है
4: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला से मंडी चंडीगढ़ और कुल्लू मंडी चंडीगढ़ के बीच प्रतिदिन चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। मंडी चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर सेवा केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत संचालित की जाएगी, जबकि कुल्लू मंडी चंडीगढ़ के लिए हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गैर आरसीएस मॉडल के अंतर्गत इस सेवा का संचालन किया जाएगा। ये सेवाएं नवनिर्मित कंगनीधार हेलीपोर्ट से संचालित होंगी। मंडी चंडीगढ़ सेक्टर के लिए किराया 3,500 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि कुल्लू मंडी चंडीगढ़ के लिए 8,500 रुपये किराया तय किया गया है। इस अवसर पर मंडी और कुल्लू जिलों के लोगों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई संपर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत के साथ हवाई संपर्क के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सेवाओं से यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी, आपातकालीन सेवाओं की क्षमता मजबूत होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलने सहित स्थानीय निवासियों व पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
1: मंडी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंडी के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि मंडी से चंडीगढ़ की डायरेक्ट फ्लाइट आपको हेलीकॉप्टर के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। निश्चित रूप से एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। हमारा ये प्रयास है कि सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमारे हेलीपोर्ट्स बने। अभी ये डेली फ्लाइट होगी तो धीरे धीरे कुछ समय में 5-7 सालों में आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर हेलीकॉप्टर्स उड़ा करेंगे और आपको आए दिन 2-2 घंटे बाद आपको फ्लाइट की सर्विसेज उपलब्ध होगी।
0: प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने कहा है कि हमीरपुर जिला परिषद में भाजपा समर्थित सदस्यों की प्रचंड जीत प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता के आक्रोश का स्पष्ट संदेश है। एक बयान में उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श, आपसी तालमेल और सर्वसम्मति से लिया गया है। राजेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया है कि संगठन सर्वोपरि की भावना के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक निर्णय सामूहिक सहमति और संगठनात्मक अनुशासन के आधार पर लेती है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद चुनावों का ये परिणाम केवल एक ट्रेलर है, जबकि वास्तविक तस्वीर 2027 के विधानसभा चुनाव में सामने आएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव

0: और संगठन की मजबूती के लिए आपसी तालमेल से कार्य करने का आह्वान किया है। रजनी पाटिल की अध्यक्षता में शिमला में कांग्रेस की 3 दिनों तक मंथन बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठन विस्तार अभियान व पार्टी के सदस्यता अभियान को तय समय सीमा में पूरा करने को कहा गया है।
1: लोगों के कुछ गिले शिकवे थे, हमारी बात नहीं मानी जाती है, जो भी कुछ है उसको हम सब सीएम के सामने बैठ के सबसे बात करवाई, सब मंत्रियों को बोला तो वो हमने सबसे बात। अभी धीरे धीरे हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, हमारे सब कमिटीज बन रही है और एक बार पूरा हो जाएगा तो हम सरकार के साथ उसका तालमेल रखेंगे और सरकार के साथ मिलकर सब काम करेंगे। अनुशासन तो संगठन में होना चाहिए।
0: रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में एक कनेक्ट सेंटर स्थापित किया गया है जो सीधे AICC को रिपोर्ट करेगा। कांगड़ा जिला के पर्यटन स्थलों में इस वर्ष पर्यटकों की आमद में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक विनय धीमान ने बताया कि अप्रैल में करीब 95,000 देशी जबकि 4,600 विदेशी पर्यटक जिले के पर्यटन स्थलों पर पहुंचे, वहीं मई में करीब 1,26,000 देशी और 3,500 विदेशी पर्यटकों ने जिले का रुख किया। विनय धीमान ने बताया कि पर्यटन क्षेत्र की ये तेज रफ्तार जिले की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती देगी।
2: बार 2026 में अब तक के जो आंकड़े हैं वो बहुत ही इनकरेजिंग है। अगर मैं कंपैरिजन करूं लास्ट ईयर से तो इस बार ऑलमोस्ट डबल टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे डोमेस्टिक रिपोर्ट हुआ है। उसी तरीके से फॉरेन जो टूरिस्ट है वो 2025 में 1750 था, जो इस बार बढ़कर के 3500 के आसपास हुआ है। ओवरऑल जो है वो इम्पैक्ट टूरिज्म इंडस्ट्री पे पॉजिटिव रहा है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से?
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
4: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
6: क्या हुआ अबू?
3: बेटा ये कह रहे कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
3: काट दिया।
6: कोई डर खौफ ना करें अबू, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI वगैरह के नाम से आने वाले साइबर मुजरिमों के फोन या वीडियो कॉल से होशियार रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें, बल्कि फौरन पुलिस में शिकायत करें। अगर समझदारी नहीं दिखाएंगे
3: तो पैसे गवाओगे,
7: RBI कहता है।
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:06 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमई सांझ। कार्यक्रम सुरमई सांझ में सभी श्रोताओं का स्वागत, और हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ फिल्मी तराने। तो पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और मनहर उदास का गाया, और फिल्म है प्रोफेसर प्यारेलाल। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दो रास्ते से, और जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लता मंगेशकर को अभी आप सुन रही थी फिल्म तुम्हारी कसम में।
1: सीमा, सुना है तुम चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, सब ठीक है ना?
2: हाँ बिल्कुल, डॉक्टर ने गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच भी करवाई। ये तीनों जांच क्यों जरूरी है? अगर समय पर पता चल जाए तो इलाज और सही देखभाल से इन संक्रमणों को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है। और हाँ, ये जांच गोपनीय और निःशुल्क होती है। फिर तो मैं भी चेकअप में ये तीनों जांच जरूर करवाऊंगी। बिल्कुल, याद रखो, समय पर जांच, स्वस्थ माँ और सुरक्षित शिशु की पहचान।
3: गर्भावस्था की पहली तिमाही में HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी की जांच आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों का भविष्य स्वस्थ हो। ट्रिपल एलिमिनेशन की ओर बढ़ाए कदम, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और संक्रमण मुक्त भविष्य। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश की ओर से जनहित में जारी।

लता मंगेशकर की आवाज़ में गए अग्नि परीक्षा फिल्म के गीत के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

आप सुन रही थी कार्यक्रम सुरमई सांझ। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां।

कार्यक्रम मौजां ग्रांदियां च सारियां श्रोतियां दा सारियां किसान भाई बहना दा जेड़ा से स्वागत कन्नै राम राम जी। अज दे कार्यक्रम च मैं तुहां कन्नै गलबात करनी है ता मैं तुहां दी सखी तुहां दी सहेली जेड़ी है से पूनम जेड़ी है से सारे श्रोतियां दा इस कार्यक्रम च स्वागत करदी है। ता श्रोतियों जियां कि तुहें लगदा है कि किसान भाइयों की बरखा जेड़ी है से अहां दे धर्मशाला दे क्षेत्र दे आस पास जेड़ी है सहता खूब होआ दी है। कन्नै मिंजे लगा दा कि जियां कि मौसम दा पूर्वानुमान च ए दस्या भी है कि बरखा जेड़ी है से रुकी रुकी के होंदी रहनी है। तां अहां दे किसान मित्र जेड़े न से अपने खेतां दा रुख करी चुके हो। कन्नै अहां आंदे आंदे में स्टूडियो वखे जल होआ दी तां मैं दिखिया था कि कुछ अहां दे किसान भाई भैणा जेड़े हन से कि दाने दे ऊरे भी लगा दे थे। कन्नै बड़े खुश भी लगे थे क्योंकि बरखा जेड़ी है से काफ़ी मात्रा च होआ दी है। कन्नै एक गल हाँ और भी गलाना चाहेंगी कि धर्मशाला दे क्षेत्र दे आस पास च तां बरखा होआ दी। कन्नै अहां उम्मीद करदे न कि असा दे सारे किसान भाई भैणां दे जेड़े खेत खलिहान हैं जेड़े मैदानी इलाकें च भी हैं कन्नै होर कुत्थी भी हैं तिथु भी खूब खूब बदल जेड़े न सै बरसन कन्नै तिन्हां दियां फसलां जेड़ियां सै बड़ियां अच्छियां होन कन्नै लहलहांदियां होन। तां किसान साथियो जियां कि तुहां जानदे न कि बरसात तां उतरी पई होए कन्नै पिछले दो तीन दिनां ते बरखा तां होआ ही करदी है।

अहां दे कुछ जिहड़े भाई बहिणां च है पहाड़ां दा रुख भी करा दे घूमने फिरने वास्ते भी इत्थों आउंदे, क्योंकि तुहां सारे जानदे हन कि अहां दा हिमाचल तां है ही बड़ा छैल बांका, कने इत्थों जिहड़े अहां दे नदी नाले बगा दे, कने जिहड़े अहां दे हरे हरे मैदान हन, कने जिहड़े अहां दे पहाड़ हन, तिन्हां दिखने वास्ते दूरे दूरे ते जिहड़े अहां दे पर्यटक हन से आउंदे। पर इन्हां पर्यटकां कने इन्हां लोकां कने इक गल जिहड़ी से तुहां अहां हाथ जोड़ी के गलाना चाहांगे कि अजकल वर्खा दे कारण जिहड़े से नदी नालियां च पानी जिहड़ा सा इकदम उपर आई जांदा, तां तुहां इक्की गल्लां दा जिहड़ा सा बड़ा खास ध्यान रखना है कि नदी नालियां बखे बिल्कुल नहीं जाना है, कने अपने आपे जो सुरक्षित रखना है। कने अज दे कार्यक्रम च साथ साथ अहां गल करनी है इक और विषय पर भी, कने सह विषय अहां दा मधुमक्खी पालन। तां दोस्तों, मधुमक्खी पालन सिर्फ शहद निकालने दा ही काम नहीं है, बल्कि ये असां दे किसान भाइयां दी आय जो बढ़ाने का भी एक शानदार तरीका है। यानी कि मधुमक्खी पालन जो तुसां अपनी आय का जरिया बनाई सकते, कने सब तो पहले तो तुहांदे मन च यही प्रश्न आउंदा होना कि ये जो मधुमक्खी पालन जो है कोई भी सामान्य किसान जो है इस कम में शुरू कर सकता। तजियां दोस्तों बिल्कुल सही गल है कि कोई भी किसान मित्र जो है इस कार्य जो इस कम में जो शुरू कर सकते, पर इस ताईं कुछ बुनियादी चीज़ां जो हैं सह इस्तेमाल करनिया पौंदियां ने, इस दे बारे च इस कार्यक्रम च अहां तुहां कन्ने गलबात करनी है। पर पहले सुनदे कार्यक्रम च इक प्यारा दिया मिठा दिया लोक गीत।

तां फिर किसान साथी तो हाँ मिठा दिया प्यारा दिया लोक भजन जड़ा से सुनिया कने तुहें ओ जरूर खरा भी लगा होना है। तां हाँ गल करा दे थे मधुमक्खी पालन दे बारे च। तां अपने किसान साथियों जो गल दसिंदे कि अगर तुहां मधुमक्खी पालन दा व्यवसाय शुरू करना चाहते ने इस ताई कुछ बुनियादी चीज़ा जड़ियां से तुहें इस्तेमाल करना पौनियां। इसते सबसे पहले तो तुहें ओ मधुमक्खियां पालने वास्ते विशेष बक्से जड़े से भी चाहिए होने कने चीज रखने वाले से रानी मक्खी श्रमिक रखी मक्खियां कन्ने कन्ने नर मक्खियां दा समूह जड़ा है सह भी चाहिदा होना कन्ने कन्ने हत्थां दे दस्ताने जालीदार टोपी कन्ने एक स्मोकर जड़ा ऐसा इसकी जरूरत जड़ी है सह भी यहाँ दे किसान साथियों जो पौनी है कन्ने इस गल और तुसें दसिंदे

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजें गराइंदियां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस के साथ तीसरे भारतीय ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहु माध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली में भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषीय व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषीय व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंधन संस्थाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगा। सरकार ने कहा कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ सकता है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said, "The thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India." He said the government is celebrating the 125th birth anniversary of Dr. Shyama Prasad Mukherjee with a two-year national celebration. The Prime Minister said, "This celebration began on July 6th of last year and will continue until July 6th of next year."
4: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
3: Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta in Indonesia today, beginning his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora, featuring traditional Indian and Indonesian cultural performances. This is Prime Minister Modi's fourth visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of comprehensive strategic partnership in May 2018. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral discussions with Indonesian President and review the progress made in the partnership. The Prime Minister will also travel to cultural and historic city of Yogyakarta, where he will visit the Prambanan Temple Complex. On the second leg of the visit, Mr. Modi will travel to Australia from 8th to 10th of this month. Mr. Modi will visit New Zealand on the third and last leg of his three-nation visit. The Department of Consumer Affairs has amended the Legal Metrology General Rules 2011 to substantially reduce the requirement of standard weights for the verification of high-capacity weighing instruments by introducing a scientific, repeatability-based verification approach. Under the revised provisions, the mandatory quantity of standard weights required before substitution with constant loads has been reduced from 50% of the maximum capacity to 20%, while maintaining the prescribed standards of verification accuracy and reliability. Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari today chaired a review meeting of the National Highways Logistics Management Limited and assessed the project-level progress of multimodal logistics parks, ropeways, intermodal stations, and wayside amenities being developed across the country. In Jharkhand, continuous rainfall has affected normal life in Ranchi and several other districts of the state, leading to waterlogging in many urban and rural areas. IMD has issued a yellow alert for 2 days, forecasting heavy rain, thunderstorms, lightning and strong winds with speeds of 40 to 50 kilometers per hour in several parts of the state. During the last 24 hours, the highest rainfall of 79.8 millimeters was recorded at Nimdi in Saraikela Kharsawan district, while Ranchi received 37 millimeters of rain. People have been advised to avoid unnecessary travel during adverse weather conditions and to stay in safe locations. The appeal by the people of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, or POJK, to the Indian government for assistance underscores the depth of the crisis unfolding in the region. Protests have continued across POJK for more than a month. An official said that the nature of the appeal is particularly worrying as people in POJK are seeking medicines and essential food supplies from India. This reflects the gravity of the humanitarian situation in the region. On the instructions of Field Marshal Asim Munir, the Pakistani establishment has blocked the supply of ration and medicines to the region for the past 20 days. The people are facing acute shortages of food, while those injured during the protests are being denied essential medical care. Many residents are now attempting to flee POJK and cross into India. And in FIFA World Cup, Portugal will take on Spain in a round of 16 match at Arlington in US tonight. In another round of 16 match, co-host US will face Belgium in Seattle tomorrow morning. And that is the end of this news bulletin.
0: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे किसान साथियों जो कने बाकी सुनने वाले श्रोतियां जो सैकटरी राम राम कने किसान साथियों टाले बरसात दे दिन देर उताई तुहां जो भी राम राम
1: सैकटरी जी राम राम कने कार्यक्रम किसान वाणी सुना करदे सारे ही श्रोतियां जो किसान कने बागवान साथियों जो मेरी तरफा ते भी दो हाथ जोड़े करे राम राम कने बहे असा उम्मीद करदे ने कि जितने भी साढ़े स्रोता न किसान न बागवान साथी न सह ठीक ठाक होने न जी, जी कने सेहतमंद होने कने खुशी खुशी अपनी खेती बाड़ी दे ते कने बाकी जड़े घर गृहस्थी दे काम मन सह करा करदे होने ने
0: जी बिल्कुल
1: कहना भाई दिखा अज खेती की गल कर इस वक्त जी धाना की फसल है छलियां की फसल है ना जी बाकी दालों की फसल जी असें बाही है पर दिखा भाई फसलों से पहले असा जो जलू भी बी खरीदना है तो तिसकी जी परख है तिसका जो चुनाव है इसे सही होना चाहिए ताकि असा अच्छी खेती जी इसे ले सकते
0: हैं ठीक लगा दिखा जी अगर कृषि में अच्छी उपज है प्राप्त करनी है ना तो शुरुआत जी है सही बीज के चुनाव करना ही होंगी है कने अगर किसान गुणवत्तापूर्ण कने प्रमाणित बीजा का अगर चयन करते हैं तो फसलों की अंकुरण क्षमता जी बड़ी अच्छी होंगी है पौधे भी स्वस्थ रहते हैं कने रोग कने कीटा से जो प्रकोप है सभी घट हों इस अहम जो बीज खरीदते समय जो है ना कीमत नहीं दिखना चाहिए बल्कि बीजा की गुणवत्ता पर अहम विशेष ध्यान जो देना चाहिए
1: जी कने दिखा भी जलू अह बी खरीदते हैं तो दिखा मुख्य तौर पर जोड़े बी हैं सह तिन्ह तरह के होंगे जी कि उन्नत किस्म के बी होंगे ने यह जो बी है जी साड़ी सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंसियां होंगे ने तिन्ह द्वारा तैयार किए जाते कने इन्ह की शुद्धता कने जी अनुकरण क्षमता है अंकुरण क्षमता मतलब जी इन की फुटने की उगने की क्षमता जी इसकी गरंटी जी असें एजेंसियां लैंदियां ने
0: जी बिल्कुल
1: कने सोगी हाईब्रिड बीज की गल करते हैं कने एक होर होंगे देसी बीज जो पारंपरिक साढ़े पुराने समय से चले आए न सह बी भी होंगे ने तो दिखा बई जलू भी

0: हाँ हाइब्रिड बीज लैना है या फिर देसी किस्म का बीज लैना है या उन्नत किस्म का बीज लैना है, तो असा इन्हों का चयन करने से पहले अहाँ अपने क्षेत्र की जिहड़ी जलवायु है मिट्टी है सभी दिखनी है भी साढ़े इलाके च कुण दे बीज जिहड़ा है से चली सकता
1: जी बिल्कुल
0: है ना जी। कने अगर इस दी कई बार असा नहीं समझ लगे तां असां दे किसान वैसे तो बहुत ही उन्नत तरह ने कि अपनी खेती बाड़ी करते हैं बहुत ही ज़्यादा जानकारी रखते हैं, पर कई बार जल वहाँ कोई भी नई किस्म लगानी हो तो जानकारी नहीं हो तो हाँ जोड़े साढ़े नज़दीक के कृषि केंद्र हैं है ना जी, तो उतू जाई करी अहाँ जानकारी अपनी प्राप्त करी सकते हैं कि भई साड़ी फलानी जगह घर है दे मिट्टी है कने अहाँ ये फसल लगाना चाहते क्या ये कामयाब है, अगर ये नहीं है तो इस बदले दूजी जड़ी फसल है से क्या असा लगाई सकते हैं ना
1: जी
0: जी।
1: बिल्कुल। देखा बीजा का चुनाव करते वक्त जहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ बीज जड़े से कुछ रोगों कने कीटा के प्रति भी सहनशील होंगे न, तो ये भी
0: जी
1: ध्यान रखना चाहिए कि अहाँ जल बीज लैना तो सह रोगों की सहनशीलता जी होंगी ना तो सह बीजा बीच होना चाहिए। कने कृषि विभाग या कृषि विज्ञानिकों द्वारा अनुशासित उन्नत किस्म के जो बीज होंगे सह यहाँ जो लैना चाहिए। कने जल वहाँ बीज खरीदने तो जो पैकेट बीजा का होंगे ना तो इस प्रति की वैधता बैच नंबर या अंकुरण प्रतिशत अवश्य जो है दिखना चाहिए।
0: जी कहने देखा भाई जलू जी सेक्रेटरी और अगला करते हैं कि भाई जलू बीया दे पैकेट लेंदे हैं हाँ, तो देखा तो इस पर टैग लगे होंगे ने
1: जी
0: एक नीला टैग लगे होंगे, तो ये जो नीला टैग है ये दसदा है कि बीज जड़ा से प्रमाणित है कने किसानों वास्ते एक अच्छा कने सुरक्षित जड़ा है मतलब है बीज, कने अगर तिस मतलब बैगे बार सफ़ेद या फिर हरा टैग है तो ये जड़ा है ये दर्शाता कि भाई पैकेट पर जड़ा अंकुरण प्रतिशत है से जरूर चेक करना, कने अंकुरण प्रतिशत कम से कम 75 ते 80% जड़ा से तिस च लिखे होना
1: जी
0: चाहिए है ना
1: बिल्कुल
0: जी।
1: बिल्कुल। देखा जी किसान साथियों की सफलता जी इस पहला कदम ही होंगे कि सही बीज का चुनाव किया जाए। कने अगर बीज की गुणवत्ता जी इस प्रमाणित कने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार होंगी ना तो अहें घट लागत भी अधिक उत्पादन जरा से मिल सकता है। इस तीय अहाँ के किसान साथियों बीज खरीदते वक्त पूरी सावधानी जी से बरतना चाहिए। कने आवश्यकता पड़ने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह भी जी से ले लेना चाहिए।
0: जी कने दिखा भई हुण इस जानकारी ते बाद असा चलना है मनोरंजन दी तरफ, कने शामिल करना है एक प्यारा देया लोकगीत।

0: किसान कने बागवान साथियों, इस प्यारे दे लोकगीत दे बाद अहां फिर चलना जानकारी दी तरफ। ता भई अज साढ़े ट्याले पर एक जड़े उन्नत किसान हैं, तिना कने कितियो गलबात अहां तुहां तक पहुंचानी है कि कियां से अपनी खेतीबाड़ी च काम करा करदे हैं, ता और सुनदे ने जानकारी।
1: किसान साथियों, जियां कि तुहां जानदे हैं कि कार्यक्रम किसान वाणी च अहां दा प्रयास रहिंदा कि हर दिन एक नित नई जानकारी अहां तुहां तक पहुंचाइए, चाहे वह कृषि विज्ञानिकां द्वारा दित्ती गई जानकारी होवे या फिर अहां दे उन्नत किसानां कन्ने कीती गई गलबात होवे। तहसील जुआली दे ब्लॉक नगरोटा सूरियां च कने ग्रां जिहड़ा नां है तलियाल, इत्थों मेरे कन्ने एक उन्नत किसान जिहड़े से जुड़ा करदे हैं, उह करदे ने इहनां कन्ने गलबात। राम राम जी।
2: राम राम जी।
1: जी अपना नाम दसा।
2: मेरा नाम है राकेश कुमार राणा।
1: जी राकेश जी, ता राकेश जी खेती बाड़ी करते तो? हाँ
2: हाँ जी हाँ जी।
1: अच्छा, कितना के अरसा हुई है खेती करते?
2: असा 2016 च शुरू किया था नेचुरल फार्मिंग दे कॉन्सेप्ट पर काम करना।
1: अच्छा,
2: तो असा शुरुआत की थी हल्दी कने एलोवेरा करने।
1: हाँ जी।
2: साड़ा मुख्य उद्देश्य था कि छोटे किसान कने मंझली जोत आले किसान जेड़े है ना,
1: हाँ जी,
2: सक ऐसियां क्या चीजां उगाइए ताकि किसान मार्केट कने जुड़ी सके।
1: जी जी हाँ जी।
2: क्या उत्पाद होना चाहिए साड़ियां जमीना चाहां, क्या चीजां उगाइए?
1: हाँ जी।
2: ताकि तिना दी यहां प्रोसेसिंग कने पैकेजिंग भी करिए, कने हां सीधे मार्केट च तिना चीजें पहुंचाइए ताकि किसान मार्केट कने जोड़न कने किसान ने फायदा हो।
1: अच्छा,
2: तो असा 2016 च शुरू किया था हल्दी कने।
1: अच्छा,
2: तो हाँ हल्दी दियाँ अलग अलग किस्म लगाइया, तो इस असा फिर प्रोसेसिंग भी स्टार्ट की, पैकेजिंग भी स्टार्ट की।
1: हाँ जी।
2: फिर यहाँ 5-6 प्रोडक्ट लेके मार्केट चाहे।
1: अच्छा,
2: तो मार्केट चो साड़ी जड़ी क्वालिटी थी से अहाँ जमीना दे ले के पैकेजिंग तक मेंटेन रखी।
1: हाँ जी।
2: तो इस करके सो अच्छे रिजल्ट मिले, कने हाँ हौला हौला इस कमे बधा देना, कन्या हाँ उसके बाद एलोवेरा भी स्टार्ट किया जमीना लगा।
1: राकेश जी, जी तुम दसिया ना कि हल्दी पर तुम काम शुरू किया।
2: हाँ जी।
1: ये हल्दी कौन, इसकी कोई किस्म है कोई हल्दी दी?
2: हाँ जी, असा 5 किस्म ही हल्दी पर काम करा दे।
1: अच्छा,
2: इस एक साड़ा प्राचीन बीज था जेड़ा साड़े दादा दादी दे टाइम दा बीज हुंदा था।
1: हाँ जी।
2: जिस हाइब्रिडाइजेशन नहीं थी।
1: अच्छा,
2: बिल्कुल प्योर देसी बीज था।
1: हाँ जी।
2: दूजा बीज अहा एक ट्रायल लिया था प्रगति किस्म दी हल्दी पर।
1: अच्छा।
2: तीजा हाँ ब्लैक टर्मरिक पर भी ट्रायल लै दे।
1: हाँ जी।
2: कना एक बीज था से भी बड़ा रेयर मिलता है, से बीज था कस्तूरी मंजल।
1: अच्छा,
2: तो कुछ बीज जड़े हैं ना सह असा पाउडर बनाई के

0: इस प्यारे दे लोक भजन कने साढ़े कार्यक्रम किसान वाणी दा समय इत्थों ही मुका करदा। जाने ते पहले दस दईए कार्यक्रम प्रस्तुति जितेंद्र पाल सिंह होरां दी कने हुण अपने टियाले दे साथी देरोताई कने
1: सैकटरी उदयाजत
0: अच्छा जी जय हिंद।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:42 हुए हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: नौ आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी चंडीगढ़ और कुल्लू मंडी चंडीगढ़ के बीच प्रतिदिन चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं का किया शुभारंभ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, जनता की सुविधा से ज्यादा अपनी राजनीति को प्राथमिकता दे रही है सुक्खू सरकार। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती के लिए आपसी तालमेल व अनुशासन से कार्य करने का किया आह्वान। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए नियमित जागरूकता अभियान चलाए जाने पर दिया बल। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी। आगामी 24 घंटों के दौरान मंडी, कांगड़ा, शिमला व सोलन जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से मंडी चंडीगढ़ और कुल्लू मंडी चंडीगढ़ के बीच प्रतिदिन चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। मंडी चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर सेवा केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत संचालित की जाएगी, जबकि कुल्लू मंडी चंडीगढ़ के लिए हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गैर आरसीएस मॉडल के अंतर्गत इस सेवा का संचालन किया जाएगा। ये सेवाएं नवनिर्मित कंगनीधार हेलीपोर्ट से संचालित होंगी। मंडी चंडीगढ़ सेक्टर के लिए किराया 3,500 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि कुल्लू मंडी चंडीगढ़ के लिए 8,500 रुपये किराया तय किया गया है। इस अवसर पर मंडी और कुल्लू जिलों के लोगों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई संपर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत के साथ हवाई संपर्क के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सेवाओं से यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी, आपातकालीन सेवाओं की क्षमता मजबूत होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलने सहित स्थानीय निवासियों व पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिलेगी।
1: मंडी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंडी के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि मंडी से चंडीगढ़ की डायरेक्ट फ्लाइट आपको हेलीकॉप्टर के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है। निश्चित रूप से एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। हमारा ये प्रयास है कि सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमारे हेलीपोर्ट्स बने। अभी ये डेली फ्लाइट्स होगी तो धीरे धीरे कुछ समय में 5-7 सालों में आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के ऊपर हेलीकॉप्टर्स उड़ा करेंगे और आपको आए दिन 2-2 घंटे बाद आपको फ्लाइट की सर्विसेज उपलब्ध होगी।
0: पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार जनता की सुविधा से ज्यादा अपनी राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के देवरी में स्कूल का बहुमंजिला भवन पिछले 7 महीनों से तैयार है, लेकिन वहां पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चे आज भी 2 नालों के बीच किराए के 4 कमरों में 7 कक्षाएं लगाने को मजबूर हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस स्कूल भवन पर शिक्षा मंत्री के नाम की उद्घाटन पट्टिका भी लग चुकी थी, जिसे उखड़वा दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में एक शिक्षा मंत्री स्कूल भवन का भी उद्घाटन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर विपक्षी विधायकों की अनदेखी करने और प्रदेश में 2000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का भी आरोप लगाया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव और संगठन की मजबूती के लिए आपसी तालमेल व अनुशासन से कार्य करने का आह्वान किया है। रजनी पाटिल की अध्यक्षता में शिमला में कांग्रेस की 3 दिनों तक मंथन बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने प्रदेश में संगठन विस्तार अभियान व पार्टी के सदस्यता अभियान को तय समय सीमा में पूरा करने को भी कहा है।
2: लोगों के कुछ गिले शिकवे थे, हमारी बात नहीं मानी जाती है, जो भी कुछ है उसको हम सब सीएम के सामने बैठ के सबसे बात करवाई, सब मंत्रियों को बोला तो वो हमने सबसे बात। अभी धीरे धीरे हमारे वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, हमारे सब कमिटीज बन रही है और एक बार पूरा हो जाएगा तो हम सरकार के साथ उसका तालमेल रखेंगे और सरकार के साथ मिलकर सब काम करेंगे। अनुशासन तो संगठन में होना चाहिए।
0: रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में एक कनेक्ट सेंटर स्थापित किया गया है, जो सीधे AICC को रिपोर्ट करेगा। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिला में कल्पा विकासखंड की सांगला घाटी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शोंग में निर्मित बास्केटबॉल कोर्ट और आंगनबाड़ी केंद्र बानो शोंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार गुणात्मक शिक्षा के सुधार के लिए व्यापक कदम उठा रही है और राज्य में 150 सरकारी स्कूलों में CBSE पैटर्न के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने हिमुडा को प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही और प्रस्तावित सभी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज हिमुडा के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने को कहा ताकि लोगों को गुणवत्तापूर्ण आवास और बेहतर शहरी सुविधाओं का लाभ जल्द सुनिश्चित किया जा सके। राजेश धर्माणी ने कहा कि सुनियोजित भूमि अधिग्रहण से आने वाले वर्षों में हिमुडा की योजनाबद्ध विकास परियोजनाओं को और मजबूती मिलेगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई है। उन्होंने आज तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के जन्म दिवस के अवसर पर छोटा शिमला स्थित तिब्बतीयन स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विक्रमादित्य सिंह ने शिक्षकों से विद्यार्थियों को नशे जैसी बुराई से दूर रखने के लिए नियमित तौर पर जागरूकता अभियान चलाने का आग्रह किया। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए सड़कों और आधारभूत ढांचे का निर्माण आवश्यक है, लेकिन कोई भी विकास कार्य पर्यावरण की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बसंतपुर का दौरा किया और स्थानीय लोगों की सभी उचित मांगों को चरणबद्ध ढंग से पूरा करने का आश्वासन दिया। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने कहा है कि हमीरपुर जिला परिषद में भाजपा समर्थित सदस्यों की प्रचंड जीत प्रदेश की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता के आक्रोश का स्पष्ट संदेश है। एक बयान में उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श, आपसी तालमेल और सर्वसम्मति से लिया गया है। राजेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया है कि संगठन सर्वोपरि की भावना के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक निर्णय सामूहिक सहमति और संगठनात्मक अनुशासन के आधार पर लेता है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद चुनावों का ये परिणाम केवल एक ट्रेलर है, जबकि वास्तविक तस्वीर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में सामने आएगी। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी की शौर पंचायत में पिछले 2 महीनों से रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति ठप है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शौर पंचायत के उप प्रधान निहाल सिंह भारद्वाज ने पांगी प्रशासन से पंचायत में जल्द से जल्द रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति करने की मांग की है ताकि लोगों को राहत मिल सके।
3: मैं निहाल सिंह भारद्वाज जो प्रधान ग्राम पंचायत शाहौर तहसील पांगी, तो हमारे ग्राम पंचायत शाहौर में 2 महीनों से सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही, जिसके कारण घाटी में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। मेरा पांगी प्रशासन और हिमाचल सरकार से मेरा दो हाथ जोड़कर निवेदन है कि घाटी में सिलेंडर की आपूर्ति की जाए ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े।
0: प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम जबकि कई स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान कांगड़ा, मंडी, शिमला व सोलन जिले में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जबकि बिलासपुर, हमीरपुर और कुल्लू जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए संबंधित जिला प्रशासन ने लोगों को नदी नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी है। प्रदेश भाजपा सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश विशेषकर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अभूतपूर्व सहयोग दिया है। वे आज धर्मशाला में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत आयोजित प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित कर रहे थे। संजय टंडन ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को विकास, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में ऐतिहासिक सौगातें दी हैं, लेकिन प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार इन संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने में पूरी तरह विफल रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी चंडीगढ़ और कुल्लू मंडी चंडीगढ़ के बीच प्रतिदिन चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं का किया शुभारंभ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, जनता की सुविधा से ज्यादा अपनी राजनीति को प्राथमिकता दे रही सुक्खू सरकार। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन की मजबूती के लिए आपसी तालमेल व अनुशासन से कार्य करने का किया आह्वान। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए नियमित जागरूकता अभियान चलाए जाने पर दिया बल। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी, आगामी 24 घंटों के दौरान मंडी, कांगड़ा, शिमला व सोलन जिले में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
5: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
4: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
5: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
4: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
5: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: प्रादेशिक समाचार अभी आप आकाशवाणी के शिमला, हमीरपुर, धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच तथा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब रोजगार समाचार सुनिए। बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय अंब के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के खाली पदों को भरने हेतु 18 से 35 वर्ष की पात्र महिला उम्मीदवारों से सादे कागज पर दिनांक 10 जुलाई 2026 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों को भरने हेतु आवश्यक योग्यताएं इस प्रकार से हैं। अभ्यर्थी संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के लाभान्वित परिक्षेत्र अर्थात फीडिंग एरिया का सामान्य निवासी होना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10:2 पास होना अनिवार्य है। विज्ञापन की अंतिम तिथि तक प्रार्थी की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये

0: से अधिक नहीं होनी चाहिए और ये प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार अथवा तहसीलदार या कार्यकारी मैजिस्ट्रेट अधिकारी द्वारा प्रमाणित अथवा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र सादे कागज पर बाल विकास परियोजना अधिकारी अंब के कार्यालय में दिनांक 10 जुलाई 2026 तक शाम 5 बजे तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। इसके बाद किसी भी आवेदक से आवेदन अथवा दस्तावेज प्राप्त नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवारों को साक्षात्कार वाले दिन दिनांक 15 जुलाई 2026 को प्रातः 10 बजे समस्त मूल दस्तावेजों सहित बाल विकास परियोजना अधिकारी अंब के कार्यालय में उपस्थित होना है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2026 है। रोजगार समाचार समाप्त हुए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 MHz पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

सबरस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में गाई इस गजल के साथ।

0: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
1: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
0: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत हैं देशभक्ति गीत।

देश का नाम सुन रही थी आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 9 अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुँचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
4: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
5: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
6: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
7: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
8: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच IMD ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसे ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight. Prime Minister Narendra Modi arrived in Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated the relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A report from a correspondent from Jakarta covering Prime Minister's visit.
10: A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances were organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. Members of the Indian diaspora also greeted him enthusiastically. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. The discussions are expected to focus on strengthening cooperation in trade, investment, defense, maritime security, digital technology and cultural exchanges, further reinforcing the comprehensive strategic partnership between India and Indonesia. Speaking to Akashvani, members of the Indian diaspora expressed excitement over the Prime Minister's visit and voiced confidence that it would further strengthen bilateral ties and create new opportunities for trade and investment. Shondipan Dasgupta, Jakarta, Indonesia.
9: Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of the 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
9: द प्राइम मिनिस्टर सेड डॉक्टर मुखर्जी फियर्सली अपोज द टॉक ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूशंस, टू प्राइम मिनिस्टर्स एंड टू फ्लैग्स इन द कंट्री। He said Shyama Prasad Mukherjee understood very well that the essence of nation building is in the building of institutions. He said Dr. Mukherjee laid the foundation for such national institutions, which became India's economic strength for decades to come. Union Home Minister Amit Shah participated in the 125th birth anniversary program of Shyama Prasad Mukherjee in Kolkata. We have more from a correspondent.
11: The whole nation is celebrating the 125th birth anniversary of Shyama Prasad Mukherjee. On this occasion, Union Home Minister Amit Shah joined a chain of events in Kolkata. Home Minister Amit Shah visited Shyama Prasad Mukherjee's ancestral home in Kolkata and paid his tribute. Before this, he participated in the groundbreaking ceremony for erecting 125 feet statue of Shyama.

दोस्तों, महान गायक किशोर कुमार के पुत्र अमित कुमार को मुख्य रूप से उनकी बेहतरीन पार्श्व गायकी के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्होंने कई मौकों पर संगीतकार के रूप में भी अपनी प्रतिभा दिखाई है। और अमित कुमार ने फिल्मों में संगीत देने के साथ कई स्वतंत्र म्यूजिक एल्बम भी कंपोज किए हैं। और संगीतकार के तौर पर उनका सफ़र जो है वो इस प्रकार रहा कि उन्होंने वर्ष 1989 में ममता की छाँव में ये फिल्म जो थी वो संगीत सफ़र की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है। और वर्ष 1987 में उनके पिता किशोर कुमार के आकस्मिक निधन के बाद अमित कुमार ने इस अधूरी फिल्म के निर्देशन और संगीत की जिम्मेदारी संभाली और इसे फिर पूरा भी किया। और साथ ही अमित कुमार ने फिल्म संगीत के बदलते दौर में उन्होंने जो थी वो अपनी विचारधारा बदल ली थी। और इसके बाद उन्होंने खुद का प्रोडक्शन हाउस कुमार ब्रदर्स म्यूजिक लॉन्च किया और इस बैनर के तहत उन्होंने खुद कई स्वतंत्र गानों और प्रोजेक्ट्स को भी संगीतबद्ध किया था। उन्होंने कई बेहद लोकप्रिय प्राइवेट एल्बम में संगीतकार के रूप में काम किया और उनके द्वारा संगीतबद्ध किए कुछ प्रसिद्ध स्वतंत्र एल्बम जो हैं उनमें से हैं प्यार तो बस प्यार है, डम डमा डम और बाबा मेरे। इस खास एल्बम में उन्होंने अपनी बेटी मुक्तिका कुमार के साथ मिलकर गाने जो कंपोज किए हैं और साथ में गाए भी हैं। तो आइए सुनवाते हैं एक और गीत आपको अमित कुमार की आवाज़ में। फिल्म तेजाब का ये गीत है और इस फिल्म में अमित कुमार के साथ साथ अनुराधा पौडवाल हैं।

दर्शकों, तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। यह आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं। दीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की।

कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की में सभी श्रोताओं का स्वागत है और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ हिमाचली गीत व लोकगीत। तो पहला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं राजेश कुमार का गाया हुआ।

अजय कुमार और रेशमा की आवाज़ों में अभी आपने ये लोकगीत सुना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की। कार्यक्रम का अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं नरोत्तम व साथियों की आवाज़ों में।

गूंज पहाड़ों की। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे।

शुत लीजिए, प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूनम।

0: तो दोस्तों, आज की इस खूबसूरत सी शाम में हम शुरू कर रहे हैं सुरों की महफिल। तो आज के इस कार्यक्रम में हम सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद के गीत, और जो फिल्में आज के कार्यक्रम में हमने शामिल की हैं उनके नाम आपको जल्दी से बता देते हैं। फिल्में हैं बाजीगर, एक फूल दो माली, प्रेम ग्रंथ, पेंटर बाबू, प्रेम रोग, साहिबा, सच्चा झूठा, सैनिक, सलमा पे दिल आ गया और शिकार। और इसके साथ ही कुछ और फिल्में जो हैं और भी जो हमने कार्यक्रम में शामिल की हैं वो हैं तड़ी पार, विवाह और वारिस। तो श्रोताओं, इन फिल्मों में से कोई भी गीत जो है वो आज के कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं। साथ ही साथ कुछ मैसेजेस जो हैं वो भी आए हैं हमारे फेसबुक के पेज पर, तो कोशिश करेंगे उनसे भी कुछ मैसेज लेने की और उनकी फरमाइश भी पूरी करने की। लेकिन श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि सभी श्रोताओं की फरमाइश तो हम इस कार्यक्रम में पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें ढेरों मैसेजेस आपके हमारे श्रोताओं के जो हैं वो आ चुके हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ श्रोताओं के जो उनकी फरमाइश है, उनकी पसंद के गीत हैं, वो उन तक हम ज़रूर पहुंचाएं। तो कार्यक्रम के पहले कॉलर जो है वो लाइन पर आ चुके हैं, तो आइए देखते हैं कौन है और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो जी, जो पहले कॉलर हमारे लाइन पर आए थे उनसे हमारी बात तो नहीं हो पाई है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कार्यक्रम में एक बार नए श्रोताओं को हम फ़ोन नंबर बताना चाहेंगे। हमारा नंबर है 01892224391। इस नंबर पर कॉल कीजिए और हमसे बात करने की कोशिश कीजिए, और ताकि आज की इस संगीतमय शाम में आप भी जुड़ सकें हमारे साथ और हमसे बात कर सकें और अपनी पसंद का गीत जो है वो आप सुन सकें। तो एक और श्रोता जो है वो भी लाइन पर है, तो आइए देखते हैं उनसे बात होती है। हेलो
1: हेलो
0: जी, कार्यक्रम आपकी पसंद गीत हमारे में आपका स्वागत है, अपना परिचय दे दीजिए।
1: जी, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी योगेश जी, तो सबसे पहले बता दीजिए कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे।
1: जी थोड़ा एक दो फिल्मों के नाम बता देंगे।
0: जी फिल्मों के नाम हमने अभी बताए हैं, लेकिन जल्दी से फिर से बता देते हैं। वारिस, विवाह, तड़ी पार, शिकार।
1: विवाह से सुनवा देंगे।
0: जी कौन सा गीत सुनेंगे विवाह का?
1: कोई भी गीत, उसमें तो सभी गीत एकदम शानदार है।
0: सभी गीत आपको अच्छे लगते हैं, देखिए आपने ये फिल्म।
1: जी सभी गीत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें एक गीत है मिलन, अभी आधा अधूरा है, सबसे ज्यादा अच्छा लगता है।
0: चलिए, बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने चुना है आज के कार्यक्रम में, और आज के हमारे कार्यक्रम में आप पहले कॉलर भी हैं, तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत फिल्म विवाह से, और कार्यक्रम में फोन करने के लिए शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

01892224391 ये है हमारे स्टूडियोज का नंबर। तो यदि आप भी हमसे बात करना चाहते हैं और अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें कॉल करें, लेकिन सिग्नल का ध्यान जो है वो ज़रूर रखें ताकि हमसे आपकी बात हो सके और आप सुन सके अपनी पसंद का गीत। एक और कॉलर लाइन पर है, तो आइए देखते हैं कि इनसे बात हो पाती है या नहीं। हेलो,

जय श्रोताओं, कार्यक्रम है पसंद आपकी गीत हमारे। और जब तक कि अगले श्रोता हमारे साथ लाइन पर जुड़ते हैं, तब तक हम अपने फेसबुक पेज से जो ये मैसेज आया है हमें इसे

पढ़ना चाहेंगे और हमें फरमाइश जो हमें भेजी है और इसके बारे में भी आपको बताना चाहेंगे। ये है कोहका भिलाई से उत्तम सिंह झंगेल, मोरस झंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष झंगेल और नंदनी झंगेल। और इन्होंने फरमाइश की है रोमांस फिल्म के इस गीत की, और गीत है मांग लूंगा मैं तुझे तकदीर से, और इस गीत को गाया है अमित कुमार और लता मंगेशकर ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश हमें आई है गुजरात गांधीनगर से प्रवीण सोनी, कलावती सोनी और जगदीश की। तो हम चाहते हैं कि इनकी फरमाइश जो है वो हम ज़रूर पूरी करें। और लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, और आपके रेडियो सेट्स तक पहुंचा रहे हैं रोमांस फिल्म का ये गीत।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं
1: मैं पिंटू बोल रहा हूँ जी, बिलोल से।
0: जी? पिंटू जी, स्वागत करते हैं आपकी कॉल का। सबसे पहले ये बता दीजिए, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे
1: मैंने सच्चा झूठा फिल्म का गाना सुना देना जी।
0: जी? सच्चा झूठा फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगे?
1: यूं ही तुम मुझसे बात करती हो।
0: चलिए जी, बहुत ही अच्छा गीत आपने सुना है। अगर हमारे पास ये अवेलेबल होगा तो ज़रूर आपको सुनवाएंगे इस गीत के बाद। और बताइए पिंटू जी, क्या करते हैं आप
1: जी मैं कारपेंटर का काम करता हूँ मैडम जी।
0: जी? तो इस समय तो आप आराम कर रहे होंगे या काम चल रहा है?
1: नहीं, आराम कर रहे हैं। आपके मतलब धर्मशाला के गाने सुन रहे हैं और आराम कर रहे हैं जी।
0: जी, सभी प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: हाँ जी मैडम जी, सभी प्रोग्राम सुनता हूँ जी।
0: तो कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको?
1: वैसे तो सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं जी।
0: जी, तो आपको ये

0: बताना चाहेंगे कि इस फिल्म का जो गीत है वो हमारे पास अभी है, एक तो कर ले प्यार कर ले ये गीत है, तो ये सुन लेंगे आप सच्चा झूठा फिल्म से?
1: नहीं मैंने तो फिर बाजीगर फिल्म का गीत सुना देना चाहिए।
0: जी चलिए, तो बाजीगर फिल्म का कौन सा गीत सुनेंगे?
1: बाजीगर का कोई भी सुना देना चाहिए, फिल्म अच्छी है भी तो कोई भी सुना देना
0: जी,
1: चाहिए।
0: इस फिल्म के तो सभी गीत जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन
1: जी
0: कोशिश करेंगे कि आपको ये जो गीत हम सुनवाएंगे वो अच्छा लगे। जी, तो
1: जी
0: कार्यक्रम
1: मैडम,
0: में पिंटू जी फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनिए अपनी पसंद का गीत इस गीत के बाद।
1: थैंक यू मैडम जी।

श्रोता, बहुत ही खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे हैं फिल्म बाजीगर से। और आप सभी जानते हैं कि फिल्मों के गाने जो होते हैं, इनमें अलग ही जादू होता है जो सीधे रूह को छू जाता है। और फरमाइशों का ये सुरीला सिलसिला थमने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी फ़ोन लाइनों पर लगातार घंटियां बज रही हैं और आप सबका ये प्यार देखकर हमारा दिल भी बाग बाग हो गया है। अगर आप भी लाइन पर हैं तो थामे रहिए अपने फ़ोन को, क्योंकि सुरों का ये कारवां सीधे आपके दिल तक पहुंचने वाला है। तो आइए लेते हैं एक और लाइव कॉल को और जुड़ते हैं हमारे अगले हमसफ़र के साथ। हेलो जी, फ़ोन लाइन जो है फिर से एक बार कट चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, हम फ़ोन लाइन अगर कट रही है तो हम श्रोताओं से यही निवेदन कर सकते हैं कि कोशिश कीजिए कि जब भी हमें कॉल करें तो सिग्नल में रहकर जो है वो कॉल करें, ताकि हमारी बात जो है वो आपसे हो सके। और जब तक कि अगली कॉल हमें आती है तब तक हम फरमाइश लेते हैं। और ये जो फरमाइश हमें आई है, ये अभय सिलौट से जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से आई है। और जो फरमाइश भेजने वाले हैं उनके नाम हैं अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के और यज्ञेश घोड़के। और इन सभी श्रोताओं ने फरमाइश की है राम लखन फिल्म के इस गीत के लिए, जो कि मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल ने गाया है। तो आइए सुनवाते हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर, मिलजुल कर सुनते हैं राम लखन फिल्म से ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए
1: संजीव कुमार
0: जी। संजीव जी कहाँ से बात कर रहे हैं
1: पंजू किसे कर रहा हूँ जी। बॉबी
0: जी? तो बताइए संजीव जी, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे
1: फिल्म का जी।
0: जी?
1: बॉबी फिल्म, बॉबी फिल्म।
0: जी, फिल्में जो हमारे पास अभी हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। वारिस, तड़ी पार, शिकार, सलमा पे दिल आ गया, सैनिक, साहिबा, प्रेम रोग, प्रेम ग्रंथ, पेंटर बाबू।
1: कोई
0: प्रेम रोग का कोई भी गीत सुना दे।
1: भी सुना दो अपनी मर्जी से। मैं
0: चलिए जी, तो और बताइए अपने बारे में कुछ, क्या काम करते हैं आप?
1: तो दुकान है मेरी जी की।
0: चलिए जी, तो इस समय आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं
1: हाँ जी, हाँ जी, मैं डेली सुनते, दुकान में लगा हुआ है, घर में भी लगा हुआ है। रेडी
0: जी। किस चीज़ की दुकान है आपकी? कन्फेक्शनरी
1: कन्फेक्शनरी की है जी।
0: की दुकान है, मींस कि ये सभी तरह का सामान आपने खाने पीने का रखा है।
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल।
0: दिन भर आप रेडियो भी सुनते हैं?
1: हाँ, रेडियो लग जाता है सुबह 6:15 लग जाता है, तो शाम को बंद होता है अलग।
0: चलिए जी, बड़ी अच्छी बात है। तो आप हमारे नियमित श्रोता हैं, तो इस गीत के बाद आपकी फरमाइश का गीत सुनवाएंगे आपको, फिल्म प्रेम रोग से। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

श्रोता, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और इस समय आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। यदि आप भी इस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम का हिस्सा है वो बनना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे स्टूडियोज़ का नंबर जो है वो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। नंबर है 01892224391। तो इस नंबर पर फ़ोन मिलाइए और हमसे बातें कीजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत।

जय श्रोताओ, आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे। और हमारे कुछ श्रोताओं ने जो हमें अपनी फरमाइश लिख भेजी है हमारे फेसबुक के पेज पर, तो उनमें से हैं ये है आदर्श नगर मलौट पंजाब से जो है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और मैंडी शर्मा ने। और इन्होंने कहा है कि रिस्पेक्टेड मैम जी नमस्कार, और हमें कोई भी गीत जो है वो सुना दीजिए। और साथ ही ज़िला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलबीर सिंह ने जो है वो फरमाइश की है कि वो कोई भी गीत जो है वो आज के कार्यक्रम में हमारे लिए शामिल कर दें। और साथ ही जो एक और मैसेज हमें आया है वो चर डोगरी पिपरिया जिला कबीर धाम छत्तीसगढ़ से आया है। दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू और साथ ही श्रीमती इंद्राणी माया साहू का, तो इन्होंने भी यही लिख भेजा है कि कार्यक्रम में कोई भी गीत जो है वो हमारे लिए वो शामिल कर दें। तो इन सभी श्रोताओं की मिली जुली फरमाइश पर आपको वारिस फिल्म से ये गीत सुनवा रहे हैं, और आशा है कि हमारे सभी श्रोताओं को ये गीत जो है वो पसंद आया। तो आइए मिलकर सुनते हैं इस गीत को।

हेलो जी, हमारे कॉलर जो हैं वो लाइन पर तो आ रहे हैं लेकिन फ़ोन कॉल जो है वो नहीं मिल पा रही है, तो मुझे लगता है कि ये सिग्नल की ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो श्रोताओं से यही निवेदन रहेगा कि सिग्नल में रहकर जो है वो फ़ोन करें ताकि हमारी बात उनसे हो पाए और वो कार्यक्रम के साथ जुड़ पाए। एक और कॉलर जो है वो लाइन पर है, तो आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो जी, इनसे भी हमारी बात जो है वो नहीं हो पाई है। चलिए कोई बात नहीं, आप फ़ोन जो है वो मिलाते रहें और कोशिश करते रहें और सिग्नल का ध्यान जो है वो ज़रूर रखें।

हेलो, जी एक और श्रोता जो थे हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे लगता है सिग्नल की वजह से जो है वो इनसे बात नहीं हो पा रही है। लेकिन एक और श्रोता जो है वो लाइन पर है, तो आइए देखते हैं उनसे बात हो पाती है। हेलो जी, नहीं, फोन लाइन जो है वो फिर से कट चुकी है। चलिए कोई बात नहीं, जब तक किसी कॉलर की लाइन जो है वो मिलती है तब तक हम बात करते हैं हमारे मैसेजेस से। कि ये जो अगला मैसेज है हमें आया है, ये है सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव।

0: सब हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव का, और उन्होंने फरमाइश की है पुरानी साजन फिल्म से रेशम की डोरी गीत के बारे में। तो लीजिए सुनवाते हैं इनकी पसंद पर साजन फिल्म से ये गीत, और आइए सभी मिलकर सुनते हैं इस गीत को।
1: रेशम की डोरी
0: इस खूबसूरत से गीत में आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

0: जी, कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी, मैं परशुराम बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहले बता दीजिए कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे।
1: मैंने फूल का गाना जो कश्मीर में हमारा गया है। फिल्म
0: जी, आपकी आवाज़ जो है वो कट के आ रही है, फिर से बता दीजिए फिल्म का नाम।
1: माली जी
0: एक फूल दो माली। जी, आपकी आवाज़
1: गई।
0: जी, तो मुझे जो समझ में आया है वो है कि एक फूल दो माली फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं।
1: जी
0: सैया ले गई जिया।
1: मैं
0: जी, तो आपको ये बात बता दें कि आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं आ रही है, साफ नहीं आ रही है, तो गाने के बोल पता नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिल्म का नाम जो है वो हमें पता चल चुका है, वो है एक फूल
1: जी
0: दो माली। तो इस फिल्म का गीत आपको इस गीत के बाद ज़रूर सुनवाएंगे कार्यक्रम
1: मैडम,
0: में।
1: मैं हम
0: जी
1: अमरनाथ यात्रा पे आए हैं ना।
0: जी जी जी जी अब आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर आई है। अमरनाथ यात्रा पे आए हैं, बहुत अच्छी
1: हाँ
0: बात है।
1: हाँ हम लंगर में बैठे हैं तो सिग्नल थोड़ा वीक है ना,
0: जी जी जी
1: जहाँ
0: जी चलिए,
1: इसलिए
0: बड़ी अच्छी बात है। तो कैसी चल रही है आपकी यात्रा?
1: यात्रा बहुत बढ़िया है। ठंडा मौसम है, 10 टेम्परेचर है जहाँ।
0: जी, तो फिर आप जब यात्रा के लिए निकले हैं तो पूरी तैयारी के साथ गए होंगे।
1: नहीं मैडम, हमारा ना मुकेरियां का लंगर लगता है 3 नंबर, जहाँ
0: जी
1: पर ना मैं 1 महीना सेवा करता हूँ
0: जी
1: जी, इसलिए मैं
0: चलिए,
1: जहाँ आया हूँ।
0: चलो बहुत अच्छी बात है कि लंगर में सेवा कर रहे हैं आप। और हमने सुना है कि जहाँ पे बाबा अमरनाथ जी हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, तो श्रद्धालु जो आते हैं उनको कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता होगा।
1: हाँ जी मैडम,
0: चलिए
1: आज ना थोड़ी बारिश हो गई ना, इस करके टेम्परेचर
0: जी
1: दासा आ
0: जी
1: गया है।
0: जी ऐसा वहाँ पे होता रहता है, हम देखते हैं ना कि बारिश होती है,
1: हाँ
0: लेकिन श्रद्धालु जो है उनकी श्रद्धा तो जो है वो पूरी होती है और वो जाते हैं अमरनाथ गुफा के दर्शन करने। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा
1: मैडम
0: लगा।
1: मैडम मैडम, एक अश्विनी कुमार हमारे हैं, वो भी यही गाना सुनना चाहते हैं।
0: जी, एक फूल दो माली फिल्म का।
1: हाँ एक फूल दो माली का, अश्विनी कुमार है
0: जी
1: मुकेरियां के।
0: जी जी तो सुनिए, एक फूल दो माली से ये गीत आपके लिए हम भेज रहे हैं और आपके दोस्तों के लिए, और कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए शुक्रिया।
1: थैंक यू मैडम जी।
0: जी, तो ये जो श्रोता थे हमारे, वो सुनना चाह रहे हैं फिल्म एक फूल दो माली से ये गीत। तो आइए मिलकर सुनते हैं ये गीत और आनंद लेते हैं।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। जी कौन बोल रहे हैं?
1: जी मेरा नाम जय पराशर है। मैं मोहाली जीरकपुर से बोल रहा हूँ, पंजाब से।
0: जी तो सर बताइए कि कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे आप?
1: वारिस आपकी उसमें लिस्टेड है ना फिल्म?
0: जी सर, लेकिन वारिस फिल्म का गीत जो है वो हम सुनवा चुके हैं और कार्यक्रम में समय भी बहुत कम रह गया है, तो अब
1: हाँ जी
0: जल्दी
1: मैडम,
0: से।
1: मेरी कॉल बड़ी देर में मैच्योर हुई है। रूट कंजेशन बहुत ज्यादा था।
0: जी।
1: तो बाजीगर फिल्म का एक गीत है,
0: जी
1: बाजीगर ओ बाजीगर, वो सुनवा सकते हैं?
0: सर, बाजीगर का गीत भी सुनवा चुके हैं, तो आप अगर आपने कार्यक्रम सुना होगा तो।
1: नहीं सुना था मैंने, शायद दूसरा गीत था वो।
0: जी तो कोई और फिल्म जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि
1: आप
0: 1 मिनट का समय है हमारे
1: कोई
0: पास। तो
1: भी फिल्म का चला दीजिए, मेरी कॉल मैच्योर हो रही है, टाइम आपके पास नहीं है, तो
0: चलिए
1: आप
0: जी,
1: अपने चलाइए, वो मेरी फरमाइश हो जाएगी।
0: चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको साहिबा फिल्म का ये गीत जो है वो सुनवा
1: जी
0: रही हूँ, क्योंकि इस
1: जी
0: समय
1: जी
0: जो है हमारे पास बहुत ही कम है। तो सुनिए ये
1: जी
0: फिल्म गीत सुनिए साहिबा फिल्म से, और कार्यक्रम में कॉल करने के लिए शुक्रिया।

0: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का समय जो है वो यहीं पर समाप्त हो रहा है। और चलने से पहले आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में जिन श्रोताओं के फ़ोन कॉल्स हम नहीं ले पाए और जिनके मैसेजेस जो हैं वो हम नहीं पढ़ पाए हैं, वो अगले कार्यक्रम में शामिल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और चलते चलते आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा सुनील कुमार का और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। अब अपनी रेडियो दोस्त पूनम को दीजिए इजाज़त। आप सुन रही थी कार्यक्रम पसंद आपकी गीत हमारे, और आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। 11 बजने को है, अब सुनते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुँचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा।

0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमरीका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India.

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारे आज के कार्यक्रमों का प्रसारण यहीं पर संपन्न होता है। कल के कार्यक्रमों के साथ सुबह 5:55 पर आपसे पुनः भेंट